आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्स पर, एफएम पर 101.6 मेगाहर्ट्स पर। आज बुधवार है। शक संवत 1948 के बैसाख माह की 30वीं तिथि, तदनुसार 20 मई सन 2026। सवेरे के 5:57 होने को हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। सवेरे के 6 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंच गए हैं। राजधानी रोम में हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। श्री मोदी की ये 2 दिन की यात्रा भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगी। इटली में भारत की राजदूत वाणी सरराजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा के आदान प्रदान तथा नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित 3रे भारत नॉर्डिक सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की ये योजना 1 जून से प्रभावी होगी। इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार में आरक्षण के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग की 66 श्रेणियों को अधिसूचित किया है। इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग ए का 10% और अन्य पिछड़ा वर्ग बी का 7% आरक्षण रद्द कर दिया गया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय आरजी कर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर कल सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए

0: उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में एक से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमरीका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शनिवार से भारत की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा होगी। अमेरिकी विदेश विभाग ने बताया कि श्री रूबियो कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली की यात्रा करेंगे। नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास ने बताया कि श्री रूबियो 26 मई को क्वाड समूह की बैठक में शामिल होंगे। क्वाड समूह में ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका शामिल हैं। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया गया है। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। संग्रहालय का ये तीसरा AI संचालित इंटरैक्टिव होलो बॉक्स होगा। IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ राजस्थान की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना बनी हुई है। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 220 रन बनाए। जवाब में राजस्थान रॉयल्स ने 5 गेंद शेष रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की शानदार पारी खेली। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। आज का विचार में सुनिए सत्य और असत्य विषय पर विचार। वाचक स्वर श्री मिलिंद पांडे का है।
2: ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। असत का भाव विद्यमान नहीं है और सत का अभाव विद्यमान नहीं है। अर्थात असत की सत्ता कभी भी वर्तमान नहीं होती, असत उपस्थित नहीं होता, असत प्राप्त नहीं है, असत कायम नहीं है। जो वस्तु उत्पन्न होती है उसका नाश अवश्य होता है, यह नियम है। उत्पन्न होते ही तत्काल उस वस्तु का नाश शुरू हो जाता है। उसका नाश इतनी तेजी से होता है कि उसको 2 बार कोई देख ही नहीं सकता। अर्थात उसको 1 बार देखने पर फिर दोबारा उसी स्थिति में उस वस्तु को नहीं देखा जा सकता। यह सिद्धांत है कि जिस वस्तु का किसी भी क्षण में अभाव है उसका सदा अभाव ही होता है। संसार सदा ही अभाव रूप है। संसार को कितना ही महत्व दें, उसको कितना ही ऊंचा माने, उसको कितना ही उसका हम सहारा लें, उसकी कितनी ही गरज करें, लेकिन वास्तव में वह विद्यमान नहीं है। इस रूप में विद्यमान नहीं है क्योंकि हर क्षण उसमें परिवर्तन है, हर क्षण उसका नाश है। असत प्राप्त है ही नहीं, असत कभी भी प्राप्त नहीं हुआ और असत कभी प्राप्त नहीं होगा। सत का अभाव कभी भी विद्यमान नहीं होता। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि सत की सत्ता सदा सर्वदा के लिए विद्यमान है। त्रिकाला बाधकम सत्यत्वम। सत सदा वर्तमान है, सत सदा उपस्थित है। किसी भी देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, अवस्था आदि में सत का कभी भी अभाव नहीं होता। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतु मुने। सभी मनुष्यों की जो रात है उसमें संयमी मनुष्य जागता है और जिसमें साधारण मनुष्य जागते हैं वह तत्व को जानने वाले मुनि की दृष्टि में रात है। जैसा है वैसा अनुभव करने वाले का नाम ज्ञान है और जैसा है ही नहीं उसको है मान लेने का नाम अज्ञान है। जिनको असत के अभाव का और सत के भाव का अनुभव हो गया है

0: एक तत्व ज्ञानी हैं, जीवन मुक्त हैं, विदेह हैं, स्थित प्रज्ञ हैं, गुणातीत हैं। लेकिन जो असत का भाव और सत का अभाव मानते हैं, असत को प्राप्त और सत को अप्राप्त मानते हैं, वे अज्ञानी हैं, बेसमझ हैं और विपरीत बुद्धि वाले हैं।
1: आज के विचार में भी आपने सत्य और असत्य विषय पर विचार सुने। वाचक स्वर श्री मिलिंद पांडे का था। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए रामचरितमानस गान का सस्वर पाठ। संगीतकार हैं श्री सतीश भाटिया।

तारक नाम के असुर से त्रस्त देवताओं को ब्रह्मा ने यह ज्ञान दिया कि उसका वध शिवजी के पुत्र द्वारा ही संभव हो सकेगा। पार्वती ने शिव को वर रूप

पृथ्वी प्राप्त करने के लिए हजारों वर्ष तक घोर तपस्या की है, किंतु शिव अखंड समाधि में बैठे हैं। अतः ब्रह्मा ने कामदेव द्वारा शिव जी की समाधि भंग कराने का परामर्श दिया। देवताओं ने बड़े प्रेम से कामदेव की स्तुति की। तब जाकर विषम 5 वाणों और मछली के चिन्ह युक्त ध्वज वाला कामदेव प्रकट हुआ। देवगण की विपत्ति की कथा और अनुरोध सुनकर कामदेव को हंसी आई, क्योंकि वो जानता था कि शिव की समाधि भंग करके उसके प्राण नहीं बचेंगे। फिर भी परमार्थ के हित में अपनी बलि देने के लिए वह सहमत हो गया। पुष्प के अपने धनुष तथा वसंत आदि सहायकों की सहायता से कामदेव ने समस्त संसार में अपना प्रभाव फैलाकर स्त्री पुरुष संज्ञा वाले सभी चर अचर प्राणियों को काम के वश में कर दिया।

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान का सस्वर पाठ, संगीतकार थे श्री सतीश भाटिया। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। आइए सुनते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती की बातें। सवेरे 7 बजे कार्यक्रम होगा सुप्रभात और 7:30 पर फिल्म संगीत। सौरभ कार्यक्रम में सवेरे 8:30 पर आप सुनेंगे कविता

महिलाओं के लिए महिला जगत कार्यक्रम का प्रसारण दिन में 1:05 पर होगा। चर्चा के विषय रहेंगे समाज में शांति और महिलाओं की भूमिका, विभिन्न प्रांतों की नारी वेशभूषा, सुमित्रा नंदन पंत जयंती, प्रकृति की सुकुमारता, विश्व मधुमक्खी दिवस, रसोई की बाती और गीत संगीत।

0: युवा साथियों के लिए युवाणी का समय संध्या 5:05 रहेगा। जिले की चिट्ठी आप सुनेंगे संध्या 6:40 पर। ग्रामीण श्रोताओं के लिए ग्रामीण जगत का प्रसारण संध्या 7 होगा। चर्चा के विषय रहेंगे ट्राइकोडर्मा मित्र फफूद से मृदा उपचार, दुग्ध उत्पादन संबल योजना, पशु पक्षियों के लिए जल प्रबंधन, लोकगीत और बाजार भाव। रात 9:15 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। चर्चा का विषय है कार्यक्रम 9:30 पर दिल्ली केंद्र से रिले होगा। रात 10:30 शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होगा। कलाकार होंगी दीपाली नाग। ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। प्रस्तुत है खेती की बातें।
1: किसान भैया राम राम। आज अपन बात करा हाँ अपने राजस्थान रे कल्प वृक्ष री खेजड़ी री। राजस्थान री सांस्कृतिक आर्थिक और सामाजिक धरोहर खेजड़ी जिकेरो वैज्ञानिक नाम प्रोसोपिस सिनेरेरिया और पौराणिक नाम जिके ने अपा समी किया करा हाँ जलवायु परिवर्तन रे विभीषिकारो सामनो कर रही है। आज जलवायु परिवर्तन मौसमी बीमारियां कीड़ा रोग रोगारो प्रकोप और बीरे सागे सागे अंधाधुंध कटाई रे कारण राजस्थान री धरोहर खेजड़ी जी की है बापरो संघर्ष जी को है कर रही है सा। तो इन सारू राजस्थान री धरोहर कल्प वृक्ष खेजड़ी रो संरक्षण जी को है बहुत ही जरूरी है। ई पेड़ पेड़ रे गुणा रे कारण ही इन्हें आपा मरु प्रदेश रो कल्प वृक्ष जी को है वो किया करा। खेजड़ी मरुस्थलीय पालो गर्मियां री लू और मिश्रित उच्च तापमान दोनों ही परिस्थितियां में सामंजस्य जी को है बिठा लिया करें। वो हर प्रतिकूल परिस्थितियां में खुद ने जीवित रखे बीरे सागे सागे आपरी अद्भुत विलक्षण क्षमता सागे ही राजस्थान रो राज्य वृक्ष जी को है वो घोषित करो गयो है। खेजड़ी राजस्थान रे अलावा महाराष्ट्र गुजरात पंजाब कर्नाटक राज्य जगह शुष्क अर्ध शुष्क क्षेत्र में पायो जावे। पंजाब में इन्हें जन हरियाणा दिल्ली रास पास है और जो को है बहुतायत में पाया जावे। अब बात करा के भाई खेजड़ी रे संरक्षण की जरूरत किया पड़ी। जहाँ पर पहला बात करी के भाई कई तेरेरी बीमारियां जी की है कई तेरेरा रोग जी का है कई तेरेरा कीट जी का है भाई पेड़ ने नुकसान पहुंचा रहा है। बीरे सागे सागे जलवायु परिवर्तन और जंगल जी का है वे धीरे धीरे कम हो रहा है। कई कटाई जी की है आप कर रहे हैं और कई तेरेरा आधुनिक जी का आजकल प्रोजेक्ट लाग रहा है बी एर भी पेड़ जी की कटाई जी की हो रही है और कटाई ज्यादा और यदि आप पेड़ कम लगावा तो अपने नुकसान जी को खेजड़ी ने हुई सी। तो इन सारू खेजड़ी रे पेड़ रो संरक्षण जी को बहुत ही जरूरी है। जब से बात करा के भाई खेजड़ी री तो अपने राजस्थान रे महीने आप बात करा हाँ कहावत है के सिर साटे रुख रहे तो सस्तो जान। मतलब अपना पेड़ जरूरी है और पेड़ रखने खातर अपन यदि सिर कटानो पड़े तो अपना जी का बड़े रहा वो काम करियो सा। सांगरी जी को है वो आबार भगत रमने अपने किया करे है कि राजस्थान की पहचान जी की है बहुत सा और सांगरी जी की मिले काऊ है अपने खेजरी रे

पेड़ सू। सांगरी जी को है राजस्थान जे ग्रामीण अंचल रे लोगां खातर एक आर्थिक महत्व तो रखे ही है। बीरे सागे सागे जिका ग्रामीण किसान है, विशेषकर महिलाएं हैं, और बिहार रोजगार और आमदनी एक चोखो जिको है वो साधन है। और अबार भगत में देखा हाँ कि भाई जलवायु परिवर्तन के कारण इरे जिकी उत्पादन क्षमता जिकी है सांगरी री बाबी कम होगी है, और इर वजह सांगरी रे जिका बाजार में जिकी मांग जिकी है और पूर्ति जिकी है बीमें असंतुलन आ गयो, और इरा भाव जिका है भाई दिनों दिन बढ़ता जा रही है। तो सांगरी रा जिका विशेष पोषक तत्व जिका है या इरा जिका महत्व है बीरे

0: मैंने जी की मांग जी की है और पूर्ति जी की है भी में असंतुलन आ गयो और इरा भाव जी का है भय दिनों दिन बढ़ता जा रही है। तो सांगरीरा जी का विशेष पोषक तत्व जी का है या इरा जी का महत्व है बीरे कारण आपा इन्हें महत्व देवा हा। और सांगरीरी जी की भाई इरा जी का सूक्ष्म तत्व जी का पाए जावे है कैल्शियम हो चाहे वह दूसरा और पोषक तत्व हो स्वास्थ्य वर्धक और गुणकारी तो है ही सा। और सांगरी सब्जी खाने सु कही है कि तेज गर्मी रे दौरान शरीर में अपने तापमान ने संतुलन बनाए रखा करें। इन में कई तरह राज्य का औषधीय जिका गुण भी जिका है बताया करे जानकार। खेजरी रे जिका है सांस्कृतिक महत्व भी अपने जीवन में जिकी दिनचर्या है जीवनचर्या है और विशेष रूप राजस्थान रमय ने बहुत ऐसा। तो राजस्थान रमय ने खेजरी जी की इसी है जिकी आपने दिनचर्याओं जीवनचर्याओं और आपने एक तरह रो कही है कि जीवन रो हिस्सो है। तो खेजरी रो जिको है संरक्षण आज रे भगत रे मैंने बहुत ही जरूरी है। खेजरी रे पेड़ रे संरक्षण सारू आपने राजस्थान राज्य का नीति निर्माता है शासन प्रशासन और जिका आपा आम जना बियाने खातर जागरूकता इमें फैलानी चीज है। ये वृक्ष जागरूकता के सागे सागे जिका वैज्ञानिक है बे आपने सुझाव देवे के भाई कलिकायन विधियों पौधशाला में और नर्सरी में इरी पौध उत्पादन ने बढ़ाओ देर इरे व्यापारिक उत्पादन सारू आपा इमें नवाचार आपा कर सका। केंद्रीय शुष्क बागवानी विकास संस्थान जिको है एक खेजरी नई उच्च गुणवत्ता वाली हाइब्रिड नस्ल जी की है थार शोभा बनाई है सा। तो बा जी की है अत्यधिक गर्मी और सूखे स्थिति ने भी सहन कर सके। दूसरे सागे सागे जागरूकता प्रसार कार्यक्रम जिको है वो भी अपने करना चाहिए विशेष रूप अपना आमजन स्कूली बच्चा युवा किसान और विशेषकर महिला समुदाय ने अपना खेजरी जोड़ परार इरा बहुआयामी महत्व है। पर्यावरणीय उपयोग जिका है भी पक्षरों पर प्रचार और प्रसार करा बिरा फायदा बतावा और इस सागे सागे अपना स्कूली पाठ्यक्रम में भी खेजरी ने अपना बढ़ावो देवा बिर किताबा में पढ़ावा तो आपा कही है कि खेजरी और संरक्षण जिको है कर सका इन्हें बचा सका।
1: खेजड़ी संरक्षण आवश्यक इस बारे में जानकारी दे रहे थे श्री सत्यनारायण शर्मा। कार्यक्रम था खेती की बातें। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोल हमारा चैनल है। प्रस्तुत है लोक भजन।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः डाक्टर् गणेश हेगडे. अथ वार्ताः. भारतं तथा नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड इत्येते देशाः मिलित्वा स्वद्विपक्षीय सम्बन्धं, हरित प्रौद्योगिकीं, नवाचार रणनीतिक सहयोगं च सुदृढीकर्तुं विचार विमर्शान् कृतवन्तः. प्रधानमंत्री श्री मोदी ह्यः नॉर्वे देशस्य राजधान्यां ओस्लो नगरे तृतीय भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलने भागं गृहीत्वा नॉर्डिक देशानां नेतृभिः सह संयुक्त पत्रकार सम्मेलनं संबोधयन् घोषणामेतां कृतवान्.
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है. इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक, और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे.
0: प्रधानमन्त्रिणा मोदिना प्रोक्तं यत् विगत दशवर्षेषु भारतस्य नॉर्डिक देशानां च द्विपक्षीय व्यापारः प्रायः चतुर्गुणं वर्धितः वर्तते.
1: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है. नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं. पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है. तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं.
0: प्रधानमन्त्री पुष्टिं कृतवान् यत् भारतस्य नॉर्डिक देशानां च सम्बन्धाः व्यापार आर्थिक सहयोगेन अथ भारत यूरोपीय संघस्य मुक्त व्यापार सन्धिभिः सह सद्यः एव सम्पन्न व्यापार सन्धिभिः नूतन स्वर्णयुगे प्रविष्टाः सन्ति. अस्मिन् अवसरे वदन्तः नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क इत्यादि देशानां प्रधानमन्त्रिणः लोकतन्त्रस्य मूल्यानां नियमाधारित वैश्विकव्यवस्थायाः अद्यतन परिवर्तमान विश्वस्य बहुपक्षीय संस्थासु तत्कालीन परिष्कारस्य च प्रतिबद्धतां पुनरुक्तवन्तः. प्रधानमन्त्री मोदी पञ्चराष्ट्रयात्रायाः पञ्चमे अन्तिमे च चरणे इटली देशस्य राजधानीं रोम नगरम् आगतवान्. भारतस्य समृद्धकला परम्परायाः उत्सवे भव्य सांस्कृतिक संध्यायाः कार्यक्रमे सम्पूर्ण यूरोप

सुप्रभात कार्यक्रम सुनने वाले तमाम श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कहते हैं पहला सुख निरोगी काया। काया निरोग तभी रह सकती है जहां स्वच्छता होगी तो हम स्वस्थ होंगे, सुख और समृद्धि भी हमारे पास स्वयं चली आएगी। जी हाँ श्रोताओं, हम सभी चाहते हैं कि हमारा घर जो है वो साफ सुथरा रहे, वातावरण शुद्ध रहे, जीवन रहे खुशहाल। लेकिन श्रोताओं, केवल घर ही नहीं बल्कि हमारा शहर भी हमारा अपना परिवार है। यदि सड़कें साफ हो, गलियां स्वच्छ हो, पेड़ पौधे हरियाली बिखेर रहे हों तो शहर की सुंदरता अपने आप बढ़ जाती है। स्वच्छता केवल एक आदत नहीं बल्कि एक संस्कार है श्रोताओं, यह हमें सभ्यता, अनुशासन और जिम्मेदारी का संदेश देती है। अक्सर हम सोचते हैं कि सफाई रखना केवल नगर निगम या सफाई कर्मचारियों की जिम्मेदारी है, हम भला अपने शहर के बारे में इतना अधिक क्यों सोचें, जबकि श्रोताओं ये हम सबकी साझा जिम्मेदारी है। कुछ छोटी छोटी आदतें हमारे शहर को बदल सकती है। कचरा डस्टबिन में डालिए, प्लास्टिक का उपयोग कम करें, सार्वजनिक स्थानों को गंदा बिल्कुल न करें, पेड़ पौधे लगाएं, पानी और पर्यावरण को स्वच्छ रखें, क्योंकि स्वच्छता अपनाएं बीमारी भगाएं, ये संदेश हम सभी के लिए बेहद ही आवश्यक है। हम देखते हैं ना प्रकृति कितनी खूबसूरत है। एक स्वच्छ शहर देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं और हम भी जाते हैं। श्रोताओं, कोई भी शहर वहां रहने वाले लोगों से बनता है। स्वच्छता से पर्यटन बढ़ता है, बीमारियां कम होती है और हमारे शहर की एक मजबूत पहचान बनती है। तो हम मिलकर संकल्प लें, न गंदगी करेंगे न करने देंगे। श्रोताओं, पक्षियों की सुंदर चहचहाट, स्वच्छ वातावरण की ताजगी, ये सब प्रकृति की अनमोल धरोहर है और हमारे जीवन की सबसे सुंदर और समृद्ध बनाने वाली

एक जीवन शैली। प्रकृति हमें जीवन देती है, प्रकृति जीवन जीने का सलीका सिखाती है। तो नदियां निरंतर बहना सिखाती है, पेड़ों से हम विनम्रता सीखते हैं और फूलों से मुस्कुराना सीखते हैं। श्रोताओं, इन्हीं सुंदर भावनाओं से हमारा जीवन भी खूबसूरत बनता है। इसीलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम स्वच्छता को अपनाएं, प्रकृति को बचाएं, ताकि आने वाली पीढ़ियों को एक सुंदर, स्वच्छ और समृद्ध वातावरण हम दे सकें। इसीलिए कहते हैं श्रोताओं की प्रकृति बहुत खूबसूरत है, वो किसी सरहद को नहीं मानती। इसीलिए आवश्यकता है कि हम अपनी इस प्रकृति को सदा सहेज कर संभाल कर रखें।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: श्रोताओ, हिमालय की वादियों की शीतलता हो, चाहे फूलों की कोमल मुस्कान, पक्षियों की मधुर चहचहाहट हो या प्रकृति की अनुपम सुंदरता, अपनी कविताओं में जीवंत कर देने वाले कवि थे सुमित्रा नंदन पंत। जी हाँ श्रोताओं।

आज उनकी जयंती है। जब भी हिंदी साहित्य में प्रकृति प्रेम की बात होती है तब सुमित्रा नंदन पंत जी का नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। उन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है क्योंकि उनकी रचनाओं में प्रकृति केवल दृश्य नहीं बल्कि एक जीवंत अनुभूति बनकर सामने आती है। उत्तराखंड की मनोहरी वादियों में जन्मे पंत जी ने पहाड़ों, झरनों, बादलों, हरियाली और ऋतुओं की सुंदरता को अपनी कविताओं में ऐसा पिरोया कि पाठक स्वयं प्रकृति के बीच पहुंच जाता है। श्रोताओं, जब आज पर्यावरण प्रदूषण की भागदौड़ भरी जिंदगी में इंसान प्रकृति से दूर होता जा रहा है तब पंत जी की कविताएं हमें फिर से हरियाली, शुद्धता और संवेदनाओं की ओर लौटने का संदेश देती है। श्रोताओं, अगर हम पेड़ लगाएंगे तो प्रकृति को बचा पाएंगे और जीवन में सौंदर्य व संवेदनशीलता भी बना पाएंगे। श्रोताओं, हिंदी के छायावादी रचनाकार के रूप में पंत जी ने केवल प्रकृति और सौंदर्य को ही नहीं बल्कि मानवीय संवेदनाओं को भी उकेरा है। इसीलिए आज आवश्यकता है इस बात की कि हम इस प्रकृति को सहेजें, संभालें और इसकी अनुभूति करें।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: श्रोताओं, प्रकृति की मधुर गुंजन, फूलों की मुस्कान पर्यावरण संतुलन की अनमोल साथी है, हमारी मधुमक्खियाँ। जी हाँ श्रोताओं, आज है विश्व मधुमक्खी दिवस। छोटी सी दिखने वाली मधुमक्खियाँ प्रकृति के लिए बहुत बड़ा कार्य करती है। ये केवल शहद ही नहीं देती, बल्कि परागण के माध्यम से पेड़ पौधों, फसलों और जैव विविधता को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। श्रोताओं, यदि मधुमक्खियां न हो तो प्रकृति का संतुलन और खाद्य श्रृंखला दोनों प्रभावित हो सकते हैं। यही कारण है श्रोताओं कि आज पूरी दुनिया में मधुमक्खियों के संरक्षण और पर्यावरण जागरूकता का विशेष ध्यान रखा जाता है। मधुमक्खियां हमें एकता, परिश्रम और अनुशासन का संदेश देती है। वह मिलजुल कर कार्य करती है श्रोताओं, और अपने छोटे से जीवन में प्रकृति को समृद्ध बनाती है। इसीलिए आवश्यकता है कि हम भी पेड़ पौधों की रक्षा करें, रासायनिक प्रदूषण कम करें, प्रकृति और जैव विविधता को सुरक्षित रखने अपना योगदान दें, क्योंकि अगर प्रकृति सुरक्षित रहेगी तो हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा और हम भी प्रकृति की इन ठंडी हवाओं का आनंद ले सकेंगे।

श्रोताओं, प्रकृति केवल हमारे जीवन का हिस्सा नहीं बल्कि हमारे अस्तित्व का आधार है। स्वच्छ हवा, निर्मल जल, हरियाली से भरे पेड़ पौधे और पक्षियों की आवाजें, ये सब मिलकर हमारे जीवन को सुंदर बनाते हैं। लेकिन बढ़ता प्रदूषण, प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग, पेड़ों की कटाई और गंदगी प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। यदि हमने समय रहते प्रकृति की रक्षा नहीं की तो आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण देना कठिन हो जाएगा। इसीलिए श्रोताओं, आवश्यकता है कि हम अपनी प्रकृति को साफ सुथरा रखें और अपनी जिम्मेदारी को महसूस करें। कचरा न फैलाएं, प्लास्टिक का उपयोग कम करें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, जल स्रोत को गंदा न करें, बिजली और पानी की बचत करें और आसपास सफाई रखें, दूसरों को प्रेरित करें। जब प्रकृति मुस्कुराएगी श्रोताओं, तभी मानवता खुशहाल बन पाएगी। तो श्रोताओं, ये था सुप्रभात के आज का अंक। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुप्रभात। सवेरे के 7:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

0: सागर फिल्म का गीत था ये, स्वर किशोर कुमार का था।
1: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप, आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार 25 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए प्रतिमाह 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता वाली अन्नपूर्णा योजना 1 जून से शुरू करेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव की संयुक्त संसदीय समिति ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से लगभग 7,00,000 करोड़ रुपए की बचत और भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 1.6% की वृद्धि होगी। नागर विमानन महानिदेशालय ने इस वर्ष के शुरू में तकनीकी गड़बड़ी के बाद एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की आगे की जाँच के आदेश दिए। और आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप, आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। इटली से हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
2: प्रधानमंत्री मोदी इटली की अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर कल रात रोम पहुंचे। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। अनंतारा प्लाजो नायदी होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी गर्मजोशी से समुदाय के सदस्यों से हाथ मिलाया। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अब ये संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के संयुक्त लेख में दोनों नेताओं ने कहा है कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी

0: के स्तर तक पहुंच गए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय लिया गया है।
1: इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: नॉर्वे की दो दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ द्विपक्षीय बैठक की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: ओस्लो दौरे में हुए बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित परिवर्तन, नीली अर्थव्यवस्था, जहाज निर्माण, स्वास्थ्य और रक्षा जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए नॉर्डिक देशों को आमंत्रित किया। नेताओं ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले सहित सभी प्रकार के आतंकवाद की स्पष्ट और कड़ी निंदा की। सारे प्रधानमंत्रियों ने भारत नॉर्डिक देशों के सहयोग को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अगला शिखर सम्मेलन फिनलैंड में हेलसिंकी में आयोजित किया जाएगा। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने जिनेवा में 19वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण, डिजिटल स्वास्थ्य नवाचार और वैश्विक स्वास्थ्य एकजुटता के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वैश्विक स्वास्थ्य का पुनर्निर्माण एक साझा दायित्व विषय पर आयोजित सभा में श्री नड्डा ने संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण पर आधारित सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में भारत की प्रगति का उल्लेख किया।
3: India is accelerating towards universal health coverage.
4: भारत गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच का विस्तार करके सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके लिए हमने 1,85,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए हैं। इसके अलावा हम महामारी की तैयारियों और आपातकालीन राहत के लिए मजबूत और सुदृढ़ सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
3: Pandemic preparedness and emergency responses.
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की ये योजना 1 जून से प्रभावी होगी। एक रिपोर्ट।
4: इस योजना के अंतर्गत राशि पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। पात्र महिलाएं आयकर का भुगतान नहीं करती हों और किसी भी स्थायी सरकारी नौकरी में कार्यरत ना हो। नए आदेश के अनुसार लक्ष्मी भंडार योजना के सभी वर्तमान लाभार्थी स्वतः ही अन्नपूर्णा योजना में स्थानांतरित हो जाएंगे। नए आवेदकों के लिए अन्नपूर्णा योजना का ऑनलाइन पोर्टल 1 जून 2026 को शुरू किया जाएगा। कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति ने कहा है कि लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराने से करीब 7,00,000 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। इससे देश के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर में 1.6% की बढ़ोतरी हो सकती है। समिति के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद पीपी चौधरी ने कल शाम गुजरात के गांधीनगर में पत्रकारों को ये जानकारी दी।
7: मैं जो इनपुट मिला है उसमें हमने और कहा इसको और इम्प्रूव करो और एक रोल मॉडल के रूप में हम पूरे देश में सारे सरकार को हम भेजेंगे, भाई इस रूप में आप हमें अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करके दो। जैसे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट करे, इंडस्ट्रीज में क्या लॉस होता है, प्रोडक्शन का कितना लॉस होता है, लेबर एक तरह से दूसरी तरह माइग्रेट करती है, मैं सबको कहा अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करें और उसका संकलन करके आगे दे सके।
0: नागर विमानन महानिदेशालय ने एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की जांच मूल उपकरण निर्माता केंद्र पर महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में करने का निर्देश दिया है। महानिदेशालय के अनुसार एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान का संचालन इस वर्ष 2 फरवरी को लंदन के हीथ्रो

0: हवाई अड्डे से बेंगलुरु के लिए उड़ान AIC-132 संचालित करने के बाद रोक दिया गया था। एक रिपोर्ट।
1: यह कार्रवाई पायलट डिफेक्ट रिपोर्ट में दर्ज एक प्रविष्टि के बाद की गई थी। इसमें कहा गया था कि बायां ईंधन नियंत्रण स्विच थोड़ा सा दबाने पर रन से कट ऑफ स्थिति में फिसल जाता है और चयनित स्थिति में ठीक से लॉक नहीं होता है। महानिदेशालय ने कहा कि एयर इंडिया ने मूल उपकरण निर्माता की निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार और महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में ईंधन नियंत्रण स्विच का निरीक्षण और कार्यात्मक परीक्षण किया। निरीक्षण परिणामों और उपलब्ध साक्ष्यों की समीक्षा के बाद निष्कर्ष निकाला गया कि ईंधन नियंत्रण स्विच यांत्रिक रूप से डिजाइन के अनुसार कार्य कर रहा था और इकाई को सेवा योग्य घोषित किया। हालांकि महानिदेशालय ने निगरानी के अंतर्गत निर्देश दिया है कि ईंधन नियंत्रण स्विचों का भविष्य में निरीक्षण किया जाए। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉडगेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया जाएगा। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। और अब खेल समाचारों के साथ हैं आनंद पाठक।
2: IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने कल रात लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना भी बनी हुई है। राजस्थान रॉयल्स ने 221 रन का लक्ष्य 7 विकेट के नुकसान पर 5 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। यह मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। वरिष्ठ भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने भारतीय हॉकी खिलाड़ियों के फिटनेस स्तर की सराहना करते हुए इसे खेल के लिए समर्पण की पहचान बताया है। कोहली ने कहा कि क्रिकेटरों की फिटनेस भारतीय हॉकी खिलाड़ी की फिटनेस के 15% के बराबर भी नहीं है। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के लिए भारतीय दल की पहली सूची की घोषणा कर दी गई है। यह प्रतियोगिता इस महीने की 25 तारीख से 6 जून तक गोवा में आयोजित की जा रही है। उधर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के अंकित और रेलवे के जयेश पाटिल पर 3 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। दोनों खिलाड़ियों का डोपिंग टेस्ट पॉजिटिव आया था। अंकित ने राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में 3रा स्थान जबकि पाटिल ने 5वां स्थान प्राप्त किया था। दोनों खिलाड़ियों ने आरोपों को स्वीकार कर लिया जिसके परिणाम स्वरूप उनकी अयोग्यता अवधि में 1 वर्ष की कमी हुई है।
0: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में बढ़ता तापमान हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। एक रिपोर्ट।
3: राज्य के बुंदेलखंड इलाके का बांदा जिला लगातार 3रे दिन भी देश का सबसे गर्म क्षेत्र बना हुआ है, जहां अधिकतम तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। राज्य के अन्य हिस्सों में भी भीषण गर्मी से राहत नहीं मिली है और कई स्थानों पर दिन का अधिकतम तापमान 44 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है और रात के समय भी तापमान 30 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है। पारा बढ़ने से आम जनजीवन पर तो असर पड़ा ही है, पशु पक्षी भी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए राज्य में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: मध्य प्रदेश भी भीषण गर्मी की चपेट में है। राज्य में पहली बार पारा 47 डिग्री तक पहुंच गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
4: धन्यवाद विशाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे यात्रा लोक सत्य सहित कई अखबारों में है। भारत नॉर्वे के बीच अंतरिक्ष, हेल्थ, डिजिटल क्षेत्रों सहित 12 समझौते। भारत नॉर्डिक समिट में पीएम मोदी के शब्द, नवभारत टाइम्स में है। आतंकवाद पर हो एक रुख, कोई समझौता नहीं, कोई दोहरा मापदंड नहीं। प्रधानमंत्री मोदी की इटली यात्रा पर दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों का साझा लेख, दैनिक जागरण में है। रणनीतिक साझेदारी के युग में भारत और इटली शीर्षक से छपे लेख के अनुसार भारत का तेजी से बढ़ता नवाचार तंत्र और कुशल पेशेवरों की बड़ी संख्या तथा इटली की उन्नत औद्योगिक क्षमता दोनों देशों के सहयोग को स्वाभाविक और रणनीतिक सहयोगी बनाती है। आवारा कुत्तों पर सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, खूंखार कुत्तों को सजाए मौत। शीर्ष न्यायालय ने कहा, बच्चों और बुजुर्गों के जीवन को भाग्य

0: के भरोसे नहीं छोड़ सकते। राजस्थान पत्रिका ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को दिया है भयमुक्त जीवन लोगों का अधिकार। नक्सलवाद की तरह 3 वर्ष में हर केस खत्म करने का लक्ष्य, गृहमंत्री अमित शाह का ये बयान दैनिक भास्कर में है।
1: धन्यवाद आकर्षिता। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार 25 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए प्रतिमाह 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता वाली अन्नपूर्णा योजना 1 जून से शुरू करेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव की संयुक्त संसदीय समिति ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से लगभग 7 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. Two leaders to discuss ways to boost cooperation on India-Middle East-Europe economic corridor and review joint strategic action plan 2025-2029. West Bengal government to roll out Annapurna scheme providing 3,000 rupees per month to women aged 25 to 60 years from June 1st. Joint Parliamentary Committee on One Nation, One Election says simultaneous Lok Sabha and Assembly elections can save nearly 7 lakh crore rupees and increase India's GDP growth by 1.6%. DGCA orders further inspection of fuel control switch of an Air India Boeing 787-8 aircraft following technical snag earlier this year. And in IPL cricket, Rajasthan Royals beat Lucknow Super Giants by 7 wickets in Jaipur. Prime Minister Narendra Modi arrived in Rome last night on an official visit to Italy. Mr. Modi was received at the airport by Italy's Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs and International Cooperation, Antonio Tajani. Later, Italian Prime Minister Giorgia Meloni hosted a dinner in honour of Mr. Modi. After the dinner, PM Modi reached Anantara Palazzo Nayadi Hotel, where a jubilant and cheering Indian diaspora welcomed him. Mr. Modi will hold talks with his Italian counterpart, Giorgia Meloni, President Sergio Mattarella, and discuss with them ways to boost India-Italy cooperation. PM Modi's visit will focus on how to boost India-Italy cooperation, especially focusing on the India-Middle East-Europe Economic Corridor, IMEC. The Joint Strategic Action Plan 2025-2029 will also be reviewed. Mr. Modi will also be visiting the headquarters of the Food and Agriculture Organization, FAO, and strengthening India's commitment to multilateralism as well as global food security. A correspondent covering the Prime Minister's visit has filed this report.
3: Prime Minister Narendra Modi will call on the President of Italy, Sergio Mattarella, at the Quirinal Palace today, where he will be accorded a guard of honour. The day's engagements include delegation-level talks, press statements, exchange of memoranda of understanding, bilateral meetings and a visit to the Food and Agriculture Organization. Prime Minister Modi will also plant a Morus nigra black mulberry tree, a species that symbolically connects India and Italy through its culinary, medicinal and agricultural significance. This is Suparna Bhatia from Rome.
2: Earlier yesterday, Indian Nordic nations comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland elevated the bilateral ties to a green technology and innovation strategic partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the 3rd India-Nordic summit in the Norwegian capital Oslo.
4: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज, भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक

0: India. And with that, it's back to you, Abhishek.
1: Thank you, Shagun. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. Two leaders to discuss ways to boost cooperation on India-Middle East-Europe economic corridor and review joint strategic action plan 2025-2029. West Bengal government to roll out Annapurna scheme providing 3,000 rupees per month to women aged 25 to 60 years from June 1st. Joint Parliamentary Committee on One Nation, One Election says simultaneous Lok Sabha and Assembly elections can save nearly 7 lakh crore rupees and increase India's GDP growth by 1.6%. DGCA orders further inspection of fuel control switch of an Air India Boeing 787-8 aircraft following technical snag earlier this year. And in IPL cricket, Rajasthan Royals beat Lucknow Super Giants by 7 wickets in Jaipur. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। सवेरे के 8:30 हुए हैं। सौरभ कार्यक्रम में सुनिए कविता पाठ। कवियत्री हैं कौसर भाटी।
3: पेश है आप सबके सामने मेरी पहली कविता, मेरे सितारे। जिंदगी की डगर कठिन जरूर है, मगर कठिनाइयों से उबरना कोई हमसे सीखे। जिंदगी की डगर कठिन जरूर है, मगर कठिनाइयों से उबरना कोई हमसे सीखे। माना कि जिम्मेदारियां बहुत है, मगर अपने शौक जिंदा रखना कोई हमसे सीखे। सुख दुख है जीवन के रंग, मगर जीवन के हर रंग को अपनाना कोई हमसे सीखे। सुख दुख है जीवन के रंग, मगर जीवन के हर रंग को अपनाना कोई हमसे सीखे। नहीं बनना किसी की दया का पात्र, जीवन पथ पर आगे बढ़ते जाना कोई हमसे सीखे। जीवन पथ पर आगे बढ़ते जाना कोई हमसे सीखे। सामाजिक बेड़ियों को तोड़ नए आयाम स्थापित करना कोई हमसे सीखे। सितारा तो तुम पहले भी थी, मगर अपने आप को तराशना कोई हमसे सीखे। पेश है आपके सामने मेरी दूसरी कविता, तू हर हाल डट कर चली। सपना जो देखा तूने साकार किया, मुश्किलें जो आईं पलटवार किया। दूभर राहों पर तू अकेली चली, तू हर हाल डट कर चली, तू लीक से हट कर चली। असफलता को स्वीकार किया, कमी रही जो सुधार किया। गिरते पड़ते संभल कर चली, तू हर हाल डट कर चली, तू लीक से हट कर चली। संघर्षों का मैदान न छोड़ा, काबिलियत से मुंह ना मोड़ा। पीठ पर लाद हौसला तू बढ़ती चली, तू हर हाल डट कर चली, तू लीक से हट कर चली। इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास, अर्जुन सा लक्ष्य बहुत खास। तू निरंतर बढ़ती चली, तू हर हाल डट कर चली, तू लीक से हट कर चली। देखेगा जमाना तेरी उड़ान, उड़ने को है सारा आसमान। तू भय से लड़ना सीखती चली, तू हर हाल डट कर चली, तू लीक से हट कर चली। खत्म हुआ सब्र का इम्तिहान, बनाया तूने एक खास मुकाम। कदमों के निशान तू छोड़ती चली, तू हर हाल डट कर चली, तू लीक से हट कर चली। अब पेश है मेरा एक गीत।

0: सागर। अब आपके सामने प्रस्तुत है मेरी चौथी कविता, तू कमाल कर। आईने में खड़ा शख्स कह रहा है तुझसे, आईने में खड़ा शख्स कह रहा है तुझसे, जरा सुन बेवजह अपनी परवाज पर ना यूं सवाल कर। बेवजह अपनी परवाज पर ना यूं सवाल कर। कुछ मन की कर ले जो मन करे, कुछ मन की कर ले जो मन करे, इस मन चले मन का भी कुछ ख्याल कर। तूफानों से प्यार कर लेकर लहरों से स्वर, तूफानों से प्यार कर लेकर लहरों से स्वर, जिंदगी के संगीत में अपनी एक ताल कर। जिंदगी के संगीत में अपनी एक ताल कर। डर के उस पार है तेरी मंजिलें, डर के उस पार है तेरी मंजिलें, डर को डराने को साहस की एक ढाल कर। डर को डराने को साहस की एक ढाल कर। हारना और जीतना है मंजर आखिरी, हारना और जीतना है मंजर आखिरी, कुछ करने की ठान कर तू बस कमाल कर। कुछ करने की ठान कर। अब आपके सामने प्रस्तुत है मेरी एक कविता, आभास। मैं धरती, मैं बादल, मैं पानी, मैं आकाश भी। मैं धरती, मैं बादल, मैं पानी, मैं आकाश भी। मैं आज, मैं ही कल है मुझ में समाया। मैं आज, मैं ही कल मुझ में समाया है इतिहास भी। मैं निडर आत्मविश्वासी हिम्मत का ओढ़ूं लिबास भी। मैं निडर आत्मविश्वासी हिम्मत का ओढ़ूं लिबास भी। जड़ों से जुड़कर पंख फैलाऊं अपने करूं नए का। जड़ों से जुड़कर पंख फैलाऊं अपने करूं नए का अभ्यास भी। जय के रंगों का जश्न भी मुझ में, जय के रंगों का जश्न भी मुझ में, मेरी सभ्यता संस्कृति का निवास भी। जय के रंगों का जश्न भी मुझ में, मेरी सभ्यता संस्कृति का निवास भी। माथे पर बांधा साहस को, माथे पर बांधा साहस को, है चेहरे पर दृढ़ विश्वास भी। है चेहरे पर दृढ़ विश्वास भी। हौसले का हार गले में, होठों पर एक आस भी। हौसले का हार गले में, होठों पर एक आस भी। आंखों में समेटे भाव कई है चेहरे पर उजास भी। आंखों में समेटे भाव कई है चेहरे पर उजास।
1: सौरभ कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे कविता पाठ, कवयित्री थी कोसर भाटी। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। प्रस्तुत है सुगम संगीत।

0: सीमा अनिल सहगल के गाए कुछ गीत अभी आपने सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में सुनी। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंचे। इससे पहले नॉर्वे में 3rd भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का आज बांसवाड़ा के चुड़ादा गांव में रात्रि चौपाल में लोगों से संवाद का कार्यक्रम। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से राजस्थान के तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम को उत्कृष्ट कार्य के लिए दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का पहला पुरस्कार मिला। और चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के अस्पतालों में हीट वेव प्रबंधन के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के 5वें और अंतिम चरण में इटली पहुंच गए हैं। नॉर्वे की 2 दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में 3rd भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी भाग लिया। इस मौके पर श्री मोदी ने बताया कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की नवाचार रणनीतिक भागीदारी अगले स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है।
2: हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले 1 दशक में व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है। 10 वर्षों में देश का बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले 1 दशक में नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ग्राम विकास चौपाल की कड़ी में आज बांसवाड़ा पहुंचेंगे। श्री शर्मा चुड़ादा गांव में रात्रि चौपाल में ग्रामीणों के साथ संवाद करेंगे। वहीं कल सुबह गांव का पैदल भ्रमण कर लोगों से बातचीत करेंगे। गौरतलब है कि ग्राम विकास चौपालों के माध्यम से मुख्यमंत्री ग्रामीणों से सीधा संवाद कर रहे हैं, साथ ही सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में फीडबैक भी ले रहे हैं। मुख्यमंत्री का कल डूंगरपुर पहुंचने का कार्यक्रम है। वे 84 क्षेत्र के धंबोला गांव में ग्राम विकास चौपाल करेंगे। राज्य सरकार ने देर रात 17 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेशों के अनुसार 1 ADG, 4 IG, 2 DIG और 7 जिलों के SP बदले गए हैं। हरिंद्र कुमार कुमावत महावर को कोटा रेंज का IG बनाया गया है। वहीं चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, डीडवाना कोचामन, टोंक, भरतपुर, नागौर और दौसा के SP बदले गए हैं। ADG लता मनोज कुमार को सिविल राइट से कम्युनिटिंग पुलिस में भेजा गया है। वहीं ADG हवा सिंह घुमरिया को ADG सिविल राइट्स का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। राजस्थान विधानसभा की स्थापना के उपलक्ष्य में चलने वाले अमृत महोत्सव के तहत

0: इस साल 4 बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये उत्सव विधायिका को समर्पित होगा। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बताया कि अमृत महोत्सव के जरिए परंपरा, नवाचार और जनविश्वास एक साथ नजर आएगा। श्री देवनानी कल विधानसभा में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की राजस्थान शाखा की कार्यकारिणी समिति की बैठक में बोल रहे थे। राज्य में सहकारिता, उपभोक्ता भंडार और क्रय विक्रय सहकारी समितियों की ओर से चलाए जा रहे सभी दवा बिक्री केंद्र और प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र आज खुले हैं। ये केंद्र सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। सहकारिता विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने बताया कि दवा विक्रेताओं की प्रस्तावित हड़ताल के कारण लोगों को परेशानी से बचाने के लिए ये निर्णय लिया गया है। प्रदेश भर में कुल 538 दवा केंद्र संचालित हैं, जिन पर लगभग 2000 तरह की दवाइयां उपलब्ध हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की ओर से राजस्थान के तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। वर्ल्ड नो टोबैको डे 2026 में राज्य के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग को दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में पहला पुरस्कार मिला है। और ब्यौरा दे रही हैं न्यूज डेस्क से हमारी सहयोगी सालेहा गाजी।
1: राज्य में तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में व्यापक मॉडल स्थापित किया गया है। इसके तहत 500 से ज्यादा तंबाकू मुक्ति उपचार और परामर्श केंद्र चलाए जा रहे हैं। इन्हें जियो टैग कर लोगों की सुविधा के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया गया है। साथ ही 83,000 से ज्यादा स्कूलों में तम्बाकू मुक्त विद्यालय परिसर संबंधी निर्देशों की पालना की गई है और तम्बाकू मुक्ति के लिए 2.5 लाख से ज्यादा जन जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गई। प्रदेश में तम्बाकू मुक्त ग्राम अभियान को आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना से जोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों में जन भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है।
0: प्रदेश में प्री डीएलएड परीक्षा आज आयोजित की जा रही है। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा की ओर से इसका आयोजन किया जा रहा है। ये परीक्षा 2 पारियों में हो रही है। करौली जिले में इसके लिए 25 और बारां जिले में 24 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा 2026 की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 1 दिन और बढ़ा दी है। उम्मीदवार अब 23 मई तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं NTA की ओर से नीट UG परीक्षा 21 जून को दोबारा लिए जाने की घोषणा के बाद शिक्षा नगरी कोटा में देश भर से विद्यार्थियों की वापसी शुरू हो गई है। शहर के छात्रावासों, पुस्तकालयों और कोचिंग संस्थानों में विद्यार्थियों की चहल पहल नजर आने लगी है। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर ने प्रदेश के अस्पतालों में हीट वेव प्रबंधन के लिए पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। श्री खेवसर कल जयपुर से VC के माध्यम से समीक्षा बैठक कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने लू और तापघात, मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं और HPV वैक्सीन की प्रगति सहित अन्य बिंदुओं पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने प्रदेश में भीषण गर्मी की स्थिति को देखते हुए अस्पतालों में हीट वेव से प्रभावित मरीजों के लिए बेड आरक्षित करने और आवश्यक दवाइयां तथा कूलिंग उपकरणों की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। प्रदेश में प्रचंड गर्मी का दौर बना हुआ है। गर्म हवाओं से जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। कल प्रदेश के 9 शहरों में दिन का पारा 44 डिग्री से अधिक रहा। चित्तौड़गढ़, अलवर, पिलानी, श्रीगंगानगर, दौसा, चूरू, करौली और कोटा में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप रहा। वहीं फलौदी, चित्तौड़गढ़, कोटा और जयपुर में रात का पारा 30 डिग्री के ऊपर मापा गया। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार तापमान में गिरावट आई है, किंतु तेज गर्मी का असर बरकरार है। आज दक्षिण पूर्वी भागों में और सीमावर्ती जिलों में कहीं कहीं हीट वेव की चेतावनी है। श्रीगंगानगर निवासी मानव सुथार का भारतीय क्रिकेट टीम में चयन हुआ है। वे भारत अफगानिस्तान के बीच होने वाली टेस्ट और वनडे सीरीज में खेलेंगे। मानव लेफ्ट आर्म स्पिनर, बॉलर और बल्लेबाज भी हैं। सुथार की इस उपलब्धि से जिले भर में खुशी का माहौल है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंचे। इससे पहले नॉर्वे में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज बांसवाड़ा के चुड़ादा गांव में रात्रि चौपाल में लोगों से संवाद का कार्यक्रम। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से राजस्थान के तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम को उत्कृष्ट कार्य के लिए दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का पहला पुरस्कार मिला। और चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के अस्पतालों में हीट वेव प्रबंधन के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। सवेरे के 9:10 हुए हैं। आइए सुनते हैं लोक संगीत के कार्यक्रम में सोहनी देवी के गाए लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत कलाकार थे सोहनी देवी। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। सवेरे के 9:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग।

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम उमंग में। मैं हूँ विमलेश, नमस्कार।
0: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओं, कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला, हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: आप कौन हैं, आपकी क्षमताएं क्या हैं और आपके संस्कार क्या हैं? इन सब का निर्धारण आपके द्वारा किए गए कार्यों के संचय से होता है। आपकी सफलता, आपका व्यवहार और आपके कार्यों का समाज पर प्रभाव ही वो स्वर है जो आपकी अनुपस्थिति में भी आपकी पहचान की घोषणा करता है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का। लिखते हैं,
2: 14 अप्रैल 2026 का उमंग प्रोग्राम बेहद पसंद आया, जिसमें आपने हाथ से लिखने की आदत के बारे में बताया। ये सही है कि इस डिजिटल युग में हाथ से लिखना बहुत कम हो गया है। ऐसे तो हाथ से लिखने से बहुत से फायदे हैं, जैसे कि याददाश्त तेज होती है, दिमाग शांत होता है, रचनात्मकता बढ़ती है, एकाग्रता सुधरती है, समझ गहरी होती है और हाथ की कसरत भी होती है।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से। संदेश भेजने वाले हैं बबलू साहू, जामुन देवी साहू, पूजा, प्रेम, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
2: केंद्रपाड़ा उड़ीसा से देशदीप दास जी।
0: और चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा।
2: कृष्णा पार्क दिल्ली से याकूब आसमा फकीर, यूसुफ आसमा फकीर, असलम आसमा फकीर और अक्रम आसमा फकीर।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। आप सबका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए में। तो आइए श्रोताओ, सुनते हैं इस श्रृंखला की अगली कड़ी। श्रोताओ, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं वर्षा वन यानी रेन फॉरेस्ट की।
2: जी,
0: तो विमलेश जी, अब श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं।
2: जी जी जी श्रोताओ, कल हमने ली थी वर्षा वन की सामान्य जानकारी। आगे हम आज चर्चा करेंगे क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया के प्रमुख वर्षा वनों की। तो करते हैं शुरुआत अमेजन वर्षा वन से।
0: जी जरूर श्रोताओ, आपने टीवी चैनलों में अमेजन वर्षा वन के रोमांचकारी दृश्यों को जरूर देखा होगा। समाचार पत्रों या अन्य संचार माध्यमों के द्वारा भी इसके बारे में कुछ न कुछ जानकारी तो अवश्य प्राप्त की होगी।
2: जी,
0: आइए इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं।
2: श्रोताओं, अमेजन वर्षा वन दुनिया का सबसे बड़ा वनस्पति और जीव समृद्ध वर्षा वन है। ये लगभग 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और हाँ, इसे समुद्र के बाद पृथ्वी का सबसे बड़ा फेफड़ा भी कहा गया है।
0: ऐसा इसलिए कहा गया है श्रोताओं कि धरती की कुल ऑक्सीजन का लगभग 20% ऑक्सीजन हमें इसी वर्षा वन से मिलता है।
2: जी,
0: जहाँ तक इसके स्थान की बात है तो यह दक्षिण अमेरिका या लैटिन अमेरिका में फैला हुआ है, मुख्य रूप से ब्राजील में।
2: लेकिन इसके कुछ भाग पेरू और कोलंबिया में भी फैले हुए हैं। यहाँ भारी वर्षा होती है, लगभग 2000 मिलीमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक।
0: और श्रोताओं, जहाँ तक इसमें पाए जाने वाले जीव जंतुओं की बात है, यहाँ उनकी लाखों प्रजातियाँ पाई जाती हैं। जानते हैं कुछ दुर्लभ और रोचक जीवों के नाम। तो सबसे पहला जीव है जगुआर। जी हाँ, अमेजन वन का सबसे बड़ा शिकारी, पानी में तैरने और शिकार करने में माहिर।
2: दूसरा है गोल्डन मंकी, बिल्कुल सोने के सुनहरे रंग का दिखाई पड़ता है, केवल अमेजन के जंगलों में ही मिलता है। एक और विशेष मेंढक

0: मिलता है उसे पॉइजन डार्ट फ्रॉग भी कहते हैं। ये बेहद चमकीले रंग वाला मेंढक होता है। इसकी त्वचा में जहरीला पदार्थ होता है जिसे छूते ही तबीयत बिगड़ सकती है, यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। पुराने समय में यहाँ के आदिवासी लोग युद्धों में इस जहर का इस्तेमाल तीरों पर करते थे।
1: और आपने श्रोताओं एनाकोंडा सांप के बारे में तो अवश्य ही सुना होगा। ये दुनिया का सबसे लंबा और भारी सांप है जो पानी में रहता है और बड़े जानवरों का शिकार करता है।
0: एक और चींटी की अनोखी प्रजाति यहाँ पाई जाती है जिसे बुलेट एंट कहते हैं। ये दुनिया की सबसे दर्दनाक डंक वाली चींटी है। कहते हैं इसके डंक मारने पर भाला मारने या तीर लगने जैसा दर्द होता है।
1: तो ये थी कुछ रोचक वन्य जीवों की जानकारी। श्रोताओं, अमेज़न का जंगल यह औषधीय वनस्पतियों का बहुत बड़ा भंडार है।
0: जी
1: आइए अब जानते हैं कुछ रोचक तथ्य अमेज़न वर्षा वन के बारे में। तो विमलेश जी,
0: जी जी जी एक सबसे रोचक तथ्य ये है कि अमेज़न वर्षा वन ज्यादातर अमेज़न नदी के क्षेत्र में फैला हुआ है। ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। मालूम है श्रोताओं, वैसे दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है, लेकिन जल की मात्रा के दृष्टिकोण से दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेज़न है। एक रोचक तथ्य आपको बता दें कि अमेज़न नदी में पुल नहीं के बराबर है। लेकिन ऐसा क्यों?
1: ऐसा इसलिए कि भारी वर्षा के कारण अमेज़न नदी उफान से भरी रहती है।
0: जी
1: इसका कोई निश्चित तटबंध नहीं है। कभी कभी
0: इसकी धारा पतली हो जाती है तो कभी कभी बहुत चौड़ी, कभी 2 किलोमीटर ही रहती है तो कभी कभी 10 किलोमीटर तक चौड़ी हो जाती है। इसलिए यदि यहाँ पुल भी बनाए जाते हैं तो लंबे समय तक नहीं टिकते, क्योंकि दुविधा ये रहती है कि पुल की लंबाई या चौड़ाई कितनी रखनी है।
1: इसलिए यह तय पाया गया श्रोताओं कि अमेज़न नदी में पुलों से बेहतर नौकायन ही है, और नौकायन कब हो इसका निर्णय नदी के उफान या पानी के कम होने पर किया जाता है।
0: जी तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी अमेज़न वर्षा वन के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
1: तो आज का प्रश्न है, अमेज़न नदी पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: अमेज़न नदी पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं?
1: 8800-4400-559 यानी हमारे IVRS नंबर पर, और audio@cieet.nic.in यानी हमारे ईमेल पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: और श्रोताओं, अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम द क्रो।
0: एक प्रसिद्ध लोक कथा पर आधारित ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक में मुद्रित है, जिसके द्वारा ये संदेश दिया गया है कि हमें तुरंत किसी की प्रशंसा से प्रभावित नहीं होना चाहिए, लेकिन तथ्यों की जांच कर लेनी चाहिए और प्रशंसा सच में की जा रही है या नहीं ये भी जांच लेना चाहिए।
2: CIET NCERT presents the series Singing the Poem. Under this series, let us listen to the program The Crow.
3: Hello children.
4: Hello ma'am.
5: Hello ma'am.
3: Hello, hello. How are you all?
4: We are fine ma'am.
6: I am fine ma'am.
7: How are you ma'am?
3: I am good. Thank you so much Vanya. All right. So children, today I am going to share something with you. Are you ready?
4: Yes, ma'am.
6: Yes, ma'am.
3: All right. You all know that pets are special members of our family, isn't it?
4: Yes, ma'am.
8: Pets are so lovely.
3: Right, Soham.
9: Ma'am, I have a dog. It loves me so much.
3: Riddhi, that's very good. But how do you know that your dog loves you?
9: Ma'am, when I come back home, it leaps and jumps around me with happiness.
3: Wow, that's good. And what about you, Navya?
10: Ma'am, my dog shakes its tail at me.
3: Oh, that's lovely. You have a very nice dog. I'm very happy that you love pets. All right. What about you, Lavish?
11: Ma'am, when I come home, my cat jumps and sits on my lap.
3: Oh, that's so exciting, isn't it?
4: Yes, ma'am.
3: All right. So, we spoke about our animals. What about birds? Do you like birds?
4: Yes, ma'am.
3: Can you name some birds?
12: Sparrow.
3: Okay, Vanya. Good. That's a beautiful small bird. Okay, Soham, you tell.
13: Peacock. It dances so well. It looks so pretty.
3: Yes, peacock is a colorful bird.
14: Ma'am, parrot.
3: Oh, yes. Parrot is a mimic bird. But, children, you have missed a bird. Do you know which bird is missing?
15: Any guesses?
3: Okay, I'll give you a clue.

0: एक दिन जब वो स्कूल से लौटा तो
1: दीदी दीदी
0: अरे राजू स्कूल से आ गए तुम।
1: हाँ दीदी।
0: अरे ये तुम्हारे हाथ में इतने सारे फूल कहाँ से आए?
1: दीदी सामने के बगीचे में कुछ फूल लगे थे, मुझे अच्छे लगे तो मैंने तोड़ लिए।
0: ये क्या राजू, कल पड़ोस के माली काका भी तुम्हारी शिकायत कर रहे थे, कह रहे थे कि तुमने उनके बगीचे में लगे पौधे उखाड़ दिए। क्या ये सच है राजू?
1: दीदी वो तो मैंने।
0: राजू पौधों में भी जान होती है, पता है ना तुम्हें?
1: हाँ दीदी ये तो मैंने पढ़ा है, मगर
0: मगर क्या? अच्छा अब इधर आओ, ये देखो दीवार पर लटकी है तस्वीर, ये तुम्हारे बचपन की है ना?
1: हाँ दीदी ये तस्वीर तब की है जब मैं बहुत छोटा सा था, अब तो मैं कितना बड़ा हो गया हूँ।
0: बिल्कुल ठीक, उसी तरह पौधे भी बढ़ते हैं, हमारी तरह पौधों को भी भोजन और पानी की जरूरत होती है।
1: भोजन और पानी?
0: हाँ राजू।

0: पौधों में भी जान होती है, पता है ना तुम्हें?
1: हाँ दीदी, ये तो मैंने पढ़ा है, मगर
0: मगर क्या? अच्छा, अब इधर आओ, ये देखो दीवार पर लटकी ये तस्वीर, ये तुम्हारे बचपन की है ना?
1: हाँ दीदी, ये तस्वीर तब की है जब मैं बहुत छोटा था, अब तो मैं कितना बड़ा हो गया हूँ।
0: बिल्कुल ठीक, उसी तरह पौधे भी बढ़ते हैं, हमारी तरह पौधों को भी भोजन और पानी की जरूरत होती है।
1: भोजन और पानी?
0: हाँ राजू, तुम ऐसा क्यों नहीं करते, एक पौधा लगाओ?
1: हाँ दीदी, ये तो बहुत अच्छा रहेगा, कल मैं एक पौधा लगाऊंगा।
0: अरे कल क्यों, आज शाम को जब दादाजी बगीचे में घूमने जाएंगे तो तुम भी उनके साथ जाना पौधा लगाने।
1: ये ठीक है दीदी।

0: सुधा जी बेटा, तुम पौधा लगाना चाहते हो?
1: जी दादाजी।
0: देखो बेटा, उसके लिए ये जगह ठीक है, यहाँ अच्छी धूप भी आएगी। चलो बेटा, पहले ये कंकड़ पत्थर हटाकर ये जगह साफ कर देते हैं।
1: अब ठीक हो गया।
0: राजू बेटा, ये लो खुरपी और इस जगह पर एक छोटा सा गड्ढा खोदो, पर ध्यान रखना कहीं खुरपी हाथ में ना लग जाए।
1: अच्छा दादाजी, अभी खोदता हूँ, लाइए खुरपी दीजिए।
0: हाँ ये लो बेटा, इतनी देर में मैं तुम्हारे लिए माली काका से पौधा ले आता हूँ।
1: जी

0: वाह, ये पौधा कितना सुंदर लग रहा है।
1: देखा बेटा, ये पौधा माली काका तुम्हारे लिए खुद लेकर आए हैं। क्यों माली काका, मैं सच कह रहा हूँ ना?
2: हाँ राजू बेटा, इस पौधे को गड्ढे में रखकर इसकी जड़ों को मिट्टी से ढक दो और उसमें पानी डाल दो।

0: मालिका का, ये तो मैंने कर दिया।
1: शाबाश राजू बेटा, शाबाश।
0: मगर ये तो बताओ मालिका का, ये कौन सा पौधा है?
2: बेटा ये गेंदे का पौधा है।
0: गेंदे का पौधा?
2: जी।
0: गेंदे का पौधा तो सामने वाले बगीचे में भी है, पर उस पर तो कितने सारे फूल लगे हैं।
2: फूल तो बेटा एक दिन इस पौधे पर भी आएंगे।
1: हाँ राजू बेटा, पर उसके लिए तुम्हें बहुत लगन और मेहनत से इसकी देखभाल करनी होगी।
2: हाँ।
0: देखभाल? वो कैसे?
2: देखो बेटा, मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम्हें रोज पौधे को पानी देना होगा और कभी कभी खाद भी डालनी होगी।
0: अच्छा।
2: और पौधे के आसपास की उगी हुई जो घास होती है ना, उसको हटाना होगा।
0: ये तो मैं जरूर करूँगा।
2: हाँ तो ठीक है बेटे। अच्छा आज तो अब बस।
1: राजू बेटा
0: जी?
1: अच्छा अब घर चलें?
0: जी धन्यवाद मालिका का।
2: अरे बेटा
1: चलो बेटा।
2: जी दे।
0: चलिए दादाजी।

0: देखो दीदी, उस पौधे में कितने सारे फूल लगे हैं।
1: हां, कितने सुंदर लग रहे हैं। अच्छा राजू, क्या मैं एक फूल तोड़ लूं?
0: नहीं दीदी, मैंने इतनी मुश्किल से गड्ढा खोदा, पौधा लगाया, खाद डाली और रोज पानी से सींचा, और अब ये फूल आ गए हैं तो आप इसे तोड़ना चाहती हैं? दीदी, कितने सुंदर लग रहे हैं ये फूल, आप क्यों तोड़ोगी भला?
1: शाबाश राजू, लगता है तुम समझ गए।
0: हाँ दीदी,
1: मेहनत से लगाए हुए पौधे से अगर कोई एक भी फूल तोड़ ले तो कैसा लगेगा?
0: दीदी, ये तो बहुत ही गलत काम है। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा।

0: जी सुनते हो?
1: हाँ बोलो जी।
0: राजू कहाँ चला गया?
1: राजू कहाँ चला गया?
2: रात को तो यहीं सोया था।
1: हाँ। अरे हाँ, लगता है बागीचे में गया होगा।
0: पता नहीं लड़के को क्या हो गया है, जब से इसने पौधा लगाया न खाने की चिंता न खेलने की।
1: जब देखो बागीचे में जाकर पौधे की देखभाल में लगा रहता है।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम एक पौधा राजू का, और अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार।

0: IIT प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग।

मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। एफएम पर आप हमें सुन रहे हैं 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। सवेरे के 10 बजे हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

0: दीदी नौकरी लग गई।
1: अरे वाह बधाई हो, तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
0: हाँ दी, नया मोबाइल।
1: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
2: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
1: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
0: पर दीप,
1: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
0: हाँ दी, पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
1: अच्छा।
3: आरबीआई कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
6: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
5: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
6: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
5: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
6: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
5: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक।
6: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
5: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
6: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज़ जन जन तक।

0: बुकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: मैं आकाशवाणी हूँ, 90 साल की आपकी आकाशवाणी। नब्बे साल और एक स्वर्णिम सफर, आकाशवाणी। आकाशवाणी जिसने संगीत, नाटक, कविता और अपनी बातों के माध्यम से पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा।
2: संग प्रीत लगाई सजना सजना,
1: बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर जवानों तक, हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जादुई माइक। और आकाशवाणी का ये माइक भारत की सभी भाषाओं में मूल्य और संस्कृति का एक

और अब तो रेडियो से आगे बढ़कर पॉडकास्ट और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आपके सुनहरे कल की कहानियां दोबारा सुनाने को है तैयार। आकाश वाणी।

तो हमेशा सुनिए रेडियो रेडियो, महसूस कीजिए रेडियो रेडियो, क्योंकि आप सवार हैं आकाशवाणी के संस्कृति रूपी स्वर्ण रथ पर, जो दमकता है और प्रतिभा के अनमोल हीरों से चमकता है।

आकाशवाणी का 90वें साल में प्रवेश। कोशिश रहेगी अब से प्रसारण का हर लम्हा होगा आपके लिए अति विशेष।

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।
2: हो हो हो हो हो हो हो हो। दंभ का स्तंभ खंडम दंत्र शूल गाड़ के प्रलयंकारी गति से बिन

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: जुबिन की आवाज में आपने सुना फास्ट फॉरवर्ड फिल्म का ये गीत। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से।
1: फिर कभी मिलेंगे।
0: कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म का नाम है धड़क टू। गीत को गाया है विशाल मिश्रा ने, बोल हैं रश्मि विराग के, संगीत है जावेद मोहसिन का।

विशाल मिश्रा की आवाज़ में गाए एनिमल फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर दिन के 11 बज रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों के कार्यक्रम में कुछ भूले बिसरे गीत। कार्यक्रम का पहला गीत लीजिए, सुनिए आशा भोंसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है तीसरी मंजिल। गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

श्री 420 फिल्म का गीत आपने सुना लता मंगेशकर, मुकेश और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। गीत को लिखा था शैलेंद्र ने, संगीत था शंकर जयकिशन का। आप सुन रहे हैं कुछ भूले बिसरे गीत आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति मुकेश की आवाज़ में। फिल्म का नाम है अनाड़ी। गीत को लिखा है शैलेंद्र ने, संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

मुकेश की आवाज़ में अनाड़ी फिल्म का गीत अभी आपने सुना। गीत को लिखा था शैलेंद्र ने, संगीत था शंकर जयकिशन का। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत में कुछ भूले बिसरे गीत आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति लीजिए, सुनिए मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है गबन। गीत के बोल हैं शैलेंद्र के, संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

मुकेश और आशा भोसले की आवाज़ों में जंगली फिल्म का गीत आपने सुना। गीत के बोल थे हसरत जयपुरी के, संगीत था शंकर जयकिशन का। फिल्मी गीतों के कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं कुछ भूले बिसरे गीत आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। लीजिए सुनिए अगला गीत किशोर कुमार, आशा भोसले और साथियों की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है चोर मचाए शोर। गीत को लिखा है रविन्द्र जैन ने, संगीत है रविन्द्र जैन का।

चोर मचाए शोर फिल्म का गीत आपने सुना किशोर कुमार, आशा भोसले और साथियों की आवाज़ों में। गीत के बोल थे रविंद्र जैन के, संगीत था रविंद्र जैन का। आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। लीजिए सुनिए अगला गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, फिल्म का नाम है आरजू, संगीत है शंकर जयकिशन का।

आँखियों के झरोके से फिल्म का गीत आपने सुना हेमलता की आवाज़ में। गीत और संगीत था रविंद्र जैन का। आप सुन रहे हैं कुछ भूले बिसरे गीत आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। फिल्म का नाम है अमर। गीत को लिखा है शकील बदायूनी ने।

लता मंगेशकर की आवाज़ में आपने सुना अमर फिल्म का ये गीत। गीत को लिखा था शकील बदायूनी ने। आप सुन रहे हैं कुछ भूले बिसरे गीत आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। अगला गीत लीजिए, सुनिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। फिल्म का नाम है आबरू। गीत को लिखा है जी एल रावल ने। संगीत है सोनिक ओमी का।

आमने सामने फिल्म का गीत आपने सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीत के बोल थे आनंद बख्शी के, संगीत था कल्याण जी आनंद जी का। आप सुन रहे हैं कुछ भूले बिसरे गीत आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति आशा भोंसले और किशोर कुमार की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है आँखों आँखों में। गीत को लिखा है वर्मा मलिक ने, संगीत है शंकर जयकिशन का।

0: किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में गाए आंखों ही आंखों आंखों में फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर दिन के 12 बजे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक

0: तत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो इटली की प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि रोम पहुंचने पर उन्हें प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ रात के खाने पर मिलने का अवसर मिला, जिसके बाद उन्होंने मशहूर कॉलिसियम का दौरा किया। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने कई विषयों पर अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री ने इटली के प्रसिद्ध चित्रकार जियांपोलो टोमासिट्टी की भारतीय संस्कृति पर किए गए कार्यों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कलाकार ने इटली के रोम दौरे में वाराणसी पर बनी अपनी विशेष पेंटिंग प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री टोमासिट्टी का भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम 4 दशकों से अधिक पुराना है। एक अन्य पोस्ट में श्री मोदी ने भारतीय नृत्य शैलियों के प्रति 5 इतालवी कलाकारों के प्रेम की भी प्रशंसा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बैक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। इससे पहले श्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज बीजिंग में द्विपक्षीय संबंधों, ईरान यूक्रेन संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वार्ता से बीजिंग और मॉस्को के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूती मिलेगी और संयुक्त राष्ट्र, दक्षिण अफ्रीका परिषद और ब्रिक्स जैसे मंचों के माध्यम से समन्वय बढ़ेगा। ये बैठक अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा के कुछ ही समय बाद हुई, जहां उन्होंने शी जिनफिंग से क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की ये योजना 1 जून से प्रभावी होगी। पंजाब पुलिस ने दुबई स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, जो सीमावर्ती राज्य पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अबुधाबी से काम कर रहा था। अभियान के दौरान पुलिस ने 14 किलोग्राम मादक पदार्थों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आगे की जाँच जारी है। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत में भीषण गर्मी को देखते हुए दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया गया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 0.35% की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 75,157 पर जबकि निफ्टी 23,611 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। दिन के 12:05 हुए हैं। प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण।

हमारी इसी सभा में 12:10 पर और रात्रि 8:30 पर आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से आप सुनेंगे लोक संगीत का कार्यक्रम। हमारी इसी सभा में 12:40 पर, दोपहर 2:30 पर, शाम 6:05 पर, रात्रि 8 बजे, रात्रि 9:15 पर और रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से।

दोपहर 1:05 पर आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। कार्यक्रम में आज चर्चा के विषय रहेंगे समाज में शांति और महिलाओं की भूमिका, विभिन्न प्रांतों की नारी वेशभूषा, सुमित्रा नंदन पंत जयंती, प्रकृति की सुकुमारता, विश्व मधुमक्खी दिवस, शहद उत्पादन और महिला स्वयं सहायता समूह। इसी के साथ कार्यक्रम में आप सुनेंगे रसोई से कुछ रेसिपीज और कुछ ब्यूटी टिप्स।

युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी प्रसारित किया जाएगा शाम 5:05 पर आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। कार्यक्रम में आज की बात का विषय रहेगा उद्यमिता का विकास करें। कार्यक्रम में लघु जानकारी दी जाएगी। विश्व मधुमक्खी दिवस, सुमित्रा नंदन पंत, IUCN और इको टूरिज्म जैसे विषयों पर। इसी के साथ कार्यक्रम में आप सुनेंगे रोजगार समाचार और क्विज।

शाम 7 बजे आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से आप सुनेंगे कार्यक्रम ग्रामीण जगत। कार्यक्रम में चर्चा के विषय रहेंगे ट्राइकोडर्मा मित्र फफूंद से मृदा उपचार, मिश्रित कृषि, दुग्ध उत्पादन संबल योजना राजस्थान और पशु पक्षियों के लिए जल प्रबंधन। इसी के साथ कार्यक्रम में आप सुनेंगे लोकगीत, मौसम पर जानकारी और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जानकारी।

शाम 7:45 पर आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से ही आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम। आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से चर्चा का विषय है कार्यक्रम का समय रहेगा 9:30 पर।

रात्रि 10:30 पर आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। कलाकार होंगी दीपाली नाग। गायन रहेगा ख्याल चया नट। तबले पर संगत रहेगी आशिक हुसैन की। सारंगी पर संगत होगी रमजान खान की।

ये था हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 12:10 हुए हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम।

ये लोकगीत आपने सुना सीमा मिश्रा, बद्री व्यास और साथियों की आवाज़ों में। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। कार्यक्रम में लीजिए सुनिए अगला लोकगीत स्वाति शर्मा की आवाज़ में।

बाबू खां बगरवा की आवाज में ये लोकगीत आपने सुना। आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। लीजिए सुनिए अगला लोकगीत सीमा मिश्रा, शंभू और साथियों की आवाजों में।

सांगीदान द मामी की आवाज़ में गाए इस लोकगीत के साथ ही कार्यक्रम लोक संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वे 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्स और FM 101.6 मेगा हर्ट्स पर दिन के 12:40 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। कार्यक्रम में लीजिए सुनिए पहला गीत अरिजीत सिंह की आवाज़ में। फिल्म का नाम है आशिकी 2। गीत और संगीत है मिथुन का।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत हेमा सरदेसाई और मलासाई वासुदेवन की आवाजों में। फिल्म का नाम है सपने, गीत के बोल हैं जावेद अख्तर के, संगीत है ए आर रहमान का।

हेमा सरदेसाई और मलसाई वसुदेवन की आवाज़ों में सपने फिल्म का गीत अभी आपने सुना। गीत को लिखा था जावेद अख्तर ने, संगीत था एआर रहमान का। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम के अंत में अगला गीत रूप कुमार राठौड़ की आवाज़ में। फिल्म का नाम है बॉर्डर। गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने, संगीत है अनु मलिक का।

0: रूप कुमार राठौड़ की आवाज में गाए बॉर्डर फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 1 बजने को हैं, कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से।
1: में हिंदी में प्रादेशिक समाचार होंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ग्राम विकास चौपाल की कड़ी में आज बांसवाड़ा पहुंचेंगे। श्री शर्मा चुड़ादा गांव में रात्रि चौपाल में ग्रामीणों के साथ संवाद करेंगे। वहीं कल सुबह गांव का पैदल भ्रमण कर लोगों से बातचीत करेंगे। गौरतलब है कि ग्राम विकास चौपालों के माध्यम से मुख्यमंत्री ग्रामीणों से सीधा संवाद कर रहे हैं, साथ ही सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में फीडबैक भी ले रहे हैं। मुख्यमंत्री का कल डूंगरपुर पहुंचने का कार्यक्रम है। वे 84 क्षेत्र के धम्बोला गांव में ग्राम विकास चौपाल करेंगे। खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के सचिव अम्बरीश कुमार ने लोगों से घबराहट में पेट्रोल डीजल की खरीद और भंडारण नहीं करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि राज्य में पेट्रोल डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है, लोगों को अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ईंधन की बढ़ती मांग के बावजूद पर्याप्त स्टॉक है और आपूर्ति व्यवस्था सुचारू बनी हुई है। राज्य में सहकारिता उपभोक्ता भंडार और क्रय विक्रय सहकारी समितियों की ओर से चलाए जा रहे सभी दवा बिक्री केंद्र और प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र आज खुले हैं। ये केंद्र सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। सहकारिता विभाग के शासन सचिव डॉ

0: समित शर्मा ने बताया कि प्रदेश भर में कुल 538 दवा केंद्र संचालित हैं, जिन पर लगभग 2000 तरह की दवाइयां उपलब्ध है। वहीं ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के आह्वान पर कई स्थानों पर मेडिकल स्टोर बंद रखे गए हैं। एसोसिएशन ने ऑनलाइन दवाओं की बिक्री पर रोक लगाने की मांग को लेकर ये बंद रखा है। जयपुर में जीएसटी चोरी और फर्जी बिल मामले में वाणिज्य कर विभाग की प्रवर्तन शाखा ने बड़ी कार्रवाई की है। सघन जांच के दौरान अवैध आईटीसी के जरिए करीब 13.5 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी के आरोप में मुरलीपुरा निवासी नितेश कुमार सिंघल को गिरफ्तार किया गया है। उसने विभिन्न फर्मों के जरिए फर्जी बिलिंग कर जीएसटी चोरी की थी। प्रदेश में प्री डीएलएड परीक्षा कड़ी सुरक्षा और एआई आधारित निगरानी के बीच ली जा रही है। दो पारियों में हो रही इस परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को सघन जांच के बाद प्रवेश दिया गया। सभी केंद्रों की लाइव फीड जयपुर स्थित कमांड सेंटर तक पहुंच रही है, जहां आईटी और एआई विशेषज्ञ रियल टाइम निगरानी कर रहे हैं। परमवीर चक्र से सम्मानित हवलदार मेजर पीरू सिंह की जयंती आज श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई जा रही है। इस अवसर पर झुंझुनू स्थित उनके स्मारक स्थल पर पुष्पांजलि कार्यक्रम हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों और नागरिकों ने मां भारती के वीर सपूत को नमन किया। गौरतलब है कि 1948 में जम्मू कश्मीर में दुश्मनों का सामना करते हुए हवलदार पीरू सिंह ने असाधारण वीरता का परिचय दिया था। दुश्मनों की चौकियों को ध्वस्त करते हुए वे गंभीर रूप से घायल होकर वीरगति को प्राप्त हुए। उन्हें मरणोपरांत परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। प्रदेश में भीषण गर्मी और गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर रही है। दिन के साथ ही रातें भी काफी गर्म हो गई हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए लू का दौर जारी रहने की चेतावनी दी है। 2 जिलों में हीटवेव का ऑरेंज और 14 में येलो अलर्ट बताया गया है। कल चित्तौड़गढ़ 46.3 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म रहा। इसके अलावा श्रीगंगानगर, अलवर और पिलानी में भी पारा 45 डिग्री से ऊपर रहा। राजधानी जयपुर, फलौदी, चित्तौड़गढ़ और कोटा में रात का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस मापा गया। सिरोही को छोड़कर लगभग सभी जिलों में दिन का तापमान 40 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। नई दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से आगंतुक महात्मा गांधी के एआई आधारित 3D अवतार से बातचीत कर सकेंगे। आधुनिक तकनीक से तैयार ये 3D अवतार बापू के विचारों और व्यक्तित्व को जीवंत रूप में प्रस्तुत करेगा। ये संग्रहालय का तीसरा एआई आधारित इंटरैक्टिव होलो बॉक्स होगा। इससे पहले संग्रहालय में सरदार वल्लभ भाई पटेल और पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के एआई होलो बॉक्स भी शुरू किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 1:05 हुए हैं। महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम महिला जगत। आज प्रस्तुत करता है डॉक्टर स्वर्णरेखा और संध्या शर्मा ओझा।

0: बेहद खूबसूरत कार्यक्रम में मैं आपकी सखी संध्या ओझा
1: और मैं डॉक्टर स्वरण रेखा
0: रेडियो के पास बैठी अपनी सभी प्यारी बहनों और सखियों का तहे दिल से स्वागत करते हैं। सखियों, कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसे दिन आते हैं जब कैलेंडर की एक तारीख अपने भीतर कई अनोखे रहस्य, कई खूबसूरत रंग और जिंदगी को बदलने वाले संदेश समेटे होती है। आज का यह दिन भी कुछ ऐसा ही है। आज जब हम आकाशवाणी केंद्र आ रही थी तो रास्ते में चहचहाते परिंदों को देखकर मेरे मन में आया कि आज हमारे पास बात करने के लिए इतना कुछ है कि जिसे अगर शब्दों में पिरोया जाए तो एक मुकम्मल जिंदगी की तस्वीर बन जाए, है ना स्वर्ण?
1: सही कहा, क्योंकि जब तस्वीरें बनती हैं और हम जब आपसे रूबरू होते हैं आपके चहेते कार्यक्रम में, और कहते हैं ना सखियों की जिंदगी को रूबरू होने के लिए दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। कभी हम अकेले नहीं चलते तो प्रकृति हमारे साथ चलती है। और जैसा कि संध्या ने कहा कि जब हम रेडियो स्टेशन की तरफ आ रहे थे आपसे मुलाकात करने, तो वहाँ पे प्रकृति के विभिन्न रंग देखे, विभिन्न रूप देखे, और हाँ, ये चिलचिलाती गर्मी जिसमें आपसे मिलने के लिए दोपहर में हम आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो सबसे पहले स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा
0: नमस्कार।
1: और कहते हैं ना कि जिंदगी को जीने में और जिंदगी को काटने में फर्क होता है, तो जिंदगी काटिए नहीं, हमारे साथ जीना सीखिए, क्योंकि ये कार्यक्रम आपका अपना है।
0: सखियों, आज का हमारा यह पूरा कार्यक्रम कुछ खास कड़ियों से जुड़ा हुआ है, एक ऐसी मजबूत जंजीर जिसका हर हिस्सा आपके और हमारे जीवन को छूता है। तो मेरी प्यारी सखियों, आज के इस सफर को हम बहुत सारी सरप्राइज आपके सफर में लेके आए हैं, और बहुत सारी अनकही कहानियाँ, कुछ मीठे अनुभव भी हैं और ढेर सारी प्रेरणा भी है। तो अपनी जगह से बिल्कुल मत हिलिएगा, अपने रेडियो स्टेशन को जरा सा भी मत बदलिएगा, क्योंकि महिला जगत की यह खूबसूरत महफिल अब पूरी तरह से सज चुकी है।
1: और जब सजती है महफिल तो वहाँ पे हमारे सारे अपने आ जाते हैं। जी हाँ, अपने कौन? अरे आप इधर उधर क्यों देख रहे हैं, ये अपनों में आप ही तो हमारे साथ शामिल हैं, आपके अपने परिवार के सदस्य। सारे रेडियो के पास में जब सुन रहे होते हैं, घर का काम भी कर रहे होते हैं, और हाँ, घर में अब बच्चों की छुट्टियाँ भी हैं, तो कुछ मीठी मीठी बातें कुछ चीज़ों की शुरुआत में बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि महिलाएं हम मीठी बातों से अपने दिल को सुकून तो देती हैं, साथ ही संध्या जीवन को चलने का आधार भी बनाती हैं। लेकिन ये आधार कहाँ, कैसे, कब शुरू होगा, हम कुछ मिलने के बाद ही बता पाएंगे। लेकिन मिलेंगे कैसे, क्योंकि सुर संगीत से सजी है दुनिया और आपका कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आपके लिए सबसे पहले प्यार भरा नगमा,

0: जिंदगी में जब बातें और चलनी शुरू हुई तो कश्मकश पीछे कुछ ना कुछ और रह गई, लेकिन ये कश्मकश कुछ मीठी भी तो होती है ना
1: जी। बिल्कुल,
0: और होती है। जैसे तुमने कहा था अभी, तुम्हारी बात पे आ रही हूँ, कि कुछ दिन, कुछ घड़ी, कुछ पल और कुछ तारीखें कुछ खास होती
1: खास है। होती है।
0: तो आज क्या है खास?
1: आज स्वर्ण, पता है आज 20 मई है और 20 मई को कुछ बहुत ही खास चीजें हुई थी, है ना, जिसमें से एक है कि आज जो है हम विश्व मधुमक्खी दिवस भी मनाते हैं।
0: क्या बात है।
1: और जब मधुमक्खियों की बात करते हैं ना हम, तो हमारे दिमाग में ना मीठा मीठा शुद्ध शहद आता है,
0: और शहद भी आता है, और महिलाओं का वो एक रूप भी नजर आता है कि वो अपनी स्वयं सहायता समूह के नाते अपने लिए एक रोजगार भी कमा रही होती हैं।
1: बिल्कुल। लेकिन सखियों, क्या आप जानते हैं कि इन छोटी सी मधुमक्खियों का हमारे पर्यावरण को शांत और संतुलित रखने में ना कितना बड़ा हाथ है?
0: सही कहा
1: स्वर्ण। सबसे खूबसूरत बात पता यह है कि हमारे देश के ना विभिन्न प्रांतों में जो महिला स्वयं सहायता समूह है ना, वो शहद उत्पादन यानी कि मधुमक्खी पालन को अपनी आजीविका का जरिया बनाकर आत्मनिर्भर हो गई है, और हमारे देश में वो अपनी एक नई इबारत लिख रही है।
0: बिल्कुल लिख रही हैं, और उसका एक बहुत बड़ा, जिसको हम कहते हैं, परचम लहरा रही हैं हमारे NBHM के नाते। जी हाँ, इस मिशन को कहते हैं राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन। इसके तहत जो मधुमक्खियों का पालन करना है, उनको बढ़ावा करना है, उनकी ब्रीड्स को बढ़ाना है।
1: बिल्कुल।
0: और तो और कहा जाए कि अलग अलग तरीके के शहद,
1: हाँ,
0: अलग पेड़ों से जो मधुमक्खियां पराग लेती हैं, तो उन शहद की अपनी क्वालिटी होती है।
1: बिल्कुल।
0: और जिसमें कश्मीर का जो शहद है, जिसको केसर के फूलों के पराग से जो मधुमक्खियां बनाती हैं, सबसे ज्यादा कॉस्टली होता है। अब हम
1: मुझे
0: केसर की बात करते हैं, वो दिमाग में आ गया ना, तो इट वाज हाईली पेड, जिसको शहद
1: कहते हैं। मुझे भी नहीं पता था कि वो इतना महंगा है। वैसे तो शहद ही बहुत महंगा हमें मिलता है, लेकिन चलिए विषय पर आते हैं। वैसे पता है मुझे ना भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब की ना एक बात याद आती है। पता है उन्होंने कहा था कि अगर इस दुनिया से मधुमक्खियां खत्म हो जाए ना, तो मानव जीवन भी कुछ ही सालों में खत्म हो जाएगा।
0: बिल्कुल।
1: ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे भोजन में ना सखियों, एक बहुत बड़ा हिस्सा उन फसलों से आता है जिनमें परागण का काम ये छोटी छोटी प्यारी सी मधुमक्खियां करती हैं।
0: बिल्कुल। और इससे हमारी जो फसल है वो उन्नत होती है।
1: बिल्कुल। ये मधुमक्खियां प्रकृति में शांति संतुलन बनाए रखती हैं स्वर्ण।
0: बिल्कुल बनाती है, और साथ ही हमें इनसे क्या क्या मिलता है कभी सोचा भी है? क्योंकि हम इनसे मोम, यानी कि जो हम घर में जलाती हैं मोमबत्तियाँ, वो वैक्स यानी बी वैक्स से मिलता है। पॉलन्स मिलते हैं, रॉयल जेली मिलती है, और इनसे हम अलग अलग मेडिकली यानी मेडिसिन्स में इसका इस्तेमाल करते हैं,
1: जैसे कि लिप बाम्स और क्रीम।

0: के बारे में भी मैंने सुना है कि ये मोम से बनते हैं ये सब चीजें, और हमें बहुत अच्छे तरीके से ये मिलती है और बहुत नेचुरल होती है।
1: ये नेचुरल है, साथ ही आपके स्किन को भी अच्छा प्रोटेक्शन देती है, आपको यूवी से भी बचाती है, क्योंकि इस वैक्स की अपनी एक क्वालिटी होती है।
0: यानी कि हमारे देश की जो महिलाएं हैं वो सिर्फ मधुमक्खियों का पालन नहीं कर रही हैं,
1: वो सौंदर्य उत्पाद भी बना रही हैं।
0: सौंदर्य उत्पाद भी बना रही हैं और इतने महंगे और इतने अच्छे बना रही हैं कि उन्हें लोग खरीद रहे हैं, हर घर में इनका उपयोग किया जा रहा है।
1: और एक चीज और है संध्या, कि ये कम लागत में ज्यादा मुनाफा देने वाली बात है।
0: बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया ना कि प्रोपोलिस ना ये बहुत महंगा उत्पाद है जो इससे बनता है,
1: बिल्कुल
0: वैक्स से बनता है,
1: वैक्स से बनता है, और ये स्किन के लिए अलग अलग ऑइंटमेंट्स में इस्तेमाल किया जाता है।
0: सखियों, वैसे ना मधुमक्खी पालन ना ये इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए ना कुछ बहुत बड़ा कहते हैं कि जमीन की या आपको बहुत भारी भरकम रकम की ना पूंजी की जरूरत नहीं होती है। इसे ना पता है स्वर्ण, महिलाएं ना अपने घर के आंगन खेत की बाड़ी में भी शुरू कर सकती है, या अगर हम ये कहें कि कहीं में भी ना, जैसे खेत की मेड़ होती है वहां पर, घर में जब हम पीछे कोई जगह खाली होती है वहां सब्जी और उगाते हैं ना, वहां पर भी हम इसे आसानी से शुरू कर सकते हैं। और पता है सबसे बड़ी बात, मधुमक्खियों का स्वभाव कैसा होता है, वे हमेशा अनुशासन में रहती हैं। एक रानी मक्खी के नेतृत्व में ना पूरा छत्ता प्रबंधन का काम संभालता है और बिना किसी को नुकसान पहुंचाए मीठा शहद इकट्ठा करता है। ठीक यही स्वभाव तो हमारी महिलाओं का भी होता है ना।
1: बिल्कुल होता है, क्योंकि वो अपनी मीठी बातों से अपने पूरे परिवार को बांध के रखती हैं।
0: बिल्कुल,
1: उनकी सहजता से, उनकी सरलता से पूरा परिवार उनके साथ में जुड़ता है। तो सिर्फ ये एक मधुमक्खी की बात नहीं है, ये बात है हमारी खुद की, हमारे खुद के मधु की, यानी हमारे खुद के सोमरस की। और हम जब चलना शुरू करते हैं तो वहाँ पे मिठास अपने आप ही आ जाती है, और आएगी भी क्यों नहीं, क्योंकि अब हमारे साथ में एक और मिठास चल रही है, गीत संगीत की। और गीत संगीत की मिठास से पहले आपसे एक छोटा सा ब्रेक लेना तो बनता है।

0: जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: प्ले कर देना।
1: सखियों पता है आज हम बहुत ही ना अलग अलग रंगों की प्रकृति की आपसे बातें कर रहे हैं और भी बहुत सी चीज़ें हैं। जब बात अलग अलग रंगों की आती है तो सबसे पहले अगर हम हमारे भारत देश की बात करें ना स्वर्ण, तो हमारे भारत देश में ना कहते हैं कि हर कोस पर ना पानी बदलता है और हर चार कोस पर ना वाणी। लेकिन एक चीज़ है जो हर प्रांत के साथ अपनी एक अनूठी छटा जो है वो बिखेरती है, वह है हमारी प्यारी बहनों का पहनावा।
2: बिल्कुल सही कहा। और जब पहनावे की बात हो रही है तो आज तुम भी बहुत चमक रही हो।
1: बिल्कुल,
2: क्योंकि लाल रंग तुम पे बहुत सुंदर लगता है। और ऐसे ही बहुत से, जैसे हम मौसम की बात कही, तुमने पानी की बात कही और वाणी की बात कही कि कोस कोस पे तो पानी बदल रहा है और चार कोस पे वाणी बदल जाती है, लेकिन पहनावा अपनी एक विशिष्ट पहचान रखता है। तो भौगोलिक इतिहास कुछ भी हो, मौसम विरासत कुछ भी हो, परिधान अपनी ना एक अलग ही पहचान
1: होती है। कहते हैं कि ये जो वेशभूषा होती है ना हमारी, ये सिर्फ हमारा तन ढकने का साधन नहीं होता, ये हमारी संस्कृति, हमारे गौरव और आपस में जुड़े रहने के शांतिपूर्ण संदेश का भी प्रतीक होता है, है ना?
2: सही कहा। और ये प्रतीक भी क्यों ना हो, ये प्रतीक हमारे लिए बहुत खास हो जाता है। और वो खास भी क्योंकि जब बात आ रही है हमारे राजस्थान और गुजरात की, यहाँ की महिलाएं घाघरा

0: चोली, कुर्ती, कांचली और ओढ़नी या चुनरी के साथ में साड़ी पहनती हैं, तो शीशों की कढ़ाई के साथ, जिसे मिरर वर्क बोलते हैं, चटक रंगों में सजा होता है।
1: बिल्कुल।
0: और जैसे तुमने ये बनारसी शेड का जो दुपट्टा ओढ़ रखा है, इसकी बनारसी सिल्क की जो साड़ी है, हमारी यूपी की एक अलग ही पहचान है।
1: बिल्कुल। और अगर मैं पूर्व और पूर्वोत्तर की बात करूं, तो वहां पर बंगाल की जो तांत होती है वो हमारे यहाँ बहुत फेमस है, और साथ ही असम का मेखला चादर।
0: क्या बात है, है ना? और साथ ही तुमने जहाँ असम की बात कर दी, तो पूरी भारत में बंगाल की जहाँ महिलाएं हैं ना, वो लाल किनारी वाली सफेद सूती साड़ी पहनती हैं।
1: और पता है मणिपुर में जो महिलाएं हैं ना, वो फनेक और इनाफी दुपट्टा पहनती हैं। पूर्वोत्तर में इन परिधानों की सादगी और प्राकृतिक रंग ना, यह बताते हैं कि वहाँ का जो समाज है ना, वो प्रकृति के कितने करीब है। और पता है स्वर्ण, ये प्रकृति है ना, हमें शांति का पाठ सिखाती है।
0: एक चीज और इसमें संध्या की, ये सब सूती वस्त्रों से बने हैं, यानी कि सूत से बने हुए हैं, जो प्रकृति का एक अपना अनूठा अनुरूप है, और उसमें भी लाल रंग का इस्तेमाल, यानी स्त्री की पहचान।
1: और पता है दक्षिण का जो वैभव है, यानी कि कांजीवरम और कसाबू साड़ियाँ, ये हमारे दक्षिण की बहुत ही, कहते हैं कि शुद्ध रेशम होता है ना उनसे, और सुनहरे जरतोजरी के बॉर्डर के लिए ये साड़ियाँ फेमस है।
0: और जब फेमस तुमने बता ही दिया है, तो हमारी एक और कढ़ाई भी है, चिकन की।
1: बिल्कुल।
0: यानी लखनवी कढ़ाई जिसे कहते हैं, लखनऊ की शान है, यानी यूपी की शान है, तो वहाँ पे चिकनकारी की जाती है, जिससे सूती कपड़े के ऊपर ही, इसको आप सिंथेटिक भी, आजकल सेमी सिंथेटिक भी हैं, आप उसमें भी पहन सकते हैं, रेशमी में भी, लेकिन जो सूती कपड़े का अपना एक एहसास होता है ना, वो हमें ऐसे लगता है जैसे प्रकृति की गोद में ले जाकर किसी ने एक ठंडा सा आंचल जो है वो हमारे ऊपर ओढ़ा दिया है।
1: अब क्योंकि मैं बात कर रही थी दक्षिण की ना, तो मैं अपनी सखियों को ना, मैं केरल को जरूर छूना चाहूंगी, है ना। केरल है ना, जहाँ पर कहते हैं कि गॉड्स ऑन कंट्री कहा जाता है ना, वहाँ की महिलाएं कसावू साड़ी या मुंडुम नेरियाथम पहनती हैं। पूरी तरह से सफेद या ऑफ वाइट ये साड़ी होती है, और इसमें पता है सुनहरी रंग का ना बॉर्डर होता है, जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है।
0: और ये पसंद क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जब श्रृंगार हो, जब रास हो, तो वो खूबसूरती अपने आप में ही अलग रूप लेकर झलक जाती है, और झलकती है क्योंकि हमारे विभिन्न राज्यों के शानदार परिधानों में, जहाँ हम आधुनिकता की बात करते हैं, फैशन की बात करते हैं,
1: बिल्कुल,
0: तो वहाँ पर हमारी पारंपरिक साड़ी, जिसे वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल किया गया है, हमारे भारत की एक अलग पहचान,
1: ये हमारे देश की पता है पहचान तो है ही, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि ये जो हमारा सादा पहनावा है ना, ये बाहरी तड़क भड़क से ज्यादा जरूरी है हमारे मन की शांति को भी, और सादगी को पूरे संसार के सामने प्रस्तुत करता है।
0: बिल्कुल सही, प्रस्तुत करता है, तभी तो श्रृंगार के लिए कुछ खूबसूरत बातें भी कही जाती हैं। कुछ अंदाजा है?
1: नहीं आप ही बताइए।
0: वो अंदाजा इसलिए कि तुम्हारी प्यारी सी स्माइल के साथ में, जो तुमने डार्क शेड की जो रेड लिपस्टिक लगाई है, तौबा तौबा, इतनी प्यारी चीज, क्योंकि खूबसूरती से, नजाकत से कोई चीज कही जाती है, तो लफ्ज भी नरमाई में आ जाते हैं, एक प्यारा सा खूबसूरत नगमा बन के।

0: चलिए सखियों, अब बिना देर किए खोलते हैं अपनी इस पुटली का तीसरा और सबसे अनमोल पन्ना और जानते हैं कि हमारे घर और समाज की वो असली ताकत क्या है जो समाज में शांति को स्थापित करती है। सखियों, जब हम शांति शब्द सुनते हैं ना, तो स्वर्ण जी पता है सबसे पहले तो हमारे दिमाग में यही बात आता है कि युद्ध का ना होना, है ना, और देश की सीमाओं पर शांति का होना आता है। लेकिन सच तो यह है कि जो असली शांति होती है उसकी शुरुआत हमारे घरों से होती है।
1: बिल्कुल
0: स्वर्ण जी, वो हमारी गलियों से होती है और या यूं कहूं कि हमारे आपसी रिश्तों से होती है।
1: बिल्कुल सही।
0: और इस शांति की ना सबसे बड़ी सूत्रधार, सबसे बड़ी शिल्पी होती है एक महिला।
1: बिल्कुल। और जब महिला अगर शांति की सूत्रधार है तो वो कैसे होगी, क्योंकि समाज में शांति का जो योगदान है वो सिर्फ एक परिवार के नाते नहीं आता, वो महिला की खुद की भूमिका के नाते आता है।
0: हाँ।
1: आपका आचरण, आपका व्यवहार, आपकी परवरिश और धैर्य से चलने वाला आपका खुद का एक मुकाम, और साथ ही जो गुण होता है ना शांति का, वो सुलझाने में मदद करता है, रिश्तों को सहेजने में मदद करता है। और तभी हम कहते हैं कि समाज में शांति है और वहाँ पे हम बहनें अपना एक अलग रोल प्ले कर रही होती हैं।
0: जी बिल्कुल। पता है स्वर्ण जी, जैसे कि आपने अभी मुझे बताया, और साथ ही ना ऐसे भी बोलते हैं कि ना एक पुरुष जो है उसको अगर हम संस्कारित करते हैं या उन्हें शिक्षित करते हैं तो वो एक व्यक्ति जो है वो संवरता है। लेकिन वहीं जब हम एक महिला को संवारते हैं ना, तो सिर्फ एक महिला नहीं संवरती है, वो पूरा परिवार और समाज संवारती है।
1: बिल्कुल सही। तभी तो वो परवरिश अच्छी कर पाएगी, सबको एक नई पहचान के साथ में समाज में कैसे चलना है, व्यवहारिकता क्या है वो सिखा पाएगी।
0: बिल्कुल। और मैंने तो ये भी है ना, मतलब हम महिलाओं में ये गुण देखे हैं कि हम लोग स्वभाव से ही ना बहुत हमारे अंदर करुणा होती है, सहनशीलता होती है, ये हम सभी महिलाएं ना ममता का प्रतीक होती हैं।
1: बिल्कुल होती हैं। और साथ में हम हमारे बच्चों को बहुत कुछ लेके चलने वाली होती हैं
0: जी,
1: क्योंकि हमारे बच्चों को समाज की सहिष्णुता और उसके बारे में जानकारी देना बहुत जरूरी है।
0: सखियों, साथ ही ना अगर हम ये कहें कि ये जो सहिष्णुता का जो बीज है ना स्वर्ण, ये है ना एक माँ अपने बच्चे में ना बोती है और वही आगे चलकर समाज में शांति का, बरगद का पेड़ बनता है।
1: और बरगद का पेड़ बनेगा तो बच्चा जब बड़ा होगा तो वो कुछ ना कुछ अपने लिए करियर भी सोचेगा।
0: बिल्कुल। जैसे कि हमारी भारतीय सेना।
1: बिल्कुल सही। भारतीय सेना के लिए बात कहना कुछ कम नहीं होगा, क्योंकि ये एक अलग ही विषय हो जाता है
0: जी,
1: क्योंकि ये हमारी सहिष्णुता के साथ जुड़ा है, हमारी सिक्योरिटी के साथ जुड़ा है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये हमारी वैश्विक शांति के साथ भी जुड़ा है। तो क्यों ना एक सलाम हमारी भारतीय सेना
0: के नाम।

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: आकाशवाणी बीकानेर के संग।
1: जी हाँ, अपने उत्पादों, सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
0: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
1: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
0: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
1: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
0: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
1: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
0: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: सखियों, अभी बात हो रही थी भारतीय सेना की। जी हाँ, हमारी भारतीय सेना के बारे में हम जितनी बात करें उतना कम है। हमारे देश की सेना हमेशा ऐसे ही सीमाओं पर डटी रहती है, हमारी रक्षा करती है, वो जागते हैं ताकि हम सो सके, है ना। लेकिन अगर हम फिर से मैं कहूँगी कि अगर महिलाओं की बात करें तो हम महिलाएं ना हमेशा बीच का रास्ता निकालती है युद्ध की जगह, है ना।
3: सही कहा, और वो करती भी क्यों है, ताकि वहां पे हमारा सौहार्द बना रहे, शांति बनी रहे।
2: हम महिलाएं ना हमारे अंदर अहंकार की जगह अपनों को जोड़ने की जो भावना है वो बहुत प्रबल होती है।
3: बिल्कुल,
2: हम केवल ना तर्क से नहीं बल्कि दिल से बातें करती हैं
3: और दिल से बातें होती हैं तो वो गुनगुनाती हैं, लहराती हैं और अपनों के साथ फिर से प्यार मोहब्बत से जुड़ जाती हैं,
2: जिससे ना स्वर्ण पता है बड़े से बड़े विवाद भी शांत हो जाते हैं। अंत में बस मैं इतना ही कहूंगी सखियों कि समाज एक सुंदर सा गुलदस्ता है और महिलाएं उसकी खुशबू है। इस खुशबू को बिखरने दीजिए ताकि नफरत और अशांति की हर दीवार ढह जाए।
3: और जब दीवारें ढहेंगी तो हम और आप और करीब आ जाएंगे। साथ में हम आपसे अपने दिल की वो बातें करेंगे जो बहनों के मन में कहीं ना कहीं परतों में छुपी होती हैं। और ये परत दर परत जब हम खोलते हैं तो कभी करते हैं मुलाकात खुद से, लेकिन एक स्पर्श, एक आदर्श और एक खुद का, एक अपना, जिसको कहते हैं पहचान की परिभाषा, स्वयं खुद नारी के पास ही होती है।
2: बिल्कुल,
3: और वो गीतों से अलग नहीं होती, तो शायद गीत आपको खुद से मिलवाते हैं।

0: स्वर्ण पता है जब हम इतनी नारी की बातें कर रहे हैं, प्रकृति की बातें कर रहे हैं, तो वैसे भी ये होनी तो लाजमी है क्योंकि आज तारीख भी तो 20 है।
1: बिल्कुल, आज 20 मई है और इतनी खास क्योंकि जिसने प्रकृति का सुकुमार बनकर हमारे को कविताओं में, कहानियों में और साहित्य में उस जगह पे पहुंचा दिया जहाँ पे नारी एक बेहद खूबसूरत सी पंक्ति बनकर नहीं रही, दिलों में उतर गई।
0: बिल्कुल, जहाँ खुद नारी को प्रकृति बना दिया, इतने प्यारे सुमित्रा।

0: नंदन पंत जी की आज जयंती भी है।
1: बिल्कुल सही, और इन्हें प्रकृति का सुकुमारता कहा जाता है। ये सुकुमार इसलिए कि जब इनका जन्म हुआ था 20 मई 1900 में और जब इनका देहावास हुआ 28 दिसंबर 1977 में, इस दौरान उन्होंने न जाने कितनी खूबसूरत रचनाओं में महिला का श्रृंगार प्रकृति के साथ में जोड़कर उन्हें बेहद खूबसूरती से प्रस्तुत किया।
0: इन्हें ना हिंदी साहित्य का महान चितेरा भी कहते हैं।
1: बिल्कुल,
0: है ना। और साथ ही इनकी लेखनी से ना जो शब्दों को मखमली एहसास इन्होंने दिया है ना, उसे हम सभी आज भी महसूस करते हैं।
1: बिल्कुल, आज भी है, और अभी जैसे तुम कह भी रही हो तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं क्योंकि प्रकृति का सौंदर्य, मानवीकरण और कोमल भावनाएं इतनी सहजता से, शालीनता से, इतने प्रेम और आत्मीयता से उन्होंने प्रस्तुत करी, उनके लिए उनको सलाम करते हैं।
0: और साथ ही ना पता है स्वर्ण, उन्होंने जिस तरह प्रकृति के ना पल पल बदलते रूप को ना, उसकी कोमलता को और उसकी असीम शांति को ना अपनी कविताओं में उतारा है ना, वह बेमिसाल है। पता है पंत जी की जो कविताएं हैं ना, उनमें प्रकृति की सुकुमारता तो है ही, साथ ही सहनशीलता है। उसका सीधा संबंध किससे है?
1: प्रेम से है
0: और नारी से है जी। पंत जी ने ना प्रकृति को हमेशा एक माँ, एक सहचरी और एक देवी के रूप में ना देखा है।
1: बिल्कुल सही, और जब उन्होंने उसे प्रेम के रूप में देखा, प्रकृति का एक अनुपम रूप वो उसकी पृष्ठभूमि बन गई, और उस पृष्ठभूमि में वो नैया जो हर भावना को लेकर अपने किसी ना किसी द्वार से निकलकर किसी ना किसी तीर तक पहुंची जाती है और प्रकृति का मनोहरी दृश्य सजीव चित्रण करती है। और इनकी बहुत सी ऐसी रचनाएं हैं जिन्होंने अपने आप को नहीं लेकिन प्रकृति के बेहद खूबसूरत रंगों को, महिलाओं को, उनकी स्वतंत्रता को सहेजा है।
0: पता है पंत जी की ना एक बहुत ही ना प्रसिद्ध पंक्ति है जो मैं आज सभी को सुनाना चाहती हूँ, जिसमें वो नारी के इसी रूप को ना वंदनीय बना रहे हैं। ठीक है, मुक्त करो नारी को मानव, चिर वंदनीय नारी को। मुक्त करो नारी को मानव, चिर वंदनीय नारी को, युग युग की बरबर कारा से जननी सखी प्यारी को।
1: क्या बात है, इतनी खूबसूरत पंक्तियां तो पंत जी ही कह सकते हैं क्योंकि उनकी रचनाएं ही इतनी विशेष हैं। उनकी कोमल कांत शब्दावली का अगर हम कहें कि जितना भी तारीफ करें वो कम ही रहेगा। और उनकी कुछ सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में नारी को उन्होंने बहुत खूबसूरती से पेश किया है
0: जी। हाँ बताएं कोई बात नहीं, क्योंकि विषय ऐसा है ना कि जिस पर बस हम दोनों बोलते ही रहना चाहते हैं,
1: क्योंकि उसमें जैसे जागरण, पल्लव, गुंजन, इनके अंदर उन्होंने इतनी खूबसूरती से अपनी नारी की रचना को प्रस्तुत किया। और शायद तुम्हारे जो शब्द हैं, जो तुम उनकी पंक्तियां लेकर आई हो, ये उन्हीं की रचनाओं का एक आधार है
0: जी। बिल्कुल, लेकिन पता है ये जो ये पंक्तियां वो लिख रहे थे उस वक्त, तो उस वक्त ना महिलाओं की जो स्थिति थी वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। उस वक्त महिला बहुत बुरी तरह से समाज की बुराइयों के बीच जकड़ी गई थी, उसे हर तरह से बांधा गया था, हर कुरीति में उसको घसीटा गया था। तो बस इन्हें से दुखी होकर ना उन्होंने, पंत जी ने इस बारे में और नारी की स्वतंत्रता को लेकर बहुत ही विशेष रूप से बहुत ही बातें, कहानियां, कविताएं लिखी हैं।
1: बहुत सुंदर कहा है, और कुछ पंक्तियां भी बेहद खूबसूरत कही हैं
0: जी। बिल्कुल, उन्होंने लिखा है, तुम देवी हो, तुम चेतना हो, तुम इस भूतल की अमर ज्योति, तुम्हारे ही आंचल में पले महापुरुष, तुम्हारी ही ममता से महकी यह धरती।
1: बहुत खूबसूरत, और इस कृति के लिए चिदंबरा की ये पंक्तियां हैं जिन्हें उन्हें 1968 में प्रतिष्ठित भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और सम्मान की जहां बात की जाए तो किसी का सम्मान बेहद छोटा होता है, लेकिन कुछ एक में उन्हें 1961 में पद्म भूषण,
0: 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है, साथ ही उन्हें 1965 में सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला है।
1: और सही कहा कि पंत जी का साहित्य हमें प्रकृति के करीब तो लाता है
0: और संवेदनशील भी बनाता है।
1: बिल्कुल, और उनकी जयंती पर उनकी स्मृतियों को हम नमन करते हैं। तो खूबसूरती से नारी का एक और खूबसूरत रूप शायद इन कमतियों में आ जाएगा।

0: Akashvani at 90.
1: सुन पता है अब दोपहर के ना 2 बजने वाले हैं और घर जाने के लिए भी सोचना पड़ रहा है
2: बिल्कुल
1: क्योंकि जो स्किन है ना हाँ। वो इतनी ज्यादा खराब या टैनिंग आ जाती है ना कि क्या बताएं अगर आज कुछ लेके आई हो अपने पिटारे में से तो प्लीज आप हमें और हमारी सखियों को दीजिए ना बताइए
2: बिल्कुल है क्योंकि देखो जब हम रसोई की और हमारी ब्यूटी की बात करते हैं तो दोनों एक ही जगह से शुरू होती है
1: जी
2: घर में खीरा तो होता ही है
1: हाँ सभी
2: तुम खाती भी हो
1: बहुत
2: तो उस खीरे से ही आप अपने लिए ना एक फेस पैक बना सकती हैं और डिटॉक्स वाटर बना सकती हैं
1: दोनों
2: हाँ एक पंथ दो काज हो जाएंगे
1: तो बिल्कुल आप ना इसे मुझे भी बताइए और सखियों आप भी ना कॉपी और पेन निकाल लीजिए और ये लिखना ना भूलिएगा
2: क्योंकि देखो खीरा और चंदन एक ऐसी चीज है जो घर में आम हमें मिल जाती है और हम क्या करते हैं कि खीरे को कस के रख लीजिए यानी कि उसके गूदा निकाल लीजिए कद्दूकस कर लीजिए और उसका या तो अगर आप रस लेना चाहती हैं तो रस ले सकती हैं उनके साथ में आपको चंदन और हल्का सा मेट

0: बिल्कुल, आप ना इसे मुझे भी बताइए, और सकियो आप भी ना कॉपी और पेन निकाल लीजिए और ये लिखना ना भूलिएगा।
1: क्योंकि देखो खीरा और चंदन एक ऐसी चीज है जो घर में आम हमें मिल जाती है, और हम क्या करते हैं कि खीरे को कस के रख लीजिए, यानी कि उसके गूदा निकाल लीजिए, कद्दूकस कर लीजिए, और उसका या तो अगर आप रस लेना चाहती हैं तो रस ले सकती हैं। उनके साथ में आपको चंदन और हल्का सा मेट मिक्स करना है
0: जी, यानी कि मुल्तानी मिट्टी। और आप ना क्षमा कीजिएगा, लेकिन मुझे पोर्शन भी जानना है कि हमें उसमें पोर्शन कितना लेना है इन दोनों का।
1: उनके अंदर आपको 2 चम्मच अगर आप ले रहे हैं, क्योंकि हर एक का फेस अलग अलग होता है, कोई ज़्यादा लगाता है कोई कम लगाता है, तो आप खीरे का रस अगर 2 चम्मच लेती हैं तो 1 चम्मच चंदन का पाउडर लीजिए। लेकिन कई बार लोगों को चंदन से रिएक्शन हो जाता है
0: जी,
1: क्योंकि बहुत सेंसिटिव स्किन होती है, खीरे के अंदर केमिकल्स जो होते हैं वो कई बार चंदन से रिएक्शंस करते हैं, तो आपको आप उसको कम लीजिएगा। और साथ ही आपको उसके साथ में मुल्तानी मिट्टी इसलिए या गुलाब जल इसलिए ताकि उस टेक्सचर को वो स्मूद कर दे
0: जी।
1: तो यानी कि 2 चम्मच का अगर खीरे का रस है तो 1 चम्मच नहीं लेकर आप उसको आधा चम्मच चंदन का पाउडर और मुल्तानी मिट्टी का पाउडर मिक्स करके लीजिए, क्योंकि चंदन आपको ठंडक देगा, मुल्तानी मिट्टी आपके फेस को स्ट्रेच करने में मदद करेगी, और साथ ही जो गुलाब जल आपने डाला है ना वो टोन करने का काम करता है।
0: ठीक है, लेकिन अब आपने ये नहीं बताया कि इसे हमें लगाना कितनी देर है।
1: अब इसको लगाना आपको 15 से 20 मिनट है। देखो एकदम से तो सूखेगा नहीं, अगर आप धूप में चली गई ना तो मिनटों में सूख जाओगी, लेकिन धूप में जाना नहीं है
0: जी,
1: टैनिंग एक्स्ट्रा हो जाएगी। तो आपको पंखे में हल्के कमरे में सूती कपड़ा भी आप रख सकती हैं उसके ऊपर गीला करके, ताकि आपको चेहरे पर ठंडक चाहिए तो, लेकिन उसको हल्का सूखने दीजिए। और जब वो सूख जाए तो आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि ज़्यादा जल्दी स्क्रब नहीं करना, उसको जल्दी जल्दी उतारने की कोशिश नहीं करनी, उसके ऊपर पहले पानी के छींटे ले लीजिए या स्प्रे कर लीजिए,
0: फिर ताकि वो सॉफ्ट हो जाए, वरना स्किन पे कहते हैं
1: रैशेज होने का डर रहता है,
0: रैशेज हो जाते हैं और स्किन लूज हो जाती है ना।
1: बिल्कुल, और आप जब इसको हटाएंगी तो आप खुद देखेंगे कि आपके चेहरे पे एक अलग ही ग्लो होगा।
0: तो बिल्कुल सकियो, तैयार रहिएगा इस ग्लो के लिए, इस गर्मी से बचने के लिए स्वर्ण ने हमें बहुत ही खूबसूरत टिप बताई है। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं खीरे के डिटॉक्स वाटर की तरफ, क्योंकि कह रहे हैं कि मौसम ही कुछ ऐसा है, पानी की प्यास तो है ही, तो साथ में सेहत का भी गर्मियों में ख्याल रखा जाए तो कैसा रहेगा।
1: अब देखो जैसे आपने कद्दूकस किया था, अब दूसरा पंथ क्या चालू हो रहा है कि जब आपने कद्दूकस किया, एक्स्ट्रा जो पल्प आपका रह गया, आपने तो सिर्फ जूस लिया था, तो उस पल्प को आप क्या कर सकते हैं, पानी के अंदर 1 लीटर पानी के अंदर डाल लीजिए, उसके साथ में आप आधा नींबू डाल सकती हैं और उसमें 5-6 पुदीने की पत्तियां डाल दीजिए।
0: ठीक है,
1: यानी कि एक खीरे का जो पल्प आपने अपने फेस के ग्लो के लिए लिया था, वही आप अपना डिटॉक्स वाटर बनाने में इस्तेमाल कर रही हैं।
0: लेकिन सखियो याद रखिएगा कि ये जो आप डिटॉक्स वाटर बना रही हैं ना, ये किसी आम बर्तन में नहीं, इसे आप कांच की बोतल या जार में रखें,
1: क्योंकि इसे आप बाद में फ्रिज में रख सकते हैं और ये आपको रिएक्टिव नहीं करता किसी भी मेटल के साथ में,
0: वरना अगर आप इसे और भी किसी बर्तन में रखेंगे तो ये खराब होने के इसके ज्यादा चांस रहते हैं,
1: और स्मेल आने लग जाती है।
0: मिट्टी के बर्तन में भी अगर हम इसे बनाएं तो ये बहुत ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक रहता है
1: और वो ठंडक तो देता है, लेकिन साथ में एक चीज और आप इसमें कर सकती हैं, आप अपने स्वाद अनुसार नमक रख सकते हैं, रात को भिगो कर रख सकती हैं आप इस सारे को बनाकर। ये किस में मदद करता है, वजन को कम करने में, दूसरा हाइड्रेशन होने से बचाता है
0: जी,
1: और त्वचा में चमक लेकर आता है। मान लीजिए किसी को सूजन होती है, पेड़ों में सूजन होती है, पैरों में सूजन होती है, उस सूजन को कम करने में भी मदद करता है। और सबसे बड़ी बात कि इसे हमें दिन में थोड़ा थोड़ा पीना है,
0: यानी कि हम इस डिटॉक्स वाटर को पूरा दिन थोड़ा थोड़ा पीकर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं। तो सखियों बिल्कुल आपको अपना ध्यान रखना है और साथ ही अपने फेस का भी ध्यान रखना है,
1: और साथ में इसे रूटीन में अपनाना है। जैसे संध्या आजकल इन्होंने जिम ज्वाइन कर रखा है और संध्या डिटॉक्स वाटर का इस्तेमाल सबसे अच्छा करने वाली है ना संध्या?
0: जी बिल्कुल, आपने तो सभी को बता दिया, लेकिन कोई बात नहीं सखियों, अपना ध्यान रखना तो अच्छी बात है,
1: बहुत अच्छी बात है। देखिए अगर इन्होंने व्यायाम लिया है तो खुद के लिए समय निकालना, खुद से मुलाकात करना जरूरी है, क्योंकि बच्चों की भागा दौड़ में संध्या को समय नहीं मिल पाता
0: जी।
1: और इसकी अपनी एक लाइफस्टाइल है जो ये अपने लिए जीना चाहती है, तो वहां कहीं गुरोज भी नहीं है। अगर आप खुद के लिए जीने के लिए अपने आप को एक नई जगह पे रखना चाह रहे हैं,
0: बिल्कुल
1: तो।
0: सखियो क्योंकि खुद के लिए समय निकालना बहुत जरूरी है, हम सबके लिए समय निकालते हैं, सबके लिए सब कुछ करते हैं, हम आपसे हमेशा ये बात कहते हैं कि आप अपने लिए समय निकालिए, लेकिन अब हम भी हमेशा के लिए अपने लिए समय निकालना शुरू कर चुके हैं। तो चलिए ना इस शुरुआत को, इस पॉजिटिव वे को आगे बढ़ाते हैं और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं इस बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ।

0: जी भाई, जिंदगी में जहाँ चलने की बातें हो गई, हमारी अपनी बातें हो गई, तो बहनों अब हमारे पास में समय की घड़ी बिना हमें जाने के लिए बोल रही है। हम आपसे फिर से मिलेंगे, फिर से आपकी इसी पसंदीदा कार्यक्रम में, आपकी अन्य रेडियो सखियों के साथ में। तो इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए आपकी अपनी डॉक्टर स्वर्ण रेखा
1: और संध्या ओझा को।
0: नमस्कार, नमस्कार।

0: European allies over the Iran conflict. According to a White House official, the summit to be held from June 15 to 17 in Avion-les-Bains in southeastern France will focus on issues including artificial intelligence, trade, critical minerals, immigration and global security. In Congo, the death toll due to Ebola outbreak has risen to 136. Health Minister Roger Kamba informed this amid the spread of deadly virus that has gripped the eastern part of the country. According to Congolese health authorities, the country has recorded 543 suspected cases and 32 confirmed infections, while neighboring Uganda has reported 2 confirmed cases. On to sports. In IPL cricket, Kolkata Knight Riders will take on Mumbai Indians at the iconic Eden Gardens in Kolkata. The match will begin at 7:30 p.m. Yesterday, Rajasthan Royals defeated Lucknow Super Giants by 7 wickets in a high-scoring match in Jaipur last night, keeping their playoff hopes alive. Rajasthan Royals overhauled the massive target of 221 runs with 5 balls to spare. Benchmark domestic equity indices were trading marginally lower in the afternoon session. The Sensex dropped 101 points to 75,100, while the Nifty dipped 24 points to 23,594 when reports last came in. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome in a short while from now to boost economic cooperation. Prime Minister Modi and Giorgia Meloni outline roadmap for India-Italy strategic partnership, highlight several economic initiatives in a joint article. DRDO completes trials of drone-launched unmanned precision-guided missile. Defence Minister terms it a strategic milestone. Supreme Court rejects petition challenging centre's decision to undertake caste enumeration. Severe heatwave grips north and central India. Temperature breaches 44-degree mark at several places. And in IPL cricket, hosts Kolkata Knight Riders to take on Mumbai Indians at Eden Gardens. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने एक साझा लेख में भारत इटली महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक पहलों का उल्लेख किया डीआरडीओ ने मानव रहित ड्रोन मिसाइल यूएलपीजीएम MP3 का सफल परीक्षण किया रक्षा मंत्री ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की उत्तर और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी कई स्थानों पर तापमान 44 डिग्री के पार और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के साथ साथ मौजूदा वैश्विक परिदृश्य पर भी व्यापक बातचीत करेंगे दोनों देशों के बीच आज कई महत्वपूर्ण समझौते होने की संभावना है दोनों नेता कई विषयों पर अपने विचार साझा करेंगे आज की बातचीत से भारत इटली की मित्रता को और बढ़ावा देने पर चर्चा की जाएगी हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के महत्व को दर्शाने के लिए रोम में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं प्रेस वक्तव्य समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है रोम से सुपर्णा भाटिया
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वे इटली के प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच

0: बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अब ये संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने संयुक्त लेख में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। दोनों नेताओं ने कहा कि ऐसे समय में जब वैश्विक व्यवस्था में गहन परिवर्तन हो रहे हैं, भारत इटली साझेदारी उच्चतम राजनीतिक और संस्थागत स्तरों पर नियमित आदान प्रदान से निर्देशित है। दोनों नेताओं ने कहा कि उनका सहयोग इस साझा समझ को दर्शाता है कि 21वीं सदी में समृद्धि और सुरक्षा राष्ट्रों के नवाचार करने, ऊर्जा परिवर्तन का प्रबंधन करने और कूटनीतिक संप्रभुता को मजबूत करने की क्षमता पर निर्भर करेगी। दोनों नेताओं ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता दोनों दिशाओं में व्यापार और निवेश के प्रवाह को बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रसिद्ध चित्रकार जियाम पावलो टोमासिट्टी की भारतीय संस्कृति पर किए गए कार्यों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कलाकार ने इटली के रोम दौरे में वाराणसी पर बनी अपनी विशेष पेंटिंग प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री टोमासिट्टी का भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम 4 दशक से अधिक पुराना है। एक अन्य पोस्ट में श्री मोदी ने भारतीय नृत्य शैलियों के प्रति 5 इतालवी कलाकारों के प्रेम की भी प्रशंसा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यूबैक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा, रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस अत्यंत उपयोगी बैठक में दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। ये समझौता ज्ञापन भारत के राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय, कोरिया राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना सहयोग के बीच हुआ। रक्षा मंत्री ने कहा कि वे दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए उत्सुक हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश ने आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM-V3 के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये देश के रक्षा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
1: ये परीक्षण आंध्र प्रदेश में कुरनूल के पास DRDO की टेस्ट रेंज में एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर दोनों तरह से किए गए। इस दौरान मिसाइल प्रणाली को एक एडवांस्ड इंटीग्रेटेड ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम के माध्यम से संचालित किया गया। इन परीक्षणों से विभिन्न परिस्थितियों में मिसाइल की सटीक मारक क्षमता, विश्वसनीयता और प्रभावशीलता प्रदर्शित होती है। इस मिसाइल को हैदराबाद के रिसर्च सेंटर इमारत ने DRDO के साथ मिलकर विकसित किया है। पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित ये मिसाइल आत्मनिर्भर भारत पहल की बढ़ती उपयोगिता को दर्शाती है। इससे देश के भीतर रक्षा प्रणाली को और सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी। विजयवाड़ा से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ULPGM-V3 मिसाइल के सफल विकास परीक्षणों के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, रक्षा सह उत्पादन भागीदारों और उद्योग जगत की सराहना की है। उन्होंने टैंक रोधी भूमिका के लिए हवा से जमीन मोड और ड्रोन, हेलीकॉप्टर तथा अन्य हवाई लक्ष्यों के लिए हवा से हवा मोड में इसकी प्रभावशीलता के बारे में जानकारी दी। श्री सिंह ने इसे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के तहत जाति आधारित जनगणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका आज खारिज कर दी। अदालत ने कहा है कि ये मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। पीठ ने कहा कि इस तरह के आंकड़े एकत्र करने में कोई बुराई नहीं है और मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र तथा सभी राज्यों और केंद्र

0: प्रदेशों से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें सरकारी कानूनी पैनलों और विधि अधिकारियों की नियुक्तियों में महिला वकीलों के लिए 30% आरक्षण की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक ट्रस्ट की याचिका पर नोटिस जारी किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता उत्तर बंगाल का सर्वांगीण विकास है। उन्होंने कहा कि वो विकास परियोजनाओं की समीक्षा और सरकारी योजनाओं के प्रभावों की निगरानी के लिए हर महीने एक बार उत्तर बंगाल का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर बंगाल विकास मंत्री उत्तर बंगाल सचिवालय उत्तरकन्या सिलीगुड़ी में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक जनता दरबार का आयोजन करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जनता दरबार के बाद दिन में 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक अधिकारियों के साथ प्रशासनिक समीक्षा बैठक होगी और उसके बाद उसी दिन दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक विकास मंत्री क्षेत्र के सभी सांसदों और विधायकों के साथ विकास कार्यों को गति देने के लिए समीक्षा बैठक करेंगे। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि सरकार स्मार्ट विनियमन और उत्तरदायी शासन के माध्यम से बाजार में निष्पक्षता बढ़ाकर नियामक बोझ को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व मापन दिवस 2026 के अवसर पर वर्चुअल रूप से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह परिकल्पना की है कि भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता वैश्विक मानकों और पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र के महानिदेशक नवीन कुमार सिंह ने आज कहा कि देश के डिजिटल अर्थव्यवस्था से वर्ष 2030 तक देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में लगभग 20% के योगदान देने की उम्मीद है। वे नई दिल्ली में फिक्की के साइबरकॉम के 7वें संस्करण के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मध्य प्रदेश के भोपाल में नोएडा की 33 वर्षीय महिला की संदिग्ध मौत का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर त्वरित निष्पक्ष और समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। महिला आयोग ने 7 दिन में विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट भी मांगी है। पंजाब पुलिस ने दुबई स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है जो सीमावर्ती राज्य पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अबू धाबी से काम कर रहा था। पुलिस ने 14 किलोग्राम मादक पदार्थों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी का अंतिम संस्कार आज हरिद्वार में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन को राज्य के लिए अपूर्णीय क्षति बताया।
1: मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी जी का जाना पूरे राज्य के लिए और देश के लिए बहुत अपूर्णीय क्षति है और उन्होंने सेना के अधिकारी के रूप में देश की रक्षा के लिए अपनी सेवाएं दी, अभूतपूर्व योगदान दिया। उसके बाद भारत सरकार में मंत्री के नाते और राज्य में मुख्यमंत्री के नाते उन्होंने शुचिता, पारदर्शिता और अनुशासन और समय की पाबंदी, ऐसे बहुत सारे अनुकरणीय जो कार्य हैं अपने समय में किए, वो हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में लू की स्थिति बने रहने का अनुमान व्यक्त किया है। राजस्थान के अधिकांश जिले भी इस समय भीषण लू की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने आज राज्य के 2 जिलों में लू की स्थिति को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जबकि 14 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
2: प्रदेश में भीषण गर्मी और गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं। ज्यादातर जिलों में दिन का पारा 42 से 46 डिग्री वहीं रात का तापमान 46 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। इस बीच चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने अस्पतालों में हीट वेव प्रबंधन को लेकर सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए अलग से बेड आरक्षित रखने, जरूरी दवाइयां उपलब्ध कराने के साथ छाया और पेयजल का प्रबंध करने को कहा गया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: पंजाब और हरियाणा में भी भीषण गर्मी जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने दोनों राज्यों में गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
3: चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग के डायरेक्टर सुरेंद्र पाल ने आकाशवाणी को

0: बताया कि आने वाले 3-4 दिनों में मौसम शुष्क रहेगा और तापमान बढ़ेगा। दोनों राज्यों के पश्चिमी जिलों में लू की स्थिति रहेगी। पंजाब में ये जिले अमृतसर, फिरोजपुर, तरनतारन, मानसा, संगरूर, बठिंडा और मुक्तसर होंगे और हरियाणा में हिसार, रोहतक, झज्जर, भिवानी, गुरुग्राम और फरीदाबाद में सबसे ज्यादा गर्मी महसूस होगी। पिछले 24 घंटों में पंजाब में फरीदकोट 47.3 डिग्री सेल्सियस और हरियाणा में रोहतक 46.9 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म जिले रहे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
1: चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज बीजिंग में द्विपक्षीय संबंधों, ईरान यूक्रेन संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वार्ता से बीजिंग और मॉस्को के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूती मिलेगी और संयुक्त राष्ट्र, दक्षिण अफ्रीका परिषद और ब्रिक्स जैसे मंचों के माध्यम से समन्वय बढ़ेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले महीने फ्रांस में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और कई यूरोपीय सहयोगियों में बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 101 अंक गिरकर 75,100 जबकि निफ्टी 24 अंक की गिरावट के साथ 23,594 पर कारोबार कर रहा था। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने एक साझा लेख में भारत इटली महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक पहलों का उल्लेख किया। डीआरडीओ ने मानव रहित ड्रोन मिसाइल ULBGM-V3 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। उत्तर और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगा हर्ट्ज पर दोपहर के 2:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। कार्यक्रम का पहला गीत लीजिए, सुनिए शान की आवाज़ में। उनका साथ दिया है श्रेया घोषाल ने। फिल्म का नाम है पीके। गीत को लिखा है स्वानंद किरकिरे ने। संगीत है शांतनु मोइत्रा का।

0: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत अखिल सचदेवा और मनशील गुजराल की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है बद्रीनाथ की दुल्हनिया। गीत को लिखा है शब्बीर अहमद ने, संगीत है अखिल सचदेवा का।

रोमी और पवनी पांडे की आवाज़ों में आपने सुना फिल्लौरी फिल्म का ये गीत। गीत को लिखा था अन्विता दत्त ने, संगीत था शाश्वत सचदेव का। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति लीजिए सुनिए एआर रहमान और मोहित चौहान की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है रॉकस्टार। संगीत है एआर रहमान का।

रॉक स्टार फिल्म का गीत आपने सुना ए आर रहमान और मोहित चौहान की आवाज़ों में, संगीत था ए आर रहमान का। फिल्मी गीतों के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए अगला गीत अदिति सिंह शर्मा और अमिताभ भट्टाचार्य की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है टू स्टेट्स। गीत को लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने, संगीत है शंकर एहसान और लॉय का।

ये गीत आपने सुना केके की आवाज़ में, फिल्म का नाम था भूल भुलैया। इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। दोपहर के 3 बज रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्स पर हमारी पहली सभा अब यहीं समाप्त होती है। FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर हमारी सभा जारी रहेगी। ये प्रोग्राम हमारे DRM चैनल 1386 किलोहर्ट्ज़ पर भी उपलब्ध थे। शाम 4:58 पर अपनी दूसरी सभा के साथ हम आपकी सेवा में फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।

0: 101.6 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजने को है। इसके साथ ही हमारी आज की संध्याकालीन सभा अब प्रारंभ होती है। हम इस सभा में आप सभी शोधी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। सभा में आइए, सबसे पहले सुनते हैं हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और इटली द्विपक्षीय व्यापार को 20 बिलियन यूरो तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। इटली के रोम में प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी में तकनीक और नवाचार मुख्य केंद्र हैं।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि श्री मेलोनी के नेतृत्व में दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा और ऊर्जा मिली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों की सभ्यता बहुत पुरानी है।
2: रोम को विश्व में इटर्नल सिटी के रूप में जाना जाता है। भारत में मेरी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी काशी उसको भी अनादि और शाश्वत नगर माना जाता है। जब दो सभ्यताएं मिलती हैं तो बातचीत केवल एजेंडा तक सीमित नहीं होती। इसमें इतिहास की गहराई, भविष्य की दृष्टि और मित्रता की सहजता तीनों साथ दिखाई देते हैं।
1: हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अब ये संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री मेलोनी ने संयुक्त लेख में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। ये संबंध स्वतंत्रता, लोकतंत्र और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण के मूल्यों पर आधारित हैं। दोनों नेताओं ने कहा कि ऐसे समय में जब वैश्विक व्यवस्था में गहन परिवर्तन हो रहे हैं, भारत इटली साझेदारी उच्चतम राजनीतिक और संस्थागत स्तर पर नियमित आदान प्रदान से निर्देशित है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा अधिग्रहण कार्यक्रम प्रशासन के मंत्री ली जोंग चुल से मुलाकात की। बैठक के दौरान दोनों पक्ष संयुक्त विकास, संयुक्त उत्पादन और संयुक्त निर्यात के अवसर पैदा करने के लिए आपसी प्रयासों का लाभ उठाने पर सहमत हुए। दोनों देशों के नवाचार इकोसिस्टम को आपस में जोड़ने वाली महत्वाकांक्षी काइंड एक्स पहल की क्षमता को पूरी तरह से इस्तेमाल करने के लिए एक रूपरेखा पर भी चर्चा की गई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च्ड प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया। यह आत्मनिर्भर भारत के पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, रक्षा सह उत्पादन भागीदारों और उद्योग जगत की सराहना की। उन्होंने इसे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक रणनीतिक उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के अंतर्गत जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि यह मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र तथा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में एक जनहित याचिका का जवाब मांगा है। इसमें सरकारी कानूनी पैनलों और विधि अधिकारियों की नियुक्ति में महिला वकीलों के लिए 30% आरक्षण की मांग की गई है। सरकार ने जम्मू कश्मीर के गांदरबल में कश्मीरी लड़ाकों द्वारा सेना के वाहन पर हमले के बाद सैनिकों के मारे जाने की सोशल मीडिया की खबरों का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तंत्र जांच इकाई ने बताया कि क्षेत्र में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे कोलकाता में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। मुंबई प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है, जबकि कोलकाता प्लेऑफ में जाने के लिए अगले दोनों मैचों में जीत के साथ साथ दूसरी टीम के परिणाम पर निर्भर है। मौसम विभाग ने इस सप्ताह उत्तर पश्चिमी और मध्य क्षेत्र में लू

0: भी आशंका व्यक्त की है। अगले चार दिन तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तराखंड में लू चल सकती है, जबकि असम, मेघालय, केरल, माहे, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोलम आरू चैनल है। शाम के 5:05 हुए, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम युववाणी। आज इस कार्यक्रम को पेश कर रही हैं दिशा भाटी और सुखमनी कौर।

0: नमस्कार साथियों, मैं हूं आपकी दोस्त दिशा।
1: और दोस्तों, मैं हूं सुखमनी। आप सभी का स्वागत करती हूं आकाशवाणी के युववाणी कार्यक्रम में। दोस्तों, आपने कभी ध्यान दिया है, जब जिंदगी बहुत तेज दौड़ती है तो हम सबको एक ऐसी जगह चाहिए होती है जहां हम रुक कर सांस ले सकें, जहां हम अपने दिमाग को रिफ्रेश कर सकें और जहां हम ये महसूस कर सकें कि हाँ, हम भी कुछ बड़ा कर सकते हैं।
0: बिल्कुल। और कभी कभी ज़िंदगी हमें कोई बड़ी सीख किसी बड़ी घटना से नहीं, बल्कि एक छोटी सी बात, एक हल्की सी मुस्कान या किसी साधारण से पल से दे देती है। कई बार एक आम सा दिन भी हमें ऐसी दिशा दिखा जाता है जिसकी ज़रूरत हमें खुद नहीं पता होती है। हम सब अपने अपनी कहानियों के साथ यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ खुशियों की, कुछ संघर्षों की, कुछ उम्मीदों की।
1: बिल्कुल दिशा, आज का ये कार्यक्रम यही छोटी सी जगह बनाने वाला है जहाँ कोई दबाव नहीं, कोई टेंशन नहीं, बस हम, आप और कुछ बातें। और इसी अंदर की आवाज़, इसी समझ, इसी एहसास से जुड़ा है हमारा आज का विषय, उद्यमिता का विकास।
0: बिल्कुल। और आज हम सिर्फ नौकरी नहीं चाहते, अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। हर किसी के मन में कहीं ना कहीं यह सपना होता है कि वह ऐसा काम करे जिसमें उसकी मेहनत भी दिखे, उसका हुनर भी और उसका भविष्य भी सुरक्षित हो। यही सोच उद्यमिता की शुरुआत कहती है।
1: दोस्तों, आज हम एक ऐसे शब्द पर बात करने वाले हैं जो सिर्फ एक करियर विकल्प नहीं, बल्कि एक पूरी सोच है, जिसे हम कहते हैं उद्यमिता यानी एंटरप्रेन्योरशिप।
0: जरा सोचिए दोस्तों, जब हम पढ़ाई पूरी करते हैं तो हमारे सामने दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता कि एक बनी बनी कतार में खड़ी हो जाना, और दूसरा रास्ता एक नई कतार की शुरुआत करना और दूसरों को काम देने के काबिल बनना।
1: दिशा, उद्यमिता इसी दूसरे रास्ते का नाम है। ये सिर्फ एक नया व्यापार शुरू करना नहीं, बल्कि अपने आसपास की समस्याओं को देखना, उनके व्यवहारिक समाधान ढूंढना और अपनी मेहनत से एक नया साम्राज्य खड़ा करना है।
0: बिल्कुल सुखमनी, उद्यमिता का विकास करने का मतलब सिर्फ बड़ी कंपनी खोलना तो नहीं है, बल्कि अपने दिमाग, मेहनत और हिम्मत से ऐसा काम शुरू करना है जो खुद के साथ दूसरों के लिए भी अवसर पैदा करे। आज के समय में उद्यमिता इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है। केवल डिग्री होना काफ़ी नहीं है, बल्कि नई सोच और कुछ अलग करने का साहस होना भी ज़रूरी है।
1: जिस प्रकार से आप एक समस्या देखते हैं, उस पर विचार करते हैं, रिस्क लेते हैं, फिर एक टीम बनाते हैं, उस समाधान को लोगों तक पहुंचाते हैं, एक आम दुकानदार और एक उद्यमी में यही फ़र्क होता है। एक दुकानदार सिर्फ सामान बेचता है जो पहले से ही बाज़ार में उपलब्ध है, लेकिन एक उद्यमी बाज़ार की कमी को पहचानता है, कुछ नया जोड़ता है और एक नया रास्ता बनाता है।
0: बिल्कुल। और इस दुनिया में जितने भी बड़े बदलाव हुए हैं, वे किसी न किसी के दिमाग में उपजे एक छोटे से आइडिया का नतीजा ही तो है। उद्यमिता का विकास तब होता है जब आप शिकायत करने वाले की भूमिका से थोड़ा बाहर निकलकर समाधान देने वाले की भूमिका में आ जाते हैं। यानी कि जब आप यह सोचना बंद कर देंगे कि यह काम कोई और क्यों नहीं कर रहा, और यह सोचना शुरू कर देंगे कि इस काम को मैं क्यों नहीं कर सकता, बस उसी पल आपके भीतर एक उद्यमी का जन्म हो जाता है।
1: आज हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या ये है दिशा, कि हम शुरुआत करने से ही डरते हैं। हमें लगता है कि किसी भी काम को शुरू करने के लिए समय और पैसा चाहिए, अगर असफल हो गए तो क्या होगा। लेकिन सच ये है कि हर बड़ा काम छोटे कदम से ही शुरू होता है।
0: देखो ना, धीरू भाई अंबानी ने भी बहुत साधारण जीवन से शुरुआत की थी। उन्होंने छोटे व्यापार से शुरुआत करके अपने सपनों को धीरे धीरे इतना बड़ा बनाया कि आज

0: उन्हें बड़े उद्यमों में गिना जाता है। अगर वे शुरुआत करने से डर जाते तो शायद इतिहास नहीं बन पाता।
1: हमें ये समझना होगा कि उद्यमिता के विकास में चुनौतियाँ ज़रूर आती हैं। शुरुआत में नुकसान हो सकता है, लोग भरोसा नहीं करेंगे, कई बार मेहनत का परिणाम तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन यही संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है। अगर हम उद्यमिता का विकास करना चाहते हैं तो हमें इसके चार मुख्य स्तंभों को समझना होगा।
0: पहला स्तंभ है समस्या की पहचान करना। अब देखिए, जितनी बड़ी समस्या होगी उतना ही बड़ा उद्यमिता का अवसर होगा।
1: बिल्कुल सही कहा दिशा। दूसरा स्तंभ है रिस्क लेना। यदि आप सुरक्षित किनारे पर ही बैठे रहना चाहते हैं तो आप कभी समंदर के पार नहीं जा सकते। उद्यमिता का मतलब ही है कि आपको असफल होने का डर छोड़ना होगा।
0: तीसरा स्तंभ है निरंतरता और धैर्य। कोई भी पेड़ रातों रात बड़ा होकर फल नहीं देता। जब आप अपना स्टार्टअप या बिजनेस शुरू करेंगे तो हो सकता है पहले 6 महीने या 1 साल आपको कोई मुनाफा ना हो, फिर भी धैर्य रखना है।
1: और दोस्तों, आखिरी स्तंभ है टीम निर्माण। आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते, एक अच्छी टीम ही एक छोटे से आइडिया को एक बड़े साम्राज्य में बदलती है।
0: और अगर फिर भी आपको असफलता से डर लगे तो आप सोचना कि थॉमस अल्वा एडिसन ने भी बल्ब बनाने के 1000 असफल प्रयास किए। अंत में उन्होंने कहा था कि मेरी कोशिश बेकार नहीं गई, बल्कि मैंने हजारों ऐसे तरीके खोज लिए जिनसे बल्ब नहीं बनाया जा सकता। यही एक उद्यमी की सोच होती है।
1: बिल्कुल, बस इतना ही कहना चाहूँगी दोस्तों कि अपने विचारों को सिर्फ दिमाग की बंद खिड़कियों में मत रहने दीजिए, बल्कि खुले आसमान में उड़ान भरने दीजिए।

0: दोस्तों अब वक्त है क्विज टाइम का,
1: जहां आपके दिमाग की स्पीड एंड नॉलेज दोनों का टेस्ट होगा।
0: बिल्कुल, जहां हम आपसे पूछेंगे दो सवाल
1: और कार्यक्रम के अंत में देंगे उन्हीं सवालों के जवाब।
0: तो शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। तो हमारा पहला सवाल है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत की रैंक क्या है?
1: और हमारा दूसरा सवाल है, एशियाई बीच गेम्स 2026 में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने कौन सा पदक जीता?
0: दोस्तों मैं सवाल दोहराती हूँ, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत की रैंक क्या है?
1: और एशियाई बीच गेम्स 2026 में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने कौन सा पदक जीता? तो दोस्तों जवाब मिलने तक का सब्र रखिए और इन सवालों के जवाब खोजने का प्रयत्न कीजिए।
2: अरे वाह, बधाई हो, तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
3: हाँ दी, नया मोबाइल।
2: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
3: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
2: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
3: पर दी,
2: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
3: हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा।
2: अच्छा,
4: आरबीआई कहता है
5: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: दोस्तों जरा सोचिए, अगर आपकी लाइफ से मीठा गायब हो जाए तो जिंदगी कैसी बेस्वाद हो जाएगी ना। और जब मीठे की बात आती है तो जुबा पर सबसे पहला नाम आता है शुद्ध नेचुरल शहद का। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस मीठे शहद को हम तक पहुंचाने वाली मधुमक्खियां अगर एक दिन दुनिया से गायब हो जाए तो क्या होगा?
0: ना रंग बिरंगे फूल, ना रसीले फल, ना खेतों में हरियाली, क्योंकि हमारी धरती की लगभग फसलें कहीं ना कहीं मधुमक्खियों पर निर्भर हैं। छोटी सी दिखने वाली ये मधुमक्खियाँ सिर्फ शहद ही नहीं बनाती, बल्कि पूरी प्रकृति का बैलेंस संभालती हैं। इसीलिए हर साल 20 मई को पूरी दुनिया मनाती है विश्व मधुमक्खी दिवस, यानी कि वर्ल्ड बी डे।
1: और सुखमनी, आज इस सफ़र में हम जानेंगे कि ये छोटी सी मक्खी है हमारे बड़े से संसार के लिए इतनी ज़रूरी क्यों है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मधुमक्खियों के लिए स्पेशल डे मनाने का आइडिया आया कहाँ से, तो चलिए थोड़ा इतिहास में पीछे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने साल 2017 में आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि हर साल 20 मई को हम विश्व मधुमक्खी दिवस मनाएंगे, और पहली बार इसे 2018 में सेलिब्रेट किया गया था।
0: लेकिन दिशा, 20 मई ही क्यों? दरअसल इस दिन एंटोन जानसा का जन्म होता है, जिन्हें मॉडर्न बी कीपिंग यानी मधुमक्खी पालन का जनक माना जाता है। उन्होंने दुनिया को सिखाया कि ये छोटी सी जान कितनी समझदार और मेहनती होती है।
1: दोस्तों विश्व मधुमक्खी दिवस मधुमक्खियों और दूसरे परागण करने वाले जीवों यानी पॉलिनेटर्स के महत्व को समझाने के लिए मनाया जाता है। इस दिन लोगों को बताया जाता है कि मधुमक्खियां हमारी खेती, भोजन और पर्यावरण के लिए कितनी ज़रूरी है।
0: दिशा, अक्सर हम सोचते हैं कि मधुमक्खियों का काम सिर्फ शहद बनाना है, लेकिन शहद तो उनके काम का सिर्फ एक छोटा सा बाय प्रोडक्ट है। उनका असली काम है परागण यानी कि पॉलिनेशन।
1: बिल्कुल सुखमनी, मधुमक्खियाँ फूलों से पराग

0: यानी पोलन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है और इस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहा जाता है।
1: इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब मधुमक्खियां फूलों का रस लेने के लिए उन पर बैठती हैं तो उनके पैरों और पंखों में पोलन्स चिपक जाते हैं। जब वो दूसरे फूलों पर जाती हैं तो वो पोलन्स वहाँ पहुँचते हैं, जिससे कि पौधों में निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन होता है।
0: और इसी पॉलिनेशन की वजह से फल, सब्जियां और बीज बनते हैं। अगर मधुमक्खियां नहीं रहेंगी तो फूड प्रोडक्शन पर बहुत बड़ा असर होगा।
1: दुनिया का विज्ञान ये मानता है कि हम जो भी भोजन खाते हैं उसका हर तीसरा निवाला प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मधुमक्खियों की बदौलत ही हमारी थाली तक पहुँचता है। दुनिया की लगभग 90% जंगली फूलों की प्रजातियां और 33% से अधिक वैश्विक फसलें पूरी तरह से इन पॉलिनेटर्स पर ही निर्भर है।
0: और अगर ये ना हो तो खेतों में फसलें तो दूर, जंगलों में नए पेड़ तक नहीं उगेंगे। यह कोई मामूली काम नहीं है, यह इस धरती का सबसे बड़ा लाइफ सपोर्ट सिस्टम है।
1: दोस्तों, कुदरत का हर एक जीव इस धरती के लिए अनमोल है। मधुमक्खियां हमें सिखाती हैं कि टीम नेटवर्क और टीम वर्क क्या होता है और लगातार मेहनत कैसे की जाती है।
0: और सुखमनी प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं गीत।

0: बारंबार प्रणाम और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: सुखमनी, आज मुझे लाइब्रेरी में एक बहुत पुरानी किताब मिली थी। इस किताब में जंगलों की ऐसी तस्वीरें थी जिन्हें देखकर विश्वास ही नहीं होता कि हमारी धरती कभी इतनी खूबसूरत हुआ करती थी। चारों तरफ घने जंगल, साफ नदियाँ, खुले आसमान में उड़ते ही हजारों पक्षी, और सबसे खास बात, इंसान और प्रकृति के बीच एक खूबसूरत सा संतुलन।
3: लेकिन दिशा, जंगल में आग का लगना, नदियों का गंदा होना, बढ़ता पॉल्यूशन और जानवरों का घर छिन जाना, इन सबसे कई जीव हमेशा के लिए ही इस दुनिया से गायब होते जा रहे हैं। शायद आने वाले समय में बच्चे असली जंगल देखने के बजाय सिर्फ किताबों में ही उनकी तस्वीरें देखेंगे।
2: लेकिन सुखमनी, दुनिया में कुछ संस्थाएं ऐसी भी तो है जो दिन रात प्रकृति और जीवों को बचाने के लिए काम करती है।
3: अच्छा, पर दुनिया में कौन सा जानवर खतरे में है, किसे सबसे पहले बचाना है, इसका पूरा हिसाब किताब कौन करता है?
2: इन्हीं हिसाब किताब के लिए एक संस्था है जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर।
3: हाँ दोस्तों, IUCN पूरी दुनिया में जानवरों, पेड़ पौधों और पर्यावरण की स्थिति पर नजर रखता है। ये पता लगाता है कि कौन से जीव सुरक्षित हैं और कौन धीरे धीरे विलुप्त होने की कगार पर पहुंच रहे हैं।
2: IUCN पूरी दुनिया के पेड़ पौधों और जानवरों का रिपोर्ट कार्ड तैयार करता है। इसकी शुरुआत साल 1948 में हुई थी।
3: और दोस्तों, इसकी सबसे खास चीज़ है रेड लिस्ट। इस सूची में उन जीवों और पौधों के नाम दर्ज होते हैं जो खतरे में हैं। जब किसी जीव का नाम इस सूची में आता है तो पूरी दुनिया को चेतावनी मिलती है कि अगर अभी कदम नहीं उठाए गए तो वो जीव हमेशा के लिए खत्म हो सकता है।
2: दोस्तों, IUCN दुनिया भर की प्रजातियों को अलग अलग कैटेगरीज में बांटता है, जैसे कि एक्सटिंक्ट यानी कि विलुप्त। ये वो जीव है जिनका इस धरती से नामो निशान मिट चुका है, जैसे डोडो पक्षी।
3: बिल्कुल। उसके बाद आते हैं एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, यानी जंगलों से विलुप्त। इसका मतलब है वो जीव जब अपने प्राकृतिक घर यानी जंगलों या समुद्रों में कहीं भी नहीं बचे हैं।
2: और क्रिटिकली एंडेंजर्ड, घोर संकटग्रस्त, ये वो जीव है जो खतरे के बिल्कुल मुहाने पर खड़े हैं। अगर इन्हें आज नहीं बचाया गया, इस वक्त नहीं बचाया गया, तो ये अगले कुछ ही सालों में विलुप्त की लिस्ट में आ सकते हैं।
3: बिल्कुल। इसके बाद आते हैं एंडेंजर्ड यानी संकटग्रस्त, जो घोर संकट से थोड़े कम खतरे में हैं, लेकिन इनके ऊपर भी विलुप्त होने का बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है।
2: फिर है वल्नरेबल, अति संवेदनशील। ये वो जीव है जिनकी संख्या अभी तो ठीक ठाक है, लेकिन इनके रहने के ठिकाने यानी जंगल तेजी से कट रहे हैं। अगर अभी ध्यान नहीं दिया गया तो ये भी बहुत जल्द संकटग्रस्त की श्रेणी में आ जाएंगे।
3: तो दोस्तों, इसका मतलब अगर हमें पता ही नहीं होगा कि कौन सा जीव गायब होने वाला है तो हम उसे बचाने की प्लानिंग कैसे करेंगे?
2: ये तो तुमने सही सवाल पूछा सुखमनी। जब IUCN किसी जानवर या पौधे को रेड लिस्ट में डालता है तो पूरी दुनिया की सरकारें और वैज्ञानिक अलर्ट हो जाते हैं। फिर उन्हें बचाने के लिए स्पेशल प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं और कानून बनते हैं। हमारे देश में प्रोजेक्ट टाइगर इसका बहुत अच्छा उदाहरण है।
3: लेकिन दिशा, हम क्या कर सकते हैं हमारे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए?
2: सुखमनी, IUCN का मानना है कि हर छोटा कदम मायने रखता है। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हैं। अपने दोस्तों, स्कूल या कॉलेज के ग्रुप्स में इस बारे में बात कर सकते हैं और चर्चा कर सकते हैं। सिंगल यूज़ प्लास्टिक को पूरी तरह से बाय बाय कह सकते हैं और अपने आसपास पेड़ पौधे लगा सकते हैं। गर्मियों में पक्षियों और बेजुबान जानवरों के लिए पानी और दाने का इंतज़ाम भी कर सकते हैं।
3: दोस्तों, इसका मतलब हमारी छोटी सी कोशिश भी इस धरती को बचाने में एक बड़ी भूमिका निभा सकती है और ज़िंदगी की नई ख्वाहिशों को बना सकती है।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए।

Da dum da dum da dum da.

0: दिशा, आजकल घूमना फिरना बेहद पसंद किया जा रहा है। पहाड़ों की ठंडी हवाएं, समंदर की लहरें या फिर घने जंगलों की शांति। जैसे ही वीकेंड आता है या छुट्टियां मिलती हैं, हमारे पैर रुकते ही नहीं हैं।
1: बिल्कुल सुखमनी, लेकिन क्या तुम्हें कभी सोचा है कि जब हम इन खूबसूरत जगहों पर जाते हैं तो पीछे क्या छोड़ कर आते हैं? प्लास्टिक की बोतलें, कचरा और उस शांत जगह पर हमारी गाड़ियों का शोर।
0: हाँ दिशा, ये तो सच है कि हम प्रकृति का आनंद लेने तो जाते हैं, लेकिन अनजाने में उसे नुकसान पहुंचा बैठते हैं। तो फिर इसका उपाय क्या है? क्या हम घूमना ही बंद कर दें?
1: नहीं, घूमना क्यों बंद करना है, बस अपनी सोच और घूमने के तरीके को बदलना है, और इसी का नाम है इको टूरिज्म।
0: दोस्तों, इको टूरिज्म का मतलब है घूमना, लेकिन जिम्मेदारी के साथ घूमना। जब आप किसी प्राकृतिक क्षेत्र की यात्रा इस तरीके से करते हैं कि वहाँ के पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुँचे।
1: बिल्कुल, वहाँ के पेड़ पौधों, जीव जंतु सुरक्षित रहे और

0: ही वहाँ रहने वाले स्थानीय लोगों को भी आपके यात्रा से आर्थिक फायदा हो तो उसे इको टूरिज्म कहते हैं।
1: यानी सिर्फ घूमना और मजे करना ही टूरिज्म नहीं है, बल्कि प्रकृति को बिना ठेस पहुँचाए उसकी सुंदरता को महसूस करना और उसे वैसा ही छोड़ आना जैसा वो हमारे जाने से पहले था।
0: बिल्कुल सही पकड़ा सुखमनी। इसके मुख्य रूप से तीन स्तंभ हैं, जैसे पहला है पर्यावरण संरक्षण करना, दूसरा स्थानीय संस्कृति का सम्मान करना और तीसरा वहाँ के लोगों की आर्थिक मदद करना।
1: लेकिन आज हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है, हम क्यों इको टूरिज्म की बात कर रहे हैं।
0: दोस्तों इसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हमारी पृथ्वी के पास अब और नुकसान सहने की क्षमता नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज, आज पूरी दुनिया मौसम के बदलते मिजाज से परेशान है। इको टूरिज्म से कार्बन फुटप्रिंट कम होता है जिससे हम पर्यावरण को और बिगड़ने से रोक सकते हैं।
1: दोस्तों बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता की रक्षा, जब हम जंगलों या अभयारण्यों में बिना शोर शराबा किए जाते हैं तो वहाँ के वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास सुरक्षित रहता है।
0: और विलुप्त होती संस्कृति को बचाना, क्योंकि कई बार आधुनिकता की होड़ में छोटे गाँवों और जनजातियों की संस्कृति खो जाती है। इको टूरिज्म हमें उनकी कला, भाषा और रहन सहन से जोड़ता है।
1: और दोस्तों सबसे बड़ी बात है, इको टूरिज्म हमें मानसिक शांति देता है। कंक्रीट के जंगलों और शहरों की भागदौड़ से दूर जब हम सचमुच प्रकृति के करीब शांत होकर बैठते हैं तो हमारा तनाव अपने आप ही गायब हो जाता है।
0: सुखमनी, हम प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए हम वहां के स्थानीय संसाधनों से बने मिट्टी के घर में, होम स्टे या इको लॉज में रुक सकते हैं।
1: बिल्कुल, हमारे दोस्तों को भारत में इको टूरिज्म के कई ऐसे बेहतरीन जगहें हैं जिनके बारे में हम बता सकते हैं।
0: बिल्कुल, मावलिनोंग जो मेघालय में है, इसे एशिया का सबसे साफ गांव कहा जाता है।
1: और तो और दिशा, केरल के बैक वाटर्स और इको विलेज जहां आप पारंपरिक नावों में बिना पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए रह सकते
0: और
1: हैं।
0: हिमाचल उत्तराखंड के होम स्टे जहाँ पहाड़ों के स्थानीय परिवारों के साथ रहकर उनके जैसे जीवन का अनुभव कर सकते हैं।
1: और दिशा, सिक्किम के बारे में हम कैसे भूल सकते हैं। सिक्किम भारत का 100% ऑर्गेनिक राज्य।
0: बिल्कुल, यानी दोस्तों देश को जानने का, अपनी जड़ों को पहचानने का इससे बेहतर तरीका कोई हो ही नहीं सकता। और प्रकृति ने हमें इतना कुछ दिया है तो अब वक्त है हम जिम्मेदारी के साथ उसे संभालें।

0: दोस्तों, कार्यक्रम के शुरुआत में हमने आपसे दो सवाल पूछे थे, तो अब वक्त है उन सवालों के जवाब देने का।
1: दोस्तों, आज का पहला सवाल था कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 की भारत की रैंक क्या है।
0: जिसका सही जवाब है 157वीं रैंक।
1: और दोस्तों, आज का दूसरा सवाल था कि एशियाई बीच गेम्स 2026 में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने कौन सा पदक जीता।
0: जिसका सही जवाब है स्वर्ण पदक। तो दोस्तों, ये थे हमारे सवालों के जवाब, और अब वक्त है रोजगार सूचना का।
1: दोस्तों, आज की रोजगार सूचना है SBI अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2026 की।
0: जहां पदों की संख्या है 7,150।
1: दोस्तों, आवेदन की शुरुआती दिनांक है 19 मई 2026 तथा अंतिम दिनांक है 8 जून 2026।
0: और अधिक जानकारी के लिए आप SBI की ऑफिशियल वेबसाइट sbi.bank.in पर विज़िट कर सकते हैं। मैं वेबसाइट फिर से दोहराती हूँ, sbi.bank.in। वैसे दोस्तों, आज हमने काफ़ी सारी बातें की, और अब वक्त है आपसे विराम लेने का। हम फिर मिलेंगे नई बातों, नई जानकारियों, कुछ रोचक कहानियों के साथ। मेरा नाम है दिशा।
1: और मैं सुखमनी।
0: नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। आज इस कार्यक्रम को पेश कर रही थी दिशा भाटी और सुखमणि कौर। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 5:55 हुए। आइए अब सुनते हैं हमारे आज के शेष रहे कार्यक्रमों की रूपरेखा।

अभी कुछ ही देर में यानी 6:05 पर आप सुनिएगा आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम फिल्म संगीत। वहीं जिले की चिट्ठी लेकर हम हाजिर होंगे। समय रहेगा 6:40 और 7 बजे सुनिएगा कार्यक्रम ग्रामीण जगत।

सुगम संगीत की महफिल सजेगी 7:45 पर और 8 बजे पुनः इसी सभा में आप सुन पाएंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम फिल्म संगीत। लोक संगीत का कार्यक्रम होगा, समय रहेगा 8:30।

पुनः इसी सभा में फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं 9:15 पर और रात्रि 10 बजे। चर्चा का विषय है, जी हाँ, ये नाम है कार्यक्रम का जो हम आपको सुनवाएंगे। समय रहेगा 9:30।

शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होगा, समय रहेगा रात्रि 10:30। आज के इस शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा गायन ख्याल चया नट, तबला संगत रहेगी आशिक हुसैन की और सारंगी संगत रहेगी रमजान खान की, कलाकार होंगी दीपाली नाग। ये थी हमारे आज के शेष रहे कार्यक्रमों की रूपरेखा। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रोम में इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में व्यापार, निवेश, टेक्नोलॉजी, रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और रणनीतिक साझेदारियों में सहयोग बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार को 20 बिलियन यूरो तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं।
1: टेक्नोलॉजी और इनोवेशन हमारी पार्टनरशिप का इंजन है। AI, क्वांटम, स्पेस और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी जैसे क्षेत्रों में हमारे सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। दोनों देशों के

0: स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानने में के मामले में एकजुट हैं। सुश्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री मेलोनी ने संयुक्त लेख में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। ये संबंध स्वतंत्रता, लोकतंत्र और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण के मूल्यों पर आधारित हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा अधिग्रहण कार्यक्रम प्रशासन के मंत्री ली जोंग चुल से मुलाकात की। बैठक के दौरान दोनों पक्ष संयुक्त विकास, संयुक्त उत्पादन और संयुक्त निर्यात के अवसर पैदा करने के लिए आपसी प्रयासों का लाभ उठाने पर सहमत हुए। दोनों देशों के नवाचार इकोसिस्टम को आपस में जोड़ने वाली महत्वाकांक्षा काइंड एक्स पहल की क्षमता को पूरी तरह से इस्तेमाल करने के लिए एक रूपरेखा पर भी चर्चा की गई। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आगामी नीट यूजी पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री प्रधान ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये बात कही। इस दौरान गुमनाम ऑनलाइन समूहों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर भी चिंता व्यक्त की गई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक किया है। ये आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों, रक्षा सह उत्पादन भागीदारों और उद्योग जगत की सराहना की। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के अंतर्गत जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं है, बल्कि यह राष्ट्र को एकजुट करने का एक सशक्त माध्यम है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे कोलकाता में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। मुंबई प्लेऑफ की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुकी है, जबकि कोलकाता प्लेऑफ में जाने के लिए अगले दोनों मैचों में जीत के साथ साथ दूसरे टीम के परिणाम पर भी निर्भर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 6:05 हुए, आइए अब सुनते हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम फिल्म संगीत।

कार्यक्रम का आगाज अलका याग्निक और साथियों की आवाज के साथ, फिल्म का नाम चोरी चोरी चुपके चुपके।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

आकाशवाणी एट 90। फिल्म संगीत इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोलम अरु चैनल से। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति। फिल्म का नाम प्रेम रोग, आवाजें लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 6:30 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार, साथ ही जिले की चिट्ठी हमारे जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना कराने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत राज्य में 5,000 से अधिक नए आवास बनाए जाएंगे। सहकारी मॉडल पर आधारित देश की पहली भारत टैक्सी सेवा अगले महीने से जयपुर में शुरू होगी और राज्य के अधिकांश भाग भीषण गर्मी और लू की चपेट में, अगले 3 दिन लू से राहत के आसार नहीं। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। और अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के तहत जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को आज खारिज कर दिया। अदालत ने कहा है कि ये मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। पीठ ने कहा है कि इस तरह के आंकड़े एकत्र करने में कोई बुराई नहीं है और मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। देश के अलग-अलग हिस्सों में रेलगाड़ियों में लगी आग की हालिया घटनाओं की जांच में

कई मामलों में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता का पता चला है। सूत्रों ने बताया कि रेलवे ने इन घटनाओं को गंभीरता से लिया है और रेलवे सुरक्षा बल मामले की गहन जांच कर रहा है। इनमें राजस्थान की भी दो घटनाएं शामिल हैं। पाली के अमरपुरा स्टेशन के पास एक घटना में एक अज्ञात व्यक्ति ने एक कोच के अंदर कपड़े में आग लगाने की कोशिश की, जिससे आग लग गई। इसी तरह कोटा में राजधानी एक्सप्रेस में लगी आग की शुरुआत भी बाथरूम क्षेत्र से शुरू हुई बताई जा रही है। भारतीय रेलवे ने आग लगने की हालिया घटनाओं के मद्देनजर यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। रेलवे ने कहा है कि अमरपुरा जैसी घटनाओं में रेलवे कर्मचारियों की त्वरित कार्रवाई से बड़ी दुर्घटनाओं को टालने में मदद मिली है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ग्राम विकास चौपाल की कड़ी में आज बांसवाड़ा के चुड़ादा गांव में रात्रि चौपाल में ग्रामीणों के साथ संवाद करेंगे। वहीं कल सुबह गांव का पैदल भ्रमण कर लोगों से बातचीत करेंगे। गौरतलब है कि ग्राम विकास चौपालों के माध्यम से मुख्यमंत्री ग्रामीणों से सीधा

0: घटनाओं को टालने में मदद मिली है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ग्राम विकास चौपाल की कड़ी में आज बांसवाड़ा के चुड़ादा गांव में रात्रि चौपाल में ग्रामीणों के साथ संवाद करेंगे। वहीं कल सुबह गांव का पैदल भ्रमण कर लोगों से बातचीत करेंगे। गौरतलब है कि ग्राम विकास चौपालों के माध्यम से मुख्यमंत्री ग्रामीणों से सीधा संवाद कर रहे हैं, साथ ही सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में फीडबैक भी ले रहे हैं। मुख्यमंत्री का कल डूंगरपुर पहुंचने का कार्यक्रम है। वे 84 क्षेत्र के धंबोला गांव में ग्राम विकास चौपाल करेंगे। पेट्रोलियम कंपनियों ने कहा है कि प्रदेश में पेट्रोल डीजल और एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और किसी भी प्रकार की चिंता की जरूरत नहीं है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज प्रमुख तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ पेट्रोलियम उत्पादों और एलपीजी की उपलब्धता की समीक्षा बैठक की। कंपनियों के राज्य स्तरीय समन्वयक मनोज गुप्ता ने बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां इंडियन ऑयल, बीपीसीएल और एचपीसीएल वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद प्रदेश में पेट्रोल और डीजल और एलपीजी की निर्बाध आपूर्ति बनाए हुए हैं। सभी आउटलेट पर ईंधन वितरण सुचारू रूप से चल रहा है। श्री गुप्ता ने नागरिकों से घबराहट में ईंधन का अनावश्यक भंडारण नहीं करने का अनुरोध किया है। साथ ही ईंधन उपलब्धता से संबंधित प्रामाणिक और सत्यापित जानकारी के लिए केवल तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करने को कहा है। बैठक में IOCL, BPCL, HPCL, GOBP और नायरा सहित प्रमुख तेल कंपनियों के अधिकारी मौजूद रहे। इस बीच राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने आज प्रेस वार्ता में कहा कि अन्य देशों की तुलना में हमारे यहां हालात बेहतर और नियंत्रण में हैं। श्री राठौर ने आमजन से अपील की कि वे पेट्रोल और डीजल का आवश्यकता के अनुसार सोच समझ कर उपयोग करें।
1: कोई स्टॉक खत्म नहीं है, बराबर मिल रहा है, वितरण व्यवस्था भी बराबर है, पेट्रोल पंप्स पर भी उपलब्ध है। फिजूल खर्ची नहीं होना चाहिए और आपके माध्यम से मैं देश की जनता का भी आह्वान करना चाहूंगा कि इन परिस्थितियों में संयमित तरीका अपनाएं, व्यवस्थित रूप से उपयोग में लें, आवश्यक काम सभी करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो जरूरी है वो सब काम करें, लेकिन व्यर्थ एक्सपेंसेस से बचें, फालतू अपव्यय से बचें, इसका जरूर ध्यान रखने की जरूरत।
0: प्रदेश के आंगनबाड़ियों में अब बच्चों को उपमा की जगह पौष्टिक न्यूट्री पुलाव परोसा जाएगा। उपमुख्यमंत्री और महिला एवं बाल विकास मंत्री दिया कुमारी ने आज शासन सचिवालय में इस नए न्यूट्री पुलाव के सैंपल का स्वाद चखा। उन्होंने कहा कि ये पुलाव बच्चों के स्वाद के ज्यादा अनुकूल है। उपमुख्यमंत्री ने विभाग को इसे जल्द आंगनबाड़ियों में उपलब्ध करवाने को कहा है। इसके साथ ही उन्होंने नाश्ते में दिए जा रहे मुरमुरे के स्थान पर भी समान दरों में कोई अन्य बेहतर और पौष्टिक विकल्प तैयार करने के निर्देश दिए हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत विभिन्न नगरीय निकायों में करीब 5,000 नए आवास बनाए जाएंगे। इसके लिए हर एक लाभार्थी को स्वयं का पक्का आवास बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए की अनुदान राशि दी जाएगी। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज जयपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के लिए गठित राज्य स्तरीय सैंक्शनिंग और मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक ली। बैठक में बताया गया कि योजना के तहत केंद्र सरकार की ओर से 1.5 लाख रुपए और राज्य सरकार की ओर से 1 लाख रुपए की अनुदान राशि दी जाएगी। इसके तहत कुल 125 करोड़ 60 लाख की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इन आवासों के लिए अंतिम मंजूरी केंद्र सरकार की 26 मई को होने वाली CSMC बैठक में मिलेगी। प्रदेश में स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 की तैयारियों के तहत विभिन्न शहरों में विशेष स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे हैं। जोधपुर नगर निगम द्वारा मुख्य मार्गों और सार्वजनिक स्थलों पर वॉल पेंटिंग की जा रही है। इसके तहत राजस्थानी संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण पर

0: आधारित कलाकृतियों के माध्यम से स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है, जिससे पुराने कचरा पॉइंट अब आकर्षक सेल्फी पॉइंट में बदल गए हैं। पाली नगर निगम द्वारा शहर को सुंदर बनाने के लिए सिटीजन फीडबैक अभियान चलाया जा रहा है। निगम आयुक्त नवीन भारद्वाज ने नागरिकों से QR कोड स्कैन कर फीडबैक देने और शहर को बेहतर रैंक दिलाने में सहयोग की अपील की है। सहकारी मॉडल पर आधारित देश की पहली भारत टैक्सी सेवा अगले महीने से जयपुर में भी उपलब्ध होगी। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दत्त ने आज जयपुर में आयोजित सारथी संवाद कार्यक्रम में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दिल्ली, मुंबई और लखनऊ के बाद अब जयपुर में भी ये अनूठी सेवा शुरू होने जा रही है। ये आमजन को किफायती और सुरक्षित सफर का विकल्प देगी। श्री दक्क ने कहा कि इस सहकारी सेवा में कोई बाहरी कंपनी मालिक नहीं होगी, बल्कि टैक्सी चलाने वाले चालक यानी सारथी ही इसके वास्तविक मालिक होंगे। इससे चालकों को निजी कंपनियों की मनमानी और हिडन चार्जेस से मुक्ति मिलेगी। इस अवसर पर मौजूद टैक्सी चालकों ने भी इस स्वदेशी सहकारी पहल की सराहना की। पश्चिम मध्य रेलवे मुख्यालय ने कोटा मंडल के 3 रेलवे स्टेशनों को जंक्शन स्टेशन घोषित किया है। रेल प्रशासन की इस घोषणा के बाद अब गंगापुर सिटी, रामगंज मंडी और गुडला स्टेशनों को जंक्शन के नाम से जाना जाएगा। नई रेल लाइनों और कॉर्ड तथा बाईपास के लाइन से शुरू होने से इन स्टेशनों का दर्जा बढ़ाया गया है। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि इन स्टेशनों के वर्तमान अल्फाबेटिकल और न्यूमेरिकल कोड पहले की तरह यथावत रहेंगे, केवल उनके नाम के आगे जंक्शन शब्द जोड़ा गया है। राज्य में अधिकांश भाग भीषण गर्मी और लू की चपेट में है, इससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। दोपहर के समय सड़कें सूनी नजर आ रही हैं, वहीं बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। प्रशासन की ओर से गर्मी से बचाव के लिए विभिन्न स्थानों पर छाया के प्रबंध किए गए हैं और सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। लोगों के साथ साथ पशु और पक्षियों को गर्मी से बचाने के लिए जगह जगह पीने के पानी की व्यवस्था की गई है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में कई जिलों के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। बीते 24 घंटों में 46.5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ श्रीगंगानगर सबसे गर्म दिन रहा। वहीं बीकानेर में सबसे गर्म रात दर्ज की गई, जहां पारा 31.1 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। अलवर, कोटा, चित्तौड़गढ़, फलौदी, बीकानेर और चूरू में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मापा गया। वहीं राजधानी जयपुर में तापमान 42.5 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रदेश में भीषण गर्मी और गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं। ज्यादातर जिलों में दिन का पारा 42 से 46 डिग्री, वहीं रात का तापमान 46 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। इस बीच चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने अस्पतालों में हीट वेव प्रबंधन को लेकर सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए अलग से बेड आरक्षित रखने, जरूरी दवाइयां उपलब्ध कराने के साथ छाया और पेयजल का प्रबंध करने को कहा गया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर भेज सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप और MyGOV ओपन फोरम के माध्यम से भी विचार भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव 29 मई तक स्वीकार किए जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना कराने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत राज्य में 5000 से अधिक नए आवास बनाए जाएंगे। सहकारी मॉडल पर आधारित देश की पहली भारत टैक्सी सेवा अगले महीने से जयपुर में शुरू होगी और राज्य के अधिकांश भाग भीषण गर्मी और लू की चपेट में। अगले 3 दिन लू से राहत के आसार नहीं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से चूरू जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख श्रवण कुमार शर्मा ने तैयार किया है। चूरू जिले की तालछापर अभयारण्य और उसके आसपास के करीब 22 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय की ओर से इस बारे में अधिसूचना जारी की गई है। ये ESZ चाडवास, देवानी, रामपुर, सूरवास और छापर कस्बे में स्थित है। अभयारण्य में काले हिरणों और प्रवासी पक्षियों के कुदरती रहवास को खनन और प्रदूषण से बचाने के लिए ये अधिसूचना जारी की गई है। इसके अनुसार क्षेत्र में व्यावसायिक खनन, प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों और भारी निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध रहेगा। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा की अध्यक्षता में अभयारण्य इको सेंसिटिव जोन मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक हुई। श्री सुराणा ने बताया कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किलोमीटर के अंदर तक किसी नए होटल रिसोर्ट बनाने और व्यावसायिक निर्माण की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने सभी विभागों से आपसी तालमेल के साथ काम करते हुए अभयारण्य क्षेत्र की जैव विविधता और कुदरती वातावरण के संरक्षण के लिए प्रभावी कदम उठाने को कहा। जिले में इन दिनों मकान सूचीकरण और गणना का काम चल रहा है। जनगणना 2027 के तहत जिले के 21 क्षेत्रों में प्रगणक घर घर पहुंचकर मकानों से संबंधित जरूरी जानकारियां इकट्ठा कर रहे हैं। जनगणना के दौरान प्रगणकों को लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। जिला कलेक्टर ने भी नागरिकों से जनगणना कर्मियों को आवश्यक सहयोग देने और मांगी गई जानकारी सटीक तरीके से उपलब्ध कराने की अपील की है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिले के 2000 से अधिक परिवारों को मकान बनाने के लिए सरकार की ओर से आर्थिक सहयोग दिया गया है। जिन लोगों के पास खुद का आशियाना नहीं था, उन्हें इस योजना से काफी मदद मिली है। गौरतलब है कि इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को शहरी क्षेत्र में आवास निर्माण के लिए विभिन्न किस्तों में 2.5 लाख रुपए तक की, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में 1.25 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता उनके बैंक खातों में दी जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना का लक्ष्य 2028-2029 तक बढ़ाया गया है। जिले में सुकन्या योजना बालिकाओं के लिए लाभदायक साबित हो रही है। इसके तहत नवजात से लेकर 10 साल तक की बालिकाओं का बैंक खाता खोला जाता है। इसमें कम से कम 250 रुपए और अधिकतम 1.5 लाख रुपए सालाना तक का निवेश किया जा सकता है, जो पूरी तरह टैक्स फ्री होता है। खाता खोलने की तारीख से 21 साल या बेटी की शादी के समय मैच्योरिटी राशि ली जा सकती है। जिले में 853 से अधिक बालिकाओं के खाते पोस्ट ऑफिस में खोले जा चुके हैं। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के तहत जिले में 21 मई को आवेदन शिविर लगाया जाएगा। रतन नगर नगरपालिका सभागार में ये शिविर लगेगा। राज्य बीमा और प्रवधायी निधि विभाग के सहायक निदेशक गणपत राम चौधरी ने बताया कि योजना के तहत पात्र आवेदकों को 3000 रुपए महीने का लाभ मिल सकता है। वित्त विभाग ने श्रमिकों, रेहड़ी पटरी पर सामान बेचने वालों और लोक कलाकारों को संबल प्रदान करने के लिए ये योजना शुरू की थी। चूरू में पिछले दिनों प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ नगर परिषद की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई। नगर परिषद आयुक्त अभिलाषा सिंह ने बताया कि शहर के अलग अलग व्यावसायिक क्षेत्रों में औचक निरीक्षण कर करीब 600 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग्स जब्त किए गए। उन्होंने व्यापारियों, थोक विक्रेताओं और आम नागरिकों से सिंगल यूज प्लास्टिक कैरी बैग का उपयोग पूरी तरह बंद करने की अपील की। इसके स्थान पर कपड़े, जूट और पेपर बैग के इस्तेमाल पर जोर दिया। चूरू में पिछले दिनों इनोवेटिव बूट कैंप आयोजित किया गया। राजकीय लोहिया महाविद्यालय के आई स्टार्ट इंक्यूबेशन सेंटर में इस आयोजन में जिले भर के 50 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान विभिन्न सत्रों में विद्यार्थियों को तकनीकी ज्ञान के साथ साथ अंग्रेजी भाषा का दक्षता कोर्स करवाया गया। भीषण गर्मी और लू की दौर से जिले भर में आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। कई स्थानों पर पानी के परंपरागत स्रोत टाके, जोहड़ और तालाब सूखने से पानी की समस्या हो रही है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से टैंकरों से पानी की आपूर्ति की जा रही है। इसके साथ ही चूरू जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, सुप्रीम कोर्ट जाति आधारित जनगणना रा केंद्र रा फैसला न चुनौती देवन वाली अर्जी।

0: खारिज की। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 रातेत राज्य में 5,000 बत्ता नुआ मकान बनाया जावेला। सहकारी मॉडल माथे आधारित देश की पहली भारत टैक्सी सेवा आवता महीना जयपुर में आई शुरू भेला। और प्रदेश रा घनखर हलका में लू रा हालात, आवता 3 दिन लू रा थपेड़ा लागता रहवन री शंका। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। सुप्रीम कोर्ट जनगणना 2027 रा तहत जातिगत गणना करावण रा केंद्र सरकार रा फैसला ने चुनौती देवण वाली अर्जी खारिज कर दीनी है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत री सदारत वाली पीठ कहो कि पिछाड़ी तबकारी जनता रा भला सारू जतन करण बाबत सरकार ने वारी तादाद री जानकारी भेवणो जरूरी है। पीठ कहो कि ओ मुद्दो सरकार रो नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आवे है। ई विच प्रदेश में जनगणना 2027 रा तहत मकाना री लिस्ट बनावण रो काम चाल रियो है। पाली जिला रा दूर दराज हलका और ढाणिया में प्रगणक घर घर जार HLO ऐप रे जरिए जानकारी भेड़ी कर रहा है। ई डिजिटल सर्वे रा तहत हर मकान री असली लोकेशन दर्ज करी जा रही है और जनताओं 33 सवालों रा जवाब लिया जा रहा है। प्रशासन जनताओं प्रगणकां ने सही और पूरी जानकारी मुहैया करावण री अरज कीनी है। देश रा न्यारा न्यारा हलका माए लाडला दिना रेलगाड़ियां माए लाई लागण रा वाकया माए सामाजिक तत्वां रा शामिल भेवण री ठा पड़ी है। आ माए राजस्थान री 2 घटनावां शामिल है। पाली रा अमरपुरा स्टेशन कने भी एक घटना माए एक अनजान जना रे एक डिब्बा माए कपड़ो बाड़बा री कोशिश करण री ठा पड़ी है, जिन कारण वहाँ डिब्बा माए लाई लाग गई ही। कोटा माए राजधानी एक्सप्रेस माए लागी लाई रेल रा घुसलखाना उसरूफ हेवन री शंका है। रेलवे मुसाफिरा ने सावचेत रहता थका शंका लायक हरकत री जानकारी रेलवे रा हेल्पलाइन नंबर 139 माथे संपर्क करण री राय दीनी है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ग्राम विकास चौपाल रा तहत आज बांसवाड़ा रा चुड़ादा गांव माए रात्रि चौपाल लगार गांव वाला सागे बातचीत कर रहा है। वहाँ रो काल समारे गांव रो पैदल दौरो कर लोगों बातचीत करण रो कार्यक्रम है। ध्यान जोग है कि ग्राम विकास चौपाल रे जरिए मुख्यमंत्री गांव वाला सागे सीधी बातचीत कर सरकार कानियों जनता रा भला सारू चलाई जा रही योजनावां रो फायदो मिलन रे बारे माए जानकारी हासिल कर रहा है। वारो काल डूंगरपुर जिला रा 84 हलका रा धम्बोला गांव माए ग्राम विकास चौपाल लगावन रो कार्यक्रम है। पेट्रोलियम कंपनियां रे मुजब प्रदेश माए पेट्रोल डीजल और रसोई गैस रो जरूरी स्टॉक मौजूद है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आज तेल कंपनियां रा नुमाइंदा सागे पेट्रोलियम उत्पादा और LPG री उपलब्धता रे बारे माए मीटिंग कीनी। कंपनियां रा राज्य स्तर रा समन्वयक मनोज गुप्ता बतायो कि सरकारी तेल कंपनियां प्रदेश माए पेट्रोल डीजल और रसोई गैस री लगातार पूर्ति कर रही है। श्री गुप्ता जनताओं घबराहट माए गैर जरूरी ईंधन भेड़ो नी करण री अरज कीनी। इन बीच प्रदेश राज्यसभा सदस्य और भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ कहो है कि दूजा देशों री तुलना माए भारत माए हालात बेहतर और काबू माए है। वह जनताओं जरूरत रे मुजब तेल री खरीदी करण री अरज कीनी।
1: कोई स्टॉक खत्म नहीं है, बराबर मिल रहा है, वितरण व्यवस्था भी बराबर है, पेट्रोल पंप्स पर भी उपलब्ध है। फिजूल खर्ची नहीं होना चाहिए और आपके माध्यम से मैं देश की जनता का भी आह्वान करना चाहूंगा कि इन परिस्थितियों में संयमित तरीका अपनाएं, व्यवस्थित रूप से उपयोग में लें, आवश्यक काम सभी करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो जरूरी है वो सब काम करें, लेकिन व्यर्थ एक्सपेंसेस से बचें, फालतू अपव्यय से बचें, इसका जरूर ध्यान रखने की जरूरत।
0: प्रदेश रा आंगनबाड़ी केंद्र माए अब बच्चा ने उपमारी ठोड़ पौष्टिक न्यूट्री पुलाव खिलायो चावेला। उप मुख्यमंत्री और महिला और बाल विकास मंत्री दिया कुमारी आज जयपुर माए नुआ न्यूट्री पुलाव रो नमूनो चाख्यो। वे कहो कि प्रदेश रा बच्चा सारू ओ पुलाव स्वाद रे मुजब है।

0: उप मुख्यमंत्री इनना बेगोई आंगनबाड़िया माए बच्चा ने दिया जावन वाला भोजन माए शामिल करन बाबत कहो। दिया कुमारी बच्चा ने नाश्ता माए मुरमुरा रिठौड़ी समान दर वाला दूजा बेहतर और पौष्टिक आहार रो विकल्प तैयार करन रा हुकम ही दीना। ऐ समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 रातेत राज्य में करीब 5,000 नुआ मकान बनाया जावेला। इन रातेत हर पात्र जना ने खुदरो पक्को मकान बनावन सारू केंद्र सरकार री ओर 1.5 लाख और राज्य सरकार री ओर 1 लाख रुपया री सब्सिडी दी जावे है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आज जयपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 सारू बनाई जी राज्य स्तर री सैंक्शनिंग एंड मॉनिटरिंग कमेटी री मीटिंग में अहलकारों जानकारी लीनी। ई योजना रा तहत 125,60,00,000 रुपया री सब्सिडी दी जावेला। प्रदेश में स्वच्छ सर्वेक्षण रा तहत न्यारी न्यारी ठोड़ा साफ सफाई रा खास अभियान चलाया जा रहा है। जोधपुर में नगर निगम री ओर खास गेलां और जनता रे आवन जावन रे ठोड़ा भीता माथे राजस्थानी संस्कृति और पर्यावरण ने बचावन रा संदेश में जुड़ी चित्रकारी करी जा रही है। पाली माई शहर ने रूपाड़ो बनावन सारू नगर निगम री ओर सिटीजन फीडबैक अभियान चलायो जा रियो है। निगम रा कमिश्नर नवीन भारद्वाज जनताओं QR कोड स्कैन कर फीडबैक देवन री अपील कीनी है। जयपुर माए सहकारी मॉडल माथे आधारित भारत टैक्सी सेवारी शुरुआत आवता महीना रा पहला सप्ताह माए करण रो प्रस्ताव है। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक आज जयपुर रा अपेक्स बैंक माए राखी जिया सारथी संवाद कार्यक्रम माए आ जानकारी दीनी। दिल्ली मुंबई और लखनऊ पाछे अब जयपुर माई जनता ने किफायती और सुरक्षित सफर रो सुबितो मुहैया करावन सारू आ सेवा शुरू करी जावेला। श्री दक कहो के ई सेवा माए कोई बाहरी कंपनी मालिक नहीं वेला जिन्हु ड्राइवरा ने गैर सरकारी कंपनियां री मनमानी छुट्टी मिलेला। पश्चिम मध्य रेलवे कोटा मंडल रा गंगापुर सिटी रामगंज मंडी और गुड़ला टेसना रे जंक्शन भेवन रो ऐलान कीनो है। रेलवे रा अहलकारा ने मुजब अब 8 टेसना रा नाम सागे जंक्शन जोड़ियो जावेला। ई सारू जरूरी बदलाव रा हुकम जारी कर दिया गया है। अरब मौसम प्रदेश माए पड़ रही जबरदस्त गर्मी बीच घनखट होना दिन री बगत पारो 42-46 डिग्री सेल्सियस बीच है जबकि रात री बगत 26-31 डिग्री सेल्सियस बीच दर्ज करियो जा रियो है। जनता सागे जनावरां और परिंदा नई गर्मियों बचावन सारू न्यारी न्यारी ठोड़ा पीवन रा पानी री व्यवस्था करी ची है। मौसम विभाग आवता दिना कई ठोड़ा लू बाजन सारू चेतायो है। इविचे लाडला 24 घंटा माए श्रीगंगानगर 46.5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सागे राज्य माए सबों गर्म ठोड़ रहो। बीकानेर माए रात्रि भगत सबों बत्तो 31.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज करी जियो। अलवर कोटा चित्तौड़गढ़ फलौदी बीकानेर और चूरू माए बत्तों बत्तो तापमान 44 डिग्री सेल्सियस ने पार कर गयो। राजधानी जयपुर माए 42.5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान नापी जियो। इबीच गर्मियों बचाव सारू प्रशासन री ओर न्यारी न्यारी ठोड़ा छाया रा प्रबंध करी जिया है और सड़क माथे पानी रो छिड़काव करियो जा रियो है। और ब्यूरो माणा खबर नवीस।
1: प्रदेश में भीषण गर्मी और गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं। ज्यादातर जिलों में दिन का पारा 42 से 46 डिग्री वहीं रात का तापमान 46 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। इस बीच चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने अस्पतालों में हीट वेव प्रबंधन को लेकर सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए अलग से बेड आरक्षित रखने, जरूरी दवाइयां उपलब्ध कराने के साथ छाया और पेयजल का प्रबंध करने को कहा गया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर अस्पताल में लू रा मरीजों रा इलाज जुड़िया सगला जरूरी इंतजाम करन रा हुक्म दीना है। भरतपुर जिला में सेवर रा सरसों अनुसंधान संस्थान री ओर मेरा गांव मेरा गौरव अभियान रा तहत रणधीरपुर गांव में किसान संगोष्ठी राखी जी। इनमाए कृषि वैज्ञानिक किसाना ने खेतीबाड़ी रा बेहतर तरीका प्राकृतिक

0: खेती और मिट्टी रो स्वास्थ्य बेहतर बनावन रे बारा माई जानकारी दीनी। खेतीबाड़ी रा जानकार किसाना ने मिट्टी री ताकत बचार राखण सारू जैविक खाद, गोबर री खाद और ढेंचा सरीखी हरी खाद काम लेवन बाबत कहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित करया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माय 31 मई ने विचार बतावेला। आ ई कार्यक्रम री 134वीं कड़ी फैला। इन सारू आप ही मुफ्त नंबर 1800117800 माथे 29 मई ताई राय दे सको हो। नंबर ओजू सुन ले राव सा 1800117800। नरेंद्र मोदी ऐप और माई GOV ओपन फोरम रे जरिए ही विचार भेजा जा सके है। संस्कृति मंत्रालय वंदे मातरम फ्रेम्स राष्ट्रीय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता सारू प्रविष्टियां जमा करावन री आखिरी तारीख 31 मई ताई बधा दीनी है। आहोड़ फिल्मा बनावन वाला रचनाकारा और जनता ने समकालीन प्रारूपां रे जरिए वंदे मातरम री भावना ने नुआ सिराऊ पेश करण री प्रेरणा देवे है। होड़ रील्स AI आधारित फिल्मा और नानी फिल्मा री श्रेणियां माई फैला। हनुमानगढ़ जिला में तलवाड़ा कने भूरानपुरा गांव में स्वास्थ्य विभाग नकली दूध बनावन रो कारखानो पकड़ियो है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा बतायो कि मौकाओं मोटी तादाद में नकली दूध और अमानक सामग्री नष्ट कराई ची। आखिर में खास समाचार एक कर फिर सुन ले रहो। सुप्रीम कोर्ट जाति आधारित जनगणना रा केंद्र रा फैसला न चुनौती देवन वाली अर्जी खारिज कीनी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 रातेत राज्य में 5000 बत्ता नुआ मकान बनाया जावेला। सहकारी मॉडल माथे आधारित देश की पहली भारत टैक्सी सेवा आवता महीना जयपुर में आई शुरू फैला। और प्रदेश रा घनखर हलका में लू रा हालात, आवता 3 दिन लू रा थपेड़ा लागता रहवन रा आसार। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो थियो। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 7 बजे हैं। जी हाँ, समय हो चला है कार्यक्रम ग्रामीण जगत का। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम ग्रामीण जगत। आज इस कार्यक्रम को पेश कर रहे हैं डॉक्टर नमामि शंकराचार्य और अनिल सिंह खीचड़।

0: ग्रामीण जगत कार्यक्रम सुन वाला जिका भी किसान भाई बहन हैं, आप सगला ने आप रोहितालु साथी डॉक्टर नमामि शंकर आचार्य
1: और अनिल सिंह खिचड़ा घना घना राम राम सर।
0: अनिल भाई देखो आपा खेती बाड़ी रो काम करा और सागे सागे पशुपालन भी करा, तो खेती बाड़ी में भी कई बार आपा ने कोई भी भाई है कोई एक काम माथे निर्भर नहीं रहना चाहिए, दूजे साथे साथे दूजा काम भी करता रहे वहाँ। जब मान लो कोई दुकान खोलियो रहे तो दुकान माथे निर्भर नहीं रह पड़ा, अलावा भी दूसरों काम करो। कई बार क्या आवे कोई काम हड़को रहे तो दूसरो सायरो लगा दे, दूसरो हड़को रहे तो पैरों सायरो लगा दे। उन कारण से कहीं हुए कि आपारो जो काम धंधो है बहुत साल तो रहे और कभी कमी कोई रहे करे भी तरके से खेती बाड़ी रे मायने भी एक विशेषता है मिश्रित खेती।
1: तो देखो बात है डॉक्टर साहब साची कह रहे हो कभी आप जबकि मिश्रित खेती करा भाई मैं अपने फायदो ही है कभी अपने खेती बाड़ी में कई बार क्या है कि आप देखा कभी नुकसान हो जाए तो अपने पशुधन से फायदा हो जाए और पशुधन से कई बार नुकसान हो जाए तो खेती बाड़ी से अपने फायदा हो जाए, यह तो मोटी बात है। दूसरी जबकि मोटी बात आप लेके चला डॉक्टर साहब तो वह है कि अपनी जबकि कृषि रो खेती बाड़ी रो अवशेष बचे वो अपने पशुपालन में काम आ जाए और पशुपालन से जो अवशेष बचा वैसे आप खेती बाड़ी में उच्च गुणवत्ता की फसल ले सका और कम खर्चा रमाई ले सका, तो जबकि मिश्रित खेती है वह अपन अपना जरूरी है। और बहने सागे सागे आप यह भी देखा कभी फसल और हेर फेर कर भी जान करना है वो भी आप
0: बहुत सही बात बताइए। देखो किसान भाई बहना

और अनिल भाई जी की बात बताइए, बहुत ही सावणी है। सीधा सीधा शब्द मैं आपने बताऊं, आपा खेती बाड़ी करा, आपा ने खादी जरूरत हुए तो आपा पशुपालन कर रहे हैं। पशुपालन रो जिको गोबर आवे तो भी गोबर ने सुखार या भी रो केचुआ प्लांट लगार भी री जिके खाद तैयार कर खेत माने आपा काम में ले सका। और खेती बाड़ी रे माने आपा मान लो गेहूँ री फसल लगाई है, गेहूँ उतार लिया है तो बातूड़ी है, बातूड़ी आपारे पशु रे काम रे आ जावे, सारो है तो पशु रे काम रे आ जाए, यानी दोनों एक चक्र बनियोड़ है। तो आज की खेती है मिश्रित खेती इस तरीके से है। सागे सागे आप भी है कि अपारे फुलवाड़ी रो काम है, साग सब्जी है, सागे सागे लगा रखा कि एक कोने माथे फुलवाड़ी लगा लो, एक कोने पर क्या है साग सब्जी लगा लो। तो और भी क्या है कि अपारे काम में सायरो देवे, कहना मतलब है कि एक काम माथे निर्भर नहीं रहे और सागे सागे दूजा काम करा तो बहुत ज़्यादा ठीक रहे। और अब मैं अपने लिए चालू एक गीत खानी, सुनो सौ गीत।

0: यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है।
1: प्राकृतिक जलवायु परिवर्तनशीलता, यह यूनेस्को का संदेश है। पृथ्वी की जलवायु करोड़ों सालों से प्राकृतिक कारणों से बदलती रही है, जिसमें ग्रहों की गति, सूर्य उत्पादन और ब्रह्मांड से आने वाले प्रभाव। यह हजारों सालों में धीरे धीरे होने वाले परिवर्तन होते हैं, कभी हिमयुग, कभी गर्म अवधि। जलवायु को बदलने वाले मुख्य कारण हैं पृथ्वी के कक्ष का आकार, उसकी अक्षीय झुकाव और ज्वालामुखी गतिविधि। समुद्री धाराएं और बर्फ का आवरण भी जलवायु पर असर डालते हैं। बड़े उल्कापिंडों के प्रभाव से भी अचानक जलवायु परिवर्तन का कारण बना है। यह एक रोचक तथ्य है। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 4 से 6 डिग्री सेल्सियस का वैश्विक तापमान परिवर्तन पृथ्वी को हिमयुग या गर्म युग में बदल सकता है?
2: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
3: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: अनिल भाई देखो अब उनाड़ो अणु तो पड़ रही है, तावड़ो भी तातो पड़ रही है और तावड़े मन आप तो घरे मायने बैठ जावा और कई तरह आप जापता कर लेवा, पर आपारा जगह पशु है बारो भी जापतो राखनो पड़सी अविशेष तौर से भी अरे आहार माथे, क्योंकि आपने गर्मी मायने रोटी पानी दोरो भावे तो हो सके बारे भी सकती हुए।
1: माने यहाँ लगे डॉक्टर साहब थे कोई गहरी जानकारी यार ऊपर देनी चाहो आपने श्रोता ने कि भाई आप गर्मी माई पशुओं ने क्या देखभाल करा और क्या उन्होंने खानो पिलानो करा और उन्होंने ध्यान रखा ताकि वे गर्मी से बचा रहे।
0: तो जानकारी देखो ले रहा है डॉक्टर क्षितिज गोस्वामी और आपसे जानकारी ले रही है संदीप पारिक, सुनो सा जानकारी।
2: तो आपनो जो को पशुधन है बिने खास देखभाल की दरकार हो और बिन भगत जे पशु पालक पूरा ध्यान नहीं देवे तो न केवल दूध उत्पादन जो को है वो कम हो जावे बल्कि पशु जो को है वो भी परेशान रहे जेके सु बिमे तनाव भी हो जाया करे। तो गर्मी के इन मौसम में आपा आपने दुधारू पशुओं को किन प्रकार ध्यान रखा इन मुजब कौन कौन सी इन प्रकार की बातें हैं जका को आपने खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए आ सगली बातें की जानकारी के लिए आज स्टूडियो में पधारा है डॉक्टर क्षितिज गोस्वामी जी। आप पशु चिकित्सा अधिकारी हैं पशुपालन विभाग बीकानेर में। डॉक्टर साहब राम राम।
3: राम राम
2: डॉक्टर साहब। सोम पहली तो आप महाना आप बताओ कि अब आज की गर्मी पड़ रही है इन गर्मी के मौसम में के पशुओं की खास देखभाल हो और क्या करनी चाहिए।
3: हम देखते हैं कि पशुओं में अलग अलग प्रकार के तनाव होते हैं और जो गर्मियों का मौसम है खासकर हम पश्चिमी राजस्थान की बात करते हैं या उत्तर पश्चिमी भारत की बात करते हैं तो गर्मी का जो मौसम है उसमें पशु सीधे सीधे तनाव में चला जाता है और इसके लिए पशुपालक भाई को कुछ बातों का ध्यान देना चाहिए जिनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। जैसे कि सबसे पहली बात कि गर्मी के मौसम में हमें हमारे मवेशियों को दुधारू पशुओं को ठंडा और आरामदायक वातावरण प्रदान करना चाहिए। इसके लिए हम क्या करें उनका जो बाड़ा बनाते हैं उनके रहने का जो स्थान बनाते हैं उसको उचित हवादार स्थान के रूप में उसे प्रदान करें और साथ में ही उनके खड़े होने के लिए बैठने के लिए उचित स्थान जरूर उन्हें प्रदान करना चाहिए। साथ में ही जो उनके जो शेड है जो उसे हम देख सकते हैं कि छत होती है उसे हम फूस से या फिर जूट के पर्दों से ढक सकते हैं ताकि सीधी धूप उनके ऊपर ना गिरे जिससे वो तनाव में जा सकता है। और जो उसकी छत है उसको हम क्या कर सकते हैं यदि टिन की जो हमने छत बनाई है उसके ऊपरी सतह को हम सफ़ेद या फिर हल्के रंग से रंग सकते हैं और निचली जो भाग होता है उसे हम गहरे रंग से रंग सकते हैं।
2: डॉक्टर साहब एक चीज़ आपसे जानना चाहूँ अपार जी आप जिक्र करो पूरी परत की है टैन की बात सफ़ेद रंग से करनी और निचली जगह बात गहरे रंग से तो इनके पीछे कोई खास वजह है।
3: इसका साइंटिफिक कारण है सर इसमें हम देखते हैं कि अगर ऊपरी सतह को आपने हल्के या सफ़ेद रंग से रंगा है तो जो सूर्य की किरणें हैं वो सीधे अवशोषित नहीं होंगी छत पर और वो एरिया जो है पशु का जो शेड है वो एकदम से गर्म नहीं होगा ये कारण हो। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि हमें आसपास जो पशु के रहने का क्षेत्र है उसमें हमें छायादार पेड़ लगाने चाहिए और जब दिन का सबसे गर्म समय होता है खासकर 11 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक उस दौरान हम जानवर पर पानी भी छिड़क सकते हैं जैसे जैसलमेर बाड़मेर बीकानेर वाला एरिया जहां पर तापमान लगभग 50 डिग्री भी चला जाता है उसमें हम फव्वारा प्रणाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मुख्य रूप से भैंसों के लिए ज़्यादा कारगर रहती है। साथ में ही हम पशुओं के लिए सुविधाजनक स्थान पर पर्याप्त संख्या में छायादार पानी के कुंड जरूर उपलब्ध करवाएं और उसमें हम साफ सुथरा समय समय पर भरते रहें।

0: पशु के को स्वस्थ बनाए रखने के लिए गर्मियों के मौसम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उनमें कृमि नाशक दवा का इस्तेमाल करें। उनमें जो पेट के कीड़े होते हैं उनको मारने के लिए आप निकटतम पशु चिकित्सक से सलाह ले सकते हैं, और साथ में ही जो सरकार द्वारा टीकाकरण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनके बारे में भी जानकारी लें। दूसरी बात ये कि गर्मियों के मौसम में जो बाह्य परजीवी होते हैं, जिसमें हम बात करें चीचड़ की, जूं की इत्यादि, ये पशु के शरीर में इनकी तादाद बढ़ जाती है, तो निकटतम पशु चिकित्सालय में इनको मारने के लिए जो दवा होती है वो मिलती है, और आप अपने पशु चिकित्सक से सलाह लेकर के उस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: तो डॉक्टर साहब है तो आप सामान्य बात बताइए देखिए कि जकान के बारे में आपने ध्यान रखना चाहिए। इनके अलावा गर्मियों को जो को मौसम है इन मौसम में अपना जो दुधारू पशु है तो
0: जी
1: बंग खान पान जो को प्रबंध है बी पर भी कोई अपने खास तरह से ध्यान देना चाहिए।
0: जी बिल्कुल। देखिए, हम खुद फील्ड में ये चीज़ हमें चुनौती के रूप में देखनी पड़ती है, क्योंकि जो दुधारू पशु है उसका सीधा सीधा जो है दूध उत्पादन कम हो जाता है गर्मी के मौसम में। दूध उत्पादन कम होने के दो कारण होते हैं गर्मी के मौसम में। पहला, एक तो गर्मी में अत्यधिक तनाव में शरीर चला जाता है पशु का, और दूसरा उसका जो फीड इनटेक है, जो वो भोजन कर रहा है उसकी मात्रा में भी कमी आ जाती है। इसलिए हमें आहार प्रबंधन पर गर्मियों में विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए।
1: तो बीमा कौन कौन सी ऐसी बात है जगह अपन ध्यान रखना चाहिए।
0: बिल्कुल, देखिए, आहार प्रबंधन में हमें उसे एक संतुलित आहार देना चाहिए। हमें जो भी, जैसे गांव वाले क्या करते हैं, खास करके कुछ भी खिला दिया पशु को, जो उनके पास उपलब्ध है उसको खिला दिया, तो ऐसा ना करें। पशु चिकित्सक से सलाह लें, थोड़ा साइंटिफिक तरीके से हम एक संतुलित आहार बना करके पशु को दे सकते हैं, जिसकी भले ही मात्रा कम हो परंतु वो शरीर को लगे और उससे दूध उत्पादन में कोई ज़्यादा अंतर ना आए। दूसरी बात, हम देख सकते हैं कि यदि हरा चारा उपलब्ध है तो वो प्रदान किया जाए, जिसमें प्रोटीन की मात्रा हम थोड़ी बहुत कम रख सकते हैं परंतु जो ऊर्जा की जो मात्रा है, जैसे कि हम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है, उसको बढ़ा सकते हैं। पशु को हम भूसा कम से कम दें, क्योंकि भूसे को पचाने में भी शरीर के ज़्यादातर जल की मात्रा का उपयोग हो जाता है। इससे पशु जल्दी से डिहाइड्रेशन में भी जा सकता है, उसके शरीर में पानी की कमी हो सकती है। जो भी हम हरा चारा प्रदान कर रहे हैं वो खासकर लंबे जो है रूप में आता है, तो उसको हम कटाई करके दें। छोटा अगर रूप में अगर पशु खाएगा तो उसको पचाने में आसानी होगी, अधिक सुपाच्य रहेगा। गर्मियों में ज़्यादातर जो हम देखते हैं कि जो मिनरल्स होते हैं, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया या कैल्शियम हो गया, इनकी हानि हो जाती है दूध के द्वारा। पशु में और भी ज़्यादा कमजोरी आ सकती है और उसके दूध उत्पादन में कमी आ सकती है, तो नज़दीकी पशु चिकित्सालय में सरकार के द्वारा मिनरल मिक्सचर, जो हम नमक सामान्यतः बोले, नमक जो होता है या फिर जो खनिज मिश्रण होता है वो उपलब्ध होता है, तो वो आप वहाँ पर जाएँ और पशु को उचित मात्रा में पशु चिकित्सक की सलाह के द्वारा मिनरल मिक्सचर प्रदान करें।
1: इनके अलावा एक चीज़ आप यहाँ बताइए डॉक्टर साहब कि प्रोटीन की मात्रा अपन गर्मी में कम कर देनी चाहिए,
0: जी
1: तो प्रोटीन की मात्रा कम करने को मतलब है कि प्रोटीन जैसी चीज़ें में वह चीज़ें कम देनी चाहिए, तो जी हाँ कौन कौन सी चीज़ थोड़ी सी अपन कम दे देनी
0: जैसे
1: चाहिए।
0: हम चाटे को कम दे सकते हैं, चाटा जो हो गया या फिर जो हम खल होती है उसको कम मात्रा में भी दे सकते हैं। इसका इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो ये कि इसको पचाने में भी कई बार समय लगता है और इस वजह से पशु इनडाइजेशन में जा सकता है, उसमें अपच हो सकता है, और गैस या फिर हम बोल सकते हैं जिसको आफरे की समस्या जो आती
1: आफ
0: है,
1: हो
0: आफरे की
1: जाएगा।
0: समस्या आती है। और दूसरा, इसको पचाने में अधिक जल की भी आवश्यकता होती है शरीर को, इसलिए बॉडी में जितनी पानी है उसको अधिक से अधिक उपयोग पशु भोजन के पचाने में ही ले लेगा, इस वजह से वो डिहाइड्रेशन में जा सकता है गर्मी में।
1: तो आ तो बात डॉक्टर साहब आप बताइए भी खान पान में अपन है कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना चाहिए।
0: जी
1: पर देखो डॉक्टर साहब गर्मी को मौसम है कई बार थोड़ी सी लापरवाही भी हो जाया करे पशुपालक का
0: जी
1: निशु भी, और कई बार पशु जो है वो खुद भी कोई इन प्रकार भी चीज़ खा ले जैसे सुबह बीमार भी पड़ सके
0: जी
1: और बिना ताप घात चुका है वो
0: जी
1: गर्मी का मौसम हो जाया करे। तो जो कोई पशु ने ताप घात हो जाए तो एक आम पशुपालक ने किया ठापड़ा भी इन ताप घात है मतलब वह लक्षण कौन कौन सा हुआ है।
0: जी बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और तापघात के लक्षण एक डॉक्टर साइंटिफिक तरीके से अलग पहचानता है, पर एक पशुपालक भी उसको आसानी से पशु को मात्र देखने मात्र से पहचान सकता है। जैसे उसकी श्वसन दर, उसकी सांस जो लेने की जो गति है, दर है, वो बढ़ जाएगी, साथ में ही पशु के मुँह से बहुत ज़्यादा मात्रा में लार गिरने लगेगी। लार गिरना सीधा सीधा लक्षण है गर्मियों में कि उसे तापघात हो गया है। साथ में ही आप देखेंगे कि उसकी जो नाड़ी होती है बहुत ही तेज कई बार हो जाती है और वो कमज़ोर पड़ जाती है क्योंकि पानी की कमी हो जाती है, और साथ में ही बहुत ज़्यादा आप कंडीशन ख़राब होने पर देखेंगे कि पशु बेहोश भी हो सकता है। पशु में डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण का एक बहुत ही अच्छा लक्षण

0: हैं कि आप उसकी त्वचा को यदि खींचेंगे तो त्वचा में सल पड़ जाएगा, त्वचा ढीली हो जाएगी। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि पशु में पानी की कमी हो गई है। इन कंडीशंस में, इन अवस्थाओं में आपको सीधे अपने पशु चिकित्सक से सलाह लेनी पड़ती है।
1: तो डॉक्टर है, इन प्रकार का जो लक्षण दिखे तो पशुपालक भाई ने समझ जानो चाहिए कि ताप घात का असर जो
0: जी
1: हो गए। तो डॉक्टर साहब, मान लो इन प्रकार का लक्षण कोई पशुपालक भाई ने दिखाई दे रहा है, तो बिन स्थिति में, बिन अवस्था में इन ताप घासु क्या बंद करना चाहिए, क्या एक आम पशुपालक ने करना चाहिए?
0: जी बिल्कुल, कई बार हम देखते हैं कि जो पशु होता है वो दूर ढाणियों में मौजूद होता है और उस समय वो सही समय पर पशु चिकित्सक से संपर्क नहीं कर पाता है पशुपालक। इस दौरान वो खुद क्या प्राथमिक उपचार दे सकते, तो सबसे पहले तो ये है कि पशु को ठंडक वाले स्थान पर ले जाया जाए और छांवदार स्थान पर ले जाया जाए, जिसमें पेड़ हमारे लिए सबसे उत्तम उपाय है इसका। यदि आसपास पेड़ उपलब्ध नहीं है तो हम जो गाय का बाड़ा है कम से कम 9 फीट की जो छत है उतना तो उसे उपलब्ध करवाएँ ताकि उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन रहे, जो हवा का आवागमन है वो प्रॉपर सही तरीके से बना रहे। दूसरा हम कर सकते हैं कि सीधा पशु के शरीर पर जल का छिड़काव कर सकते हैं, और ये कई जगहों पर हम देखते हैं कि जो डेयरी फार्म होते हैं वहाँ पर फंवारा पद्धति भी इस्तेमाल की जाती है। और फंवारा पद्धति से क्या होगा, सीधा हम शरीर पर पानी छिड़केंगे तो पशु का 1 से 2 डिग्री टेम्परेचर वैसे ही कम हो जाएगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, गीली चादर या फिर जो बोरियाँ होती हैं उनको गीला करके पशु के शरीर पर उसको ढक सकते हैं, पशु के शरीर को, जिससे भी तापमान में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आती है। भैंसों में हम क्या कर सकते हैं, आसपास यदि कोई तालाब मौजूद है, जल का जो स्रोत मौजूद है, तो वहाँ पर उनको रखा जाता है और ये भैंसों के लिए बहुत ही अच्छा उपाय रहता है क्योंकि उनकी त्वचा ऑलरेडी काली होती है। हर 10 से 30 मिनट के अंतराल पर 1 से 5 मिनट की अवधि के लिए शरीर पर सीधे पानी का छिड़काव करना चाहिए, जिससे हीट स्ट्रेस से बचा जा सकता है। गर्मी के समय में हमें 5 से 6 बार हमें पशु को साफ़ सुथरा पानी उपलब्ध करवाना चाहिए। पानी पीने मात्र से ही पशु को डिहाइड्रेशन नहीं होगा और दूसरी बात, उसके तापमान को नियंत्रित करने में काफ़ी मदद मिलेगी। साथ में ही जैसा कि मैंने पहले बताया कि पशुओं के शरीर में खनिजों की कमी हो जाती है क्योंकि गर्मियों का मौसम है, इसलिए उनको मिनरल मिक्सचर, खनिज मिश्रण ज़रूर ज़रूर उपलब्ध करवाएँ। तो इन सभी जानकारी के साथ में पशुपालक हीट स्ट्रेस से एक बार प्राथमिक उपचार दे लेगा और उसके बाद में वो अपने पशु चिकित्सक से संपर्क कर सकता है।
1: तो गर्मियों के मौसम में पशुओं की देखभाल और आहार प्रबंधन किन प्रकार से करना चाहिए, इन मुजब जानकारी दे रहा है पशुपालन विभाग बीकानेर का पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर क्षितिज गोस्वामी जी। डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में आया और पशुपालक भाइयों ने इन मुजब इतनी फूटी जानकारी दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: डॉक्टर साहब देखो, बार आपने क्षितिज गोस्वामी जी कितनी चौकी जानकारी थी कि गर्मी आप जो पशुओं की देखभाल किया करा, उन्होंने बार बार पानी पिलाते रहा, चाटा पट्टा रो ध्यान रखा कभी किया, उन्हों खान पान करा और सूखो चारो हरे चारा रो किया आप मिश्रण रखा, तो सगली जानकारियां है वो आपने दी है और आप उन्हों ध्यान रख रहा अपना पशुओं में जो उन्होंने स्वस्थ भी रखा और उन्होंने सो उत्पादन भी बढ़ावा। तो क्षितिज गोस्वामी जी ने घनो घनो धन्यवाद और धन्यवाद रूप में सुनावा मीठो सो लोग। सर,

0: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
1: सो गर्ल्स, क्या हो रहा है?
2: बिल हो रहा है।
1: चल अपना कार्ड दे। पिन दे।
3: RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
6: आपका व्यवसाय, आपकी पहचान,
7: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
6: जी हाँ, अपने उत्पादों, सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
7: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
6: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास, आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में।

0: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
1: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
0: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
1: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
0: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज़ जन जन तक।

मैं आकाशवाणी हूँ, 90 साल की आपकी

0: 90 साल और एक स्वर्णिम सफर, आकाशवाणी जिसने संगीत, नाटक, कविता और अपनी बातों के माध्यम से पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा।
1: संग प्रीत लगाई सजना सजना,
0: बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर जवानों तक, हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जादुई माइक। और आकाशवाणी का ये माइक भारत की सभी भाषाओं में मूल्य और संस्कृति का एक समागम है।

और अब तो रेडियो से आगे बढ़कर पॉडकास्ट और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आपके सुनहरे कल की कहानियां दोबारा सुनाने को है तैयार आकाशवाणी।

तो हमेशा सुनिए रेडियो रेडियो, महसूस कीजिए रेडियो रेडियो, क्योंकि आप सवार हैं आकाशवाणी के संस्कृति रूपी स्वर्ण रथ पर, जो दमकता है और प्रतिभा के अनमोल हीरो से चमकता है। आकाशवाणी का 90वें साल में प्रवेश, कोशिश रहेगी अब से प्रसारण का हर लम्हा होगा आपके लिए अति विशेष।

0: ए खतर जो की पौध तैयार करनी है वह आभार आप कर लेवा।
1: तो साहब बात सही है, संतुलन बढ़ाने की जड़े तभी बात करी है, तो आपने कार्यक्रम भी संतुलन रूप से चलाना है। तो अब सिंचारी बेड़ा हो रही है, तो चालता चालता आप एक भजन सुना।
0: जरूर सर,
1: सुना सौ भजन।

0: और जैसों अपन सीख भी मिले कभी अपा किया अपनों संतुलित रूप से जीवन जीवा।
1: कर्मा में लिखियोड़ो मिले आटो, राम थारी नगरी में कहीं घाटो। अभय सिंह गहलोत रो गायोड़ो, आप गीतर लो सुनियो थो हरजस। तो इन माने एक ही बात संदेश दे रिया है कि कर्म मिनख ने करना चाहिए,
0: अच्छे कर्म करना चाहिए,
1: चोखा कर्म करना चाहिए। आज या मैं शुरू से बात करी आ मेलो के भाई जीव जंतु जीता भी है, बारो ध्यान रखना चाहिए, खाली आप रो नहीं बल्कि जीव जंतु रो भी ध्यान।
0: ते जीव जंतु की बात करी डॉक्टर साहब, तो माने यह अलग है कि जीव जंतु वालों ध्यान जब भी रखा, जब आप चारों पास साफ सफाई भी रखा और चारों पास साफ सफाई रहे, तो देखो जो बिरखा रो पानी है कुआ बावड़ी में भरा, तो वो भी अपने जीव जंतु वाले काम आवे, आपने भी काम आवे। और बस अपने जो समाज है वो भी साफ सुथरा रहे, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधा लगाए डा, तो ये भी जीव जंतु वाले काम की बात है। तो ये जी छोटी छोटी बातें हैं, अपन ध्यान रख रहा, अपा खुद भी आगे बढ़ा और अपने समाज और प्रकृति ने भी संतुलन बनाए रखा।
1: और साथ ही साथ एक बात तो ध्यान रखना भी जरूरी, कि आप भी ध्यान रखो, क्योंकि उन्हाड़ो बहुत तकड़ो पड़ रही है, तावड़ो बड़ो ठाडो पड़ रही है। तो घर से निकलते टाइम खाने पीने री पेट भर निकलो और दही छाछ है लेता रहो, राबड़ी लेता रहो, तो शू कहीं है कि जीवन मायने कोई तरह की कमी रहे कौन, तकलीफ रहे कौन।
0: तो देखो डॉक्टर साहब थी बात चौकी कह रहे हो कि ध्यान अपने सगली बात रो रखना चाहिए, बार घड़ी री सुई रो भी अपन ध्यान रखा, वो इशारो कर रही है सीख लेन रो। किसान भाई बहना सुन लेवा सीख, घना घना राम राम, राम।

अभी ग्रामीण श्रोता सुन रहे थे अपना कार्यक्रम ग्रामीण जगत। आज इस कार्यक्रम को पेश कर रहे थे डॉक्टर नमामि शंकराचार्य और अनिल सिंह खीचड़। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। 7:45 हुए, आइए अब सुनते हैं सुगम संगीत।

इसके साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। 8 बजने को है, आइए अब सुनते हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम फिल्म संगीत।

कार्यक्रम का आगाज किशोर कुमार की आवाज़ के साथ, फिल्म का नाम याराना, गीतकार हैं अनजान और संगीतकार हैं राजेश रोशन।

0: आवाजें थी कुमार सानू और साधना सरगम। इस गीत को लिखा था हिंदी वर ने और संगीतबद्ध किया था राजेश रोशन ने।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं मुकेश और कंचन की आवाज़, धर्मात्मा फिल्म के लिए।

फिल्म संगीत इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से। कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज महबूबा फिल्म के लिए।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। 8:30 हुए, आइए अब सुनते हैं लोक संगीत।

0: इसके साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त तो होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। 8:45 होने को है। कुछ ही पलों आप सुनेंगे समाचार संध्या और न्यूज़ 8:09 हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारत और इटली अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत। दोनों पक्षों ने दुर्लभ खनिजों, रक्षा, कृषि सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 15 समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल दिया गया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल वापस भेजने की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारत इस वर्ष 6.4% की वृद्धि के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ते प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 से 3 दिन में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच जारी। अब समाचार विस्तार से। भारत और इटली ने आज कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर आज रोम में प्रधानमंत्री मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं।
2: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं।
2: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती

0: सकती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
1: सुश्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया।
0: ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता का भी सम्मान है जिसके केंद्र में मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैं इस मेडल को अत्यंत विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए भारत के अन्नदाताओं को यह मेडल समर्पित करता हूँ।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। श्री सिंह ने रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
2: 12 वर्षों के अंदर ही हम 40,000 करोड़ से ज्यादा का इस समय हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं तो 2 साल के अंदर 50,000 करोड़ के एक्सपोर्ट, डिफेंस आइटम्स के एक्सपोर्ट की जानकारी आपको मिल जाएगी। और हमारी गवर्नमेंट के रहते डिफेंस सेक्टर में एक मेजर चेंज आया है। भारत की पॉलिसी आज रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव है। और मेरा भी ये व्यक्तिगत रूप से मानना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के किसी कीमत पर किसी भी सूरत में समझौता नहीं किया जाएगा। और इसी सोच के साथ भारत इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को तेजी के साथ बढ़ावा दे रहा है।
1: रक्षा मंत्री ने सोल में भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग व्यापार गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की घोषणा की है। सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने के एक समारोह के दौरान नाबन्ना में उन्होंने कहा कि अब घुसपैठियों को सीधे सीमा सुरक्षा बल के हवाले कर दिया जाएगा। वहां से उन्हें देश से निकालने के लिए BDR के साथ इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने इसे नए तरीके को पहचानो हटाओ और देश से निकालो बताया। गुजरात सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक का समर्थन किया है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बनी संयुक्त संसदीय समिति ने आज गुजरात के गांधीनगर में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा की। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि विधेयक को जल्द से जल्द लागू करना चाहिए।
2: हमने आज JPC को गुजरात सरकार की ओर से खास तौर पे ये नम्र निवेदन किया है कि वन नेशन वन इलेक्शन जल्द से पास हो, सभी राज्य के नागरिकों को एक समान हित मिले, सभी लोगों के काम जल्द हो पाए, मशीनरी सरकारी जो है उसका कम से कम समय बिगड़े, वही हित में आज हमने वन नेशन वन इलेक्शन को हमने हमारा सहयोग दिया है और हमने ये खास तौर पे विनती की है इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए।

इस बीच कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों ने एक राष्ट्र एक चुनाव का विरोध किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा के सुरक्षित निष्पक्ष और सुचारू संचालन के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री प्रधान ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये बात कही। इस दौरान गुमनाम ऑनलाइन समूहों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर चिंता व्यक्त की गई। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में 5 आरोपियों को 2 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अदालत ने एक अन्य आरोपी की सीबीआई हिरासत भी बढ़ा दी है। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने जम्मू कश्मीर में एक सशक्त नवाचार इकोसिस्टम के निर्माण के लिए 500 नई अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। नई लैब अटल नवाचार मिशन के व्यापक सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम का एक प्रमुख घटक है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। ईरान संघर्ष के कारण वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष भारत की विकास दर 6.4% रहने का अनुमान लगाया है। इससे भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अर्थशास्त्री इंगो पिटले ने कहा कि भारत की मजबूत उपभोक्ता मांग, सार्वजनिक निवेश और सेवा निर्यात में वृद्धि इसकी अर्थव्यवस्था को सहारा दे रही हैं। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 118 अंक बढ़कर 75,318 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 41 अंक की बढ़त के साथ 23,659 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 30 पैसे कमजोर होकर अपने सबसे निचले स्तर यानी ₹96.83 पर बंद हुआ।
1: और अब जानकारी मौसम की। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी कल तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने अगले 2 दिन के लिए पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कल राजधानी में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
3: मौसम विभाग के अनुसार कल दिल्ली में अधिकतम तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पिछले 24 घंटों में राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने बताया कि कल दिन के समय राष्ट्रीय राजधानी में 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दक्षिण पश्चिमी हवाएं चलने की संभावना है। सौम्य के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भारी वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के अंतर्गत जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि ये मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि ये राष्ट्र को एकजुट करने का सशक्त माध्यम है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से हो रहा है। फिलहाल बारिश के कारण मैच रुका हुआ है। मैच रुकने तक मुंबई इंडियंस ने 8 ओवर में 4 विकेट पर 57 रन बना लिए थे। उधर मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन सुपर 500

0: आज अश्मिता चलिहा देविका सिहाग और मालविका बंसोड महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। संस्कृति मंत्रालय ने वंदे मातरम फ्रेम्स राष्ट्रीय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि 7 मई से बढ़ाकर 31 मई कर दी है। प्रतियोगिता 3 श्रेणियों में आयोजित की जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इटली अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत। दोनों पक्षों ने महत्वपूर्ण खनिजों, रक्षा, कृषि सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 15 समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल दिया गया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल वापस भेजने की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारत इस वर्ष 6.4% की वृद्धि के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वीसी प्रमोद विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। India and Italy agree to elevate ties to special strategic partnership. Both sides ink 15 agreements to boost bilateral cooperation in key areas including critical minerals, defence and agriculture. Prime Minister Narendra Modi receives FAO's highest honour, Agricola Medal, dedicates award to farmers of India. West Bengal government announces immediate start of deportation proceedings against illegal Bangladeshi infiltrators under Citizenship Amendment Act. India to remain world's first growing major economy with 6.4% growth this year despite West Asia conflict, says UN report. IMD issues red alert for severe heatwave conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha for the next 2 to 3 days. And in IPL cricket, match between hosts Kolkata Knight Riders and Mumbai Indians underway at Eden Gardens. India and Italy today finalized 15 outcomes across diverse sectors. The agreements were signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. The outcomes mark the elevation of bilateral relations to a special strategic partnership. Both sides also inked several memorandums of understanding to deepen cooperation in key areas including critical minerals, defence, agriculture, Ayurveda, science and technology, maritime transport and ports. India and Italy also agreed to strengthen coordination against tax crimes, money laundering and terror financing. In a press statement after the talks, Prime Minister Modi said the two sides deliberated extensively on enhancing bilateral ties.
2: पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
1: मिस्टर मोदी सेड इंडिया इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-29 विल प्रोवाइड अ प्रैक्टिकल एंड फ्यूचरिस्टिक फ्रेमवर्क फॉर बायलैटरल टाइज। ही सेड बोथ साइड्स आर वर्किंग टुवर्ड्स एस्टैब्लिशिंग एन इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर एंड नोटेड दैट द इंडिया इटली डिफेंस इंडस्ट्रियल रोडमैप हैज ओपन न्यू एवेन्यूज फॉर को डेवलपमेंट एंड को प्रोडक्शन इन द डिफेंस सेक्टर।
2: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
1: Mr. Modi stressed that India and Italy are united in viewing terrorism as a serious threat to humanity and underlined the need for strong action against terror financing networks.

फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं सौदागर फिल्म का नगमा, कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 होने को है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम चर्चा का।
1: चर्चा का विषय है

0: बीते कुछ वर्षों में दुनिया ने एक बदलाव महसूस किया है, एक ऐसा बदलाव जहां भारत अब सिर्फ एक उभरती अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि वैश्विक मंच पर एक निर्णायक आवाज बनकर उभरा है। कूटनीति के नए आयाम, विश्व मंच पर बढ़ती भागीदारी और हर बड़े वैश्विक मुद्दे पर भारत की स्पष्ट और सशक्त उपस्थिति, इन सब ने मिलकर रचा है एक नए भारत का आत्मविश्वास। और इसी बदलती तस्वीर का एक महत्वपूर्ण पहलू है दुनिया भर से मिल रहे वो सम्मान जो भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा की गवाही देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले ये वैश्विक अलंकरण सिर्फ एक नेता की उपलब्धि नहीं बल्कि भारत की साख, सामर्थ्य और विश्वसनीयता का प्रतीक हैं। स्वीडन और नॉर्वे से लेकर दुनिया के कई देशों तक हर सम्मान एक कहानी कहता है, भारत के बढ़ते कद की कहानी। चर्चा का विषय है कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव और आज हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वैश्विक सम्मान, भारत की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा। शुरुआत करते हैं बिल्कुल हालिया और ऐतिहासिक लम्हे से। मई 2026 का महीना भारत के राजनयिक इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्डिक देशों की यात्रा पर थे। तारीख थी 17 मई 2026 और जगह थी स्वीडन का गोथेनबर्ग शहर। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन की उपस्थिति में प्रधानमंत्री मोदी को स्वीडन के सर्वोच्च नागरिक सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से नवाजा गया। साल 1748 में स्थापित हुआ ये ऐतिहासिक सम्मान किसी विदेशी शासनाध्यक्ष को मिलना ये दर्शाता है कि आज यूरोप की नजरों में भारत का स्थान क्या है। ये प्रधानमंत्री मोदी का 31वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान था।
1: कुछ समय पहले मुझे स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। ये सिर्फ मेरा सम्मान नहीं है, यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। यह स्वीडन के हमारे उन सभी साथियों का भी सम्मान है जिन्होंने भारत स्वीडन संबंधों को समृद्ध किया, एक मजबूत आधार दिया।
0: कहानी यही नहीं रुकी, इसके ठीक अगले ही दिन यानी 18 मई 2026 को नॉर्वे की राजधानी ओस्लो का शाही महल एक और इतिहास का गवाह बना। नॉर्वे के राजा किंग हेराल्ड पंचम ने प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से विभूषित किया। दो नॉर्डिक देशों से मिले इन सम्मानों ने साबित कर दिया कि भारत और नॉर्डिक देशों के बीच की साझेदारी अब एक नई रणनीतिक ऊंचाई पर पहुंच चुकी है। आइए समय के पहिए को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। साल 2014 में शुरू हुआ ये कूटनीतिक सफर साल 2016 में सम्मानों की एक ऐसी श्रृंखला में बदल गया जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। साल 2016 में खाड़ी देशों के साथ भारत के रिश्तों में एक नया अध्याय जुड़ा। सऊदी अरब ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल अजीज सैश से

पासा। इसी साल पड़ोसी देश अफगानिस्तान ने उन्हें स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी आमिर अमानुल्ला खान प्रदान किया। वर्ष 2018 में भारत की पर्यावरण नीतियों को वैश्विक पहचान मिली, जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण के क्षेत्र के सबसे बड़े पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया। इसी साल फिलिस्तीन ने उन्हें ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन दिया। दक्षिण कोरिया ने वैश्विक शांति और आर्थिक विकास के लिए सियोल शांति पुरस्कार भी प्रदान किया।

0: इसी साल फिलिस्तीन ने उन्हें ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन दिया। दक्षिण कोरिया ने वैश्विक शांति और आर्थिक विकास के लिए सियोल शांति पुरस्कार भी प्रदान किया। वर्ष 2019 तो जैसे वैश्विक पुरस्कारों का वर्ष बन गया। दुनिया के नक्शे पर भारत की दोस्ती का दायरा कितना बड़ा था, ये इन पुरस्कारों की सूची देखकर समझ आता है। संयुक्त अरब अमीरात का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद, रूस का सबसे प्रतिष्ठित ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, मालदीव का ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ इज्जुद्दीन और बहरीन का किंग हमद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा शामिल रहा। 2019 में ही बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने स्वच्छ भारत अभियान की सफलता के लिए उन्हें ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया। जब साल 2020 में पूरी दुनिया सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना से जूझ रही थी, तब भारत की वैक्सीन मैत्री ने दुनिया का दिल जीता। इसी दौरान अमेरिका ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने बेहद प्रतिष्ठित सैन्य सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया। 2021 में हमारे पड़ोसी देश भूटान ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग से भारत के प्रति अपनी अटूट निष्ठा व्यक्त की। साल 2023 में जब भारत G20 की मेजबानी कर रहा था और उसी वर्ष जब प्रधानमंत्री मोदी पापुआ न्यू गिनी पहुंचे, तो वहां के प्रधानमंत्री ने प्रोटोकॉल तोड़कर पैर छूकर उनका स्वागत किया और उन्हें ऑर्डर ऑफ लोगोहू से नवाजा। इसी तरह फिजी ने कमियान ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी और मिस्र ने अपना ऐतिहासिक ऑर्डर ऑफ द नाइल प्रधानमंत्री मोदी को प्रदान किया। वर्ष 2023 में ही फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक और सैन्य सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया, जिसके बाद ग्रीस ने भी उन्हें ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर दिया। साल 2024 और 25 में तो ये फहरिस्त और लंबी हो गई। नाइजीरिया का ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर, गयाना का ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस, डोमिनिका का सर्वोच्च सम्मान और कुवैत का ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर उन्हें प्रदान किया गया। इसके बाद साल 2025 में बारबाडोस श्रीलंका का मित्र विभूषण, मॉरिशस का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन उन्हें प्रदान किया गया। घाना ने द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस, नामीबिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एनिशियंट वेलविचिया मिराबिलिस, ट्रिनिदाद और टोबैगो ने द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिदाद एंड टोबैगो, और ब्राजील ने द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल अवार्ड ऑफ द सदर्न क्रॉस से भारत के बढ़ते कदमों का स्वागत किया। इसके अलावा ओमान की तरफ से फर्स्ट क्लास ऑफ द ऑर्डर ऑफ ओमान और इथियोपिया की तरफ से ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया भी प्रधानमंत्री मोदी को प्रदान किया गया। साल 2026 की शुरुआत में ही इजराइल ने भी उन्हें मेडल ऑफ द नेसेट से सम्मानित किया। इन 32 अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों की फहरिस्त सिर्फ कागजी आंकड़े नहीं है, ये इस बात का सीधा प्रमाण है कि आज का भारत सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं कर रहा, बल्कि दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी पृथ्वी ही मेरा परिवार है का संदेश दे रहा है। चाहे वो पर्यावरण संकट हो, वैश्विक शांति की बात हो या आपदा के समय मदद का हाथ बढ़ाना हो, दुनिया आज भारत के नेतृत्व की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वर्ष दर वर्ष मिले ये सम्मान असल में भारत की 140 करोड़ जनता के कड़े परिश्रम, हमारी प्राचीन संस्कृति और हमारे बढ़ते आर्थिक और सामरिक सामर्थ्य का वैश्विक उत्सव है। विदेशी कूटनीति में क्या 2014 के बाद भारत ने विशेष हासिल किया है, जिसे भारत अब दुनिया के मानचित्र में अब एक मजबूत स्तंभ बन गया है, इस पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ हैं दो बेहद खास मेहमान, पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार और वरिष्ठ पत्रकार मदन जेड़ा। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत
1: जी। धन्यवाद।
2: धन्यवाद आनंद जी।
0: अशोक जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की जो यात्रा चल रही है, इसमें वो UAE, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 5 देशों की यात्रा पर हैं। नॉर्वे में हुए तीसरे इंडिया नॉर्डिक समिट में भारत और नॉर्डिक देशों के बीच ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर सहमति बनी है। आपको क्या लगता है कि इस यात्रा के चलते जो वैश्विक परिदृश्य है और वैश्विक परिदृश्य में भारत की जो नॉर्थवर्ड टर्न है, यानी

0: उत्तर की ओर जो रुख है उस लिहाज से कितना अहम मानते हैं इस यात्रा को आप?
1: हम अभी देख रहे हैं जो ये जो यात्रा है वो उनकी नॉर्डिक देशों में है, तो इसमें कहा जाए जो ये नॉर्थवर्ड हम टर्न देख रहे हैं, परंतु ये तो हम जानते ही हैं जो भारत तो एक जिसे कहा जाए वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ है। हमने वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट्स किए हैं जब भारत G20 की चेयर हमने संभाली थी 2023 में। परंतु इसको छोड़ते हुए मैं कहूंगा जो भारत की जो की कूटनीति है, अगर हम 2014 के बाद से देखें तो हमारी कूटनीति पूरे विश्व के साथ अपने संबंधों को आगे ले जाने में लगी है और हम इसमें बहुत ही तीव्र गति से काम कर रहे हैं। परंतु जहां तक ये नॉर्डिक देशों का संबंध है, आपने ठीक कहा है, इसको अभी करीब 8 साल हुए हैं। 2018 में जैसे कहा जाए पहला नॉर्डिक समिट हुआ था स्वीडन में, दूसरा डेनमार्क का हुआ 2022 में कोपेनहेगन में, और अब तीसरा पिछले साल होने वाला था परंतु पहलगाम के इंसिडेंट के होते हुए तो ये नहीं हुआ और अब हो रहा है। तो अभी जो हालात हैं पूरे विश्व में, विश्व की जो चुनौतियां हैं, जो चाहे हम जियोपॉलिटिकल स्तर पर देखें, रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, पश्चिम एशिया का युद्ध चल रहा है, तो उसमें रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को आगे कैसे ले जाया जाए, और जो ग्रीन एनर्जी है, ग्रीन ट्रांजिशन है, इनोवेशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, इन सभी जो नई टेक्नोलॉजीज आई हैं इनके साथ कैसे संबंध बनाया जाए और देशों के साथ मिलकर सहयोग किया जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण इशू थे और इस पर बातचीत हुई। और जो बताता है जो प्रधानमंत्री मोदी की और भारत की विश्वसनीयता कितनी बढ़ रही है पूरे विश्व में।
0: चर्चा कर रहे हैं 2014 से लेकर अब तक भारत के विदेशी कूटनीति के आइकॉनिक मोमेंट्स की, और उसमें जो सबसे बड़ा मोमेंट्स था मदन जी वो G20 का जो हमने मेजबानी की। साल 2023 में भारत की अध्यक्षता में हुआ G20 समिट नई दिल्ली डिक्लेरेशन की वजह से दुनिया भर में सराहा गया। आपको क्या लगता है कि भारत ने जिस तरह विकसित और विकासशील देशों के बीच एक पुल का काम किया, उसने वैश्विक कूटनीति में भारत का कद किस तरह बढ़ाया?
2: अगर हम G20 की बात करें, एक तो ये बहुत बड़ा सफल आयोजन था, ये तो निश्चित रूप से था। दूसरी सबसे बड़ी बात इसमें हुई कि ग्लोबल साउथ की आवाज को भारत ने मजबूती के साथ बुलंद किया, और जो अफ्रीका यूनियन है, अफ्रीकी देश है, उनको G20 की सदस्यता दिलाने में सफलता हासिल की। भारत लगातार ग्लोबल साउथ की आवाज को उठा रहा था। दुनिया में एकमात्र देश है जो भारत ग्लोबल साउथ की आवाज को उठा रहा था। इसमें करीब 100 से भी ज्यादा देश आ जाते हैं, पूरा अफ्रीका रीजन इसमें आ जाता है, नॉर्थ अमेरिकी जो कंट्री हैं वो आ जाते हैं, इसके अलावा और भी कई छोटे छोटे कंट्री हैं जो ग्लोबल साउथ में आते हैं, जो न तो किसी समूह के हिस्से नहीं है लेकिन उनकी आवाज़ कहीं नहीं सुनी जा रही थी। अगर मैं G20 के आयोजन की बात करूं, भारत की कूटनीति की बात करें, तो ग्लोबल साउथ की आवाज़ को उठाना और अफ्रीकी यूनियन को G20 में सदस्यता दिलाना, तो मुझे लगता है कि भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, और इससे भारत की जो कूटनीति है उसको पूरी दुनिया ने स्वीकार किया, और पूरी दुनिया ने स्वीकार किया कि जो भारत एक ऐसे देशों की आवाज़ उठा रहा है जिसकी आवाज़ बहुत पहले उठाए जाने की जरूरत थी। और ये पहल कायदे से देखा जाए तो जो विकसित कंट्री है उनको इसकी शुरुआत करनी चाहिए थी, लेकिन भारत ने, एक बहुत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, उसने इन देशों की आवाज़ को उठाकर पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया जो वसुधैव कुटुंबकम, और इस G20 सम्मेलन की थीम भी यही थी, तो वसुधैव कुटुंबकम का जो संदेश दिया उसको पूरी दुनिया ने स्वीकार किया और एक भारत के नेतृत्व में विश्वास जताया।
3: Dr. Nkrumah had said, and I quote, I am not Africa because I was born in Africa, but because Africa was born in me. In the same way, India carries Africa in its heart. India and Africa share a dream where every child gets opportunities. Where every voice is heard, where nations rise together, not apart. Let us build a partnership, not only for today, but for generations to come.
0: अशोक जी, अगर इस चर्चा को आगे बढ़ाएं तो भारतीय विदेशी कूटनीति का एक और अहम पड़ाव है आपदा और संकट में कूटनीति, चाहे वो ऑपरेशन संकट मोचन हो, ऑपरेशन गंगा हो, या फिर युद्ध और संकट के क्षेत्रों से अपने नागरिकों को वापस बुलाना, उसमें भी भारत ने एक अहम भूमिका निभाई। लेकिन एक और ऑपरेशन हुआ जिसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया, जिसमें भारत ने पूरी दुनिया को यह बताया कि अगर भारत की तरफ कोई आंखें दिखाएगा तो भारत युद्ध का जवाब और प्रबल युद्ध से देना जानता है। आतंकवाद को सिरे से ना करना, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया के अलग अलग देशों में अपने प्रतिनिधि को भेजकर ये बताना कि भारत की मंशा क्या है, कैसे देखते हैं, क्या वो भारतीय की विदेश कूटनीति का एक मील का पत्थर था ऑपरेशन सिंदूर?
1: भारत ने पूरे विश्व को संदेश दिया

0: वो यही था जो हम अपनी संप्रभुता के लिए, अपने जो नागरिक हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए हम पूरी तरह से उनकी रक्षा करेंगे, और जो भी हद हो वो हम वहां तक जाएंगे। और यही बात हुई जो हम युद्ध को पूरा युद्ध में नहीं वैसे परिवर्तित करना चाहते, हमें जब अपना लक्ष्य मिल जाता है तो फिर हमने युद्ध उसी समय रोक दिया। परंतु पाकिस्तान ने अपनी बेवकूफी में उन्होंने सोचा जो वो भारत को ऊपर भी कुछ ऐसा नुकसान कर सकते हैं, परंतु 10 तारीख सुबह को तो उनके केवल बहुत सारे हवाई अड्डे थे, बहुत सारे ऐसे ठिकाने थे जिनको एकदम मिट्टी में मिला दिया गया, तो पाकिस्तान को अपने घुटने पर आना पड़ा। तो हमने तो उनको ये सिद्ध करके, और फिर उसके बाद हमने जब पाकिस्तान ने याचिका की जो ये युद्ध रोक दिया जाए तो हम मान गए, क्योंकि हमने ये देखा है, भारत ने ये पूरे विश्व को बताया जो हम युद्ध शुरू कर सकते हैं अपनी संप्रभुता को बचाने के लिए, और जब हमारे अपने ऑब्जेक्टिव्स लक्ष्य हम प्राप्त हो जाते हैं तो हम उसको बंद भी कर देंगे। तो हमने वहां पर से हमेशा से पाकिस्तान ये कहता रहा था जो हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है तो आप हमारे ऊपर हमला कन्वेंशनल वॉरफेयर से नहीं कर सकते हैं। तो हमने ये बता दिया जो ये उनका जो ब्लैकमेल है ये हमारे विरुद्ध नहीं चलेगा।
1: और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ शब्दों में कहा है कि बुद्ध की धरती युद्ध करना भी जानती है और ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा था।
2: आज पाकिस्तान भी भली भांति जान गया है कि भारत का हर जवाब पहले से ज्यादा तगड़ा होता है। उसे ये भी पता है कि अगर भविष्य में नौबत आई तो भारत आगे कुछ भी कर सकता है, और इसलिए मैं फिर से लोकतंत्र के इस मंदिर में दोहराना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। पाकिस्तान ने दुस्साहस की अगर कल्पना की तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा।
1: अशोक जी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस और वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का विचार भारत की तरफ से दिया गया, क्या आपको लगता है कि भारत अब ग्लोबल वार्मिंग जैसी वैश्विक समस्याओं के समाधानकर्ता के रूप में दुनिया में देखा जा रहा है?
0: 2015 में जब ये कॉप हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज हुआ था पेरिस में, तो तब भारत ने और फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं उस समय के, तो उन्होंने इसको लॉन्च किया था। और अब जैसे उन्होंने बताया 100 से ज्यादा देश इसमें मिल गए हैं। देखिए, आजकल एनर्जी सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे बनकर उभर गए हैं पूरे विश्व के सामने। और हम देख रहे हैं जब से ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का मुद्दा सामने आया है तब तो ऊर्जा, एनर्जी, फॉसिल फ्यूल्स बहुत देशों के लिए मुश्किल हो गई है, क्योंकि वहां से 20% एनर्जी पूरे विश्व में आती है वो मिल नहीं रही है। तो इसीलिए ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है जिसकी भारत ने शुरुआत की है, और भारत ने दिल्ली के निकटतम ही यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर्स भी खोला है, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहा है। उसके अलावा अगर आप देखें बायोफ्यूल्स अलायंस है, जो कि जब हम G20 की बात कर रहे थे तो G20 के साइडलाइंस पर दो बहुत ही महत्वपूर्ण इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए थे। एक तो था इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसके अलावा एक CDRI है, दैट इज कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिस्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कैसे जो विश्व में पर्यावरण का बदलाव हो रहा है उसके साथ कैसे जूझा जाए, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना रहे हैं, जो बिल्डिंग्स बना रहे हैं, उनको कैसे जो आपदा आती है उनसे बचाया जाए। तो भारत ने विश्व पटल पर बहुत से ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हैं और बहुत से वैश्विक देशों ने भारत के साथ सहयोग कर रहे हैं, तो इसी से भारत का कद विश्व में और भी इससे ऊंचा हुआ है।
2: दिस इज द इनॉग्रल डे ऑफ ए डिफाइनिंग ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज। वी वॉन्ट टू ब्रिंग सोलर एनर्जी इन टू आवर लाइव्स। वी विल शेयर नॉलेज एंड एक्सचेंज बेस्ट प्रैक्टिसेस। वी विल कोऑपरेट ऑन ट्रेनिंग एंड बिल्डिंग इंस्टीट्यूशंस। वी विल डिस्कस regulatory issues and promote common standards. We will attract investment in the solar sector, encourage joint ventures and develop innovative financing mechanisms. We will partner with other international initiatives on renewable energy. There is already a revolution in solar energy. Technology is evolving. Costs are coming down. And grid connectivity is improving. It is making the dream of universal access to clean energy become more real.
1: मदन जी, अब बात थोड़ी वैक्सीन डिप्लोमेसी की भी कर लेते हैं। कोविड-19 और

0: और वैक्सीन मैत्री की भी चर्चा काफी रही। जब कोविड 19 महामारी के दौरान भारत ने वैक्सीन मैत्री के तहत दुनिया के 100 से अधिक देशों को मेड इन इंडिया वैक्सीन पहुंचाई, वो भी दौर था जब दुनिया के कई देश अपनी वैक्सीन जमा कर रहे थे, तब भारत की इस मानवतावादी कूटनीति ने वैश्विक स्तर पर भारत के प्रति जो विश्वास पैदा किया, उसका लॉन्ग टर्म लाभ आप कैसे देखते हैं?
1: जब कोविड काल चल रहा था तो 100 से ज़्यादा देशों को वैक्सीन की सप्लाई की थी और उस समय वैक्सीन की हमारे पास भी कमी थी। हम दूसरे कंट्री से कुछ ग्लोबल इनिशिएटिव है उनसे हम वैक्सीन ले भी रहे थे, लेकिन इसके बावजूद हम वैक्सीन दूसरे कंट्री को भी दे रहे थे और 100 से ज़्यादा देशों को हमने वैक्सीन की सप्लाई की थी और उसमें से ज़्यादातर देश या तो हमारे पड़ोसी देश थे या फिर वो ग्लोबल साउथ के देश थे जिनको हमने वैक्सीन की आपूर्ति की थी। तो इस इनिशिएटिव से भारत का, जैसे मैंने माना कि एक डिप्लोमेसी है, ये भी एक डिप्लोमेसी है कि अगर आप अपने सहयोगी देशों को, अपने मित्र देशों को किसी प्रकार की मदद करते हैं तो ये भी एक डिप्लोमेसी का ही मैं इसे एक पार्ट कहूंगा। और इससे एक जो लॉन्ग टर्म में भारत पर भरोसा बढ़ा है, चाहे वो छोटा कंट्री हो चाहे वो एक अफ्रीका का कोई देश हो, भारत पर उन लोगों का भरोसा लगातार बढ़ा है। और लॉन्ग टर्म में अगर इसकी बात करें, जब एक बार भरोसा बढ़ता है और लगातार भारत उनके किसी न किसी रूप में मदद करता है या उनकी आवाज़ को बुलंद करता है, या जैसे मैंने बताया कि ग्लोबल साउथ की आवाज़ भारत ने उठाई, उसके बाद यूएन सुधारों में भारत लगातार बोल रहा है, तो इसका भी फायदा दूसरे देशों को होने वाला है। भारत को उतना फायदा नहीं होने वाला, दूसरे देशों को ज़्यादा होगा अगर यूएन में सुधार होते हैं। ऐसे में जो भारत पर दूसरे देशों का भरोसा है वो लगातार बढ़ रहा है, और जब ये भरोसा बढ़ता है, और जैसे हम कह रहे हैं कि जो दुनिया धीरे धीरे बढ़ रही है वो मल्टीपोलर दुनिया हो रही है, बहुध्रुवीय दुनिया हो रही है, तो भारत उसमें एक मजबूत ध्रुव के रूप में उभर रहा है, एक मजबूत पक्ष के रूप में उभर रहा है।
0: अशोक जी, एक और इम्पॉर्टेंट पहलू है, काफ़ी अहम पक्ष रहा है 2014 के बाद भारत की विदेश कूटनीति का, वो है मुक्त व्यापार समझौते। भारत ने हाल में यूएई, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन देशों के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते किए, जिसे हम सब एफटीए के नाम से जानते हैं। आपको क्या लगता है कि ये समझौते भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड हब बनाने में मददगार साबित हो रहे हैं?
2: जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, पिछले कुछ वर्षों में भारत ने बहुत ही ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट या मुक्त व्यापार समझौते जो हैं वो किए हैं, और अपने महत्वपूर्ण जो साझेदार हैं, जो व्यापारिक साझेदार हैं जिनके साथ हमारे व्यापारिक सहयोग, आर्थिक सहयोग बड़ा अच्छा है, उनके साथ किए हैं। अगर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का देखा जाए तो वो हमारा दूसरा सबसे बड़ा ऐसा डेस्टिनेशन है जहां हमारे एक्सपोर्ट्स जाते हैं, जहां हमारे निर्यात जाते हैं। वो तीसरे नंबर पर है जो कि सबसे बड़ा हमारा आर्थिक साझेदार है, सहयोगी है। और इसके अलावा हमने यूनाइटेड किंगडम के साथ भी किया है, वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक व्यवस्था है और आर्थिक सहयोग उनके साथ हमारा बहुत बड़ा है। यूरोपियन यूनियन, तो जिनके साथ 2007 में ये बातचीत शुरू हुई थी, मुझे याद है जब मैं ब्रसल्स में था तब हमने ये बातचीत शुरू की थी, नेगोशिएशन शुरू किए थे, और ये 17-18 साल के बाद हम देख रहे हैं, जो इस साल के शुरू में फरवरी में हमने देखा, 19 साल के बाद ये वाला समझौता हुआ है, और इसको वहां की जो यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट हैं उर्सुला वॉन डर लेन, उन्होंने इसको मदर ऑफ ऑल डील्स करार दिया था, इसका इतना व्यापक रूप है। ऐसे ही हमने एफ्टा के साथ जो चार देश हैं यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के, जैसे मैं पहले बोल रहा था, आइसलैंड और नॉर्वे तो उसके सदस्य नहीं है और ये एफ्टा के सदस्य हैं, और उसके अलावा स्विट्जरलैंड और लिख्टेनस्टाइन, उनके साथ भी बहुत महत्वपूर्ण ये एक सहयोग किया है, जिसमें $100 बिलियन भारत में वो निवेश करेंगे अगले 15 साल में, जिससे 10 लाख जॉब्स यहाँ पर क्रिएट होंगे। इसके अलावा हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, ओमान के साथ, ये सब हमने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स किए हैं जो कि मेरे विचार से विन विन अग्रीमेंट्स होंगे, ये इन सभी देशों के लिए भी और भारत के लिए भी।
3: आज भारत ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया है। यह एक ऐतिहासिक समझौता हमारे किसानों, हमारे छोटे उद्योगों, इसके यूरोपियन मार्केट तक पहुंच आसान बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में नए अवसर पैदा करेगा और हमारे सर्विसेज सेक्टर के बीच सहयोग को और प्रबल करेगा। इतना ही नहीं, यह एफटीए भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करेगा, नई इनोवेशन पार्टनरशिप बनाएगा और वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन को मजबूत करेगा। यानी यह सिर्फ ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, यह साझा समृद्धि का नया ब्लूप्रिंट है।
0: अशोक जी, फॉरेन डिप्लोमेसी

0: के क्षेत्र में रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत का स्टैंड भी काफी चर्चा में रहा। रूस यूक्रेन युद्ध पर प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान कि ये युद्ध का युग नहीं है, पूरी दुनिया में ये गूंजा। बिना किसी दबाव में आए भारत का अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर टिके रहना और दोनों पक्षों से बातचीत की वकालत करना भारत की परिपक्व होती कूटनीति का कितना बड़ा प्रमाण रहा।
1: डिप्लोमेटिक पार्लेंस में कहें तो इसको हम स्ट्रेटेजिक अटोनमी कहते हैं, जो जिससे कि हम अपने हितों की रक्षा स्वयं करेंगे और हम किसी और को दखल अंदाजी नहीं करने देंगे। जो वो हमें बताए, भारत को बताए, जो आपके लिए क्या अच्छा है, आपके लिए क्या ठीक है, आप इसमें क्या करिए। तो इसीलिए जब रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ तो बहुत दबाव पड़ा पहले भारत के ऊपर, जो आप तेल मत खरीदिए रूस से, परंतु भारत ने ये बता दिया, भारत करीब अपने जो जरूरतों का 80-85% तेल है वो आयात करता है, तो इसको हम जहां से भी हमारी कंपनियों को सभी ठीक दाम में तेल मिलेगा हम वहां से वो लेंगे। तो हमने अपने संबंध भी बनाए रखे और ये भी बनाए रखा, परंतु ऐसा नहीं किया जो हमने अपने संबंध और जो पश्चिमी देश हैं उनके साथ खराब कर दिए। और उन देशों को भी फिर बाद में समझ आ गया, जो अगर रूस का तेल वैश्विक बाजार में नहीं आता तो तेल के दाम बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं, जो कि सभी अर्थव्यवस्थाओं के लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध हो सकता था। तो इसीलिए भारत ने ये बता दिया है, भारत वैश्विक फायदे के लिए, ग्लोबल गुड के लिए काम करेगा सबके साथ, परंतु अपने हितों को वो सैक्रिफाइस नहीं करेगा। और हमारा जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वो केवल वो ट्रांजैक्शनल नहीं है जो केवल अपने हितों की हम रक्षा करें, हम और देशों के हितों के लिए भी हम उनके साथ बराबर परस्पर सहयोग बनाते रहेंगे और काम करते रहेंगे।
2: विद द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट वॉर हैज रिटर्न टू यूरोप, इट इज कॉजिंग ग्रेट पेन इन द रीजन, सिंस इट इन्वॉल्व्स मेजर पावर्स, द आउटकम्स are severe. Countries of the global south have been particularly affected. The global order is based on the respect for the principle of the UN Charter. Peaceful resolution of disputes and respect for sovereignty and territorial integrity. As I have said directly and publicly, this is not an era of war, but it is one of dialogue and diplomacy. And we all must do what we can to stop the bloodshed and human suffering.
0: अशोक जी, कार्यक्रम के अंत में एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि 2047 तक भारत का लक्ष्य है विकसित भारत बनने का, हमारी विदेश नीति और विदेश कूटनीति इस लक्ष्य को हासिल करने में किस तरह की भूमिका निभा रही है, कैसे देखते हैं आप?
1: भारत की जो कूटनीति है बहुत ही एक महत्वपूर्ण इसमें योगदान कर रही है, भारत को अपने लक्ष्य की तरफ पहुंचाने में, विकसित भारत 2047 तक पहुंचाने में, क्योंकि सामने हमारे चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। तो इसीलिए हमको देखना है जो किन देशों के साथ हमको अपना परस्पर सहयोग बढ़ाना है, हमारे अपने संबंधों को और तेज करना है, और वही हम कर रहे हैं। चाहे पहले हमारे अमेरिका के साथ, जिसे हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, परंतु अब हम देखते हैं जो अमेरिका का रवैया काफी ट्रांजैक्शनल हो गया है, परंतु फिर भी हमारे संबंध चाहे रक्षा क्षेत्र में हो, व्यापार क्षेत्र में हो, उनके साथ बड़े अच्छे रहेंगे, परंतु फिर भी हम डाइवर्सिफाई करेंगे। तो हर तरीके से लेकर अपनी आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने के लिए और अपने सुरक्षा को बढ़ाने के लिए, जिससे कि अपनी संप्रभुता की हम रक्षा कर सके, इस मार्ग पर अग्रसर होते हुए भारत की कूटनीति उसमें एक बहुत ही अहम योगदान करेगी।
2: एक तो हमारा लक्ष्य है 2047, हिंदुस्तान विकसित होना ही चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज। आजादी के 100 साल हम ऐसे ही नहीं बिताएंगे, आजादी के 100 साल ऐसे मनाएंगे कि दुनिया में विकसित भारत का झंडा फहरता होगा।
0: कभी दुनिया के मंच पर भारत को सिर्फ एक बड़ा देश माना जाता था, लेकिन आज भारत एक बड़ी सोच बन चुका है। चाहे G20 की मेज हो या संकट में फंसे देशों तक मदद पहुंचाने का संकल्प, भारत ने हर बार यह साबित किया है कि नई सदी की कूटनीति केवल ताकत से नहीं, विश्वास से चलती है। आज जब दुनिया नए संतुलन की तलाश में है, तो उसकी निगाहें हिंद महासागर के उस किनारे पर टिकती हैं जहां एक लोकतंत्र 140 करोड़ सपनों के साथ विश्व मंच पर आत्मविश्वास से कह रहा है, यह नया भारत है जो मित्रता भी निभाना जानता है और नेतृत्व करना भी जानता है। इसी विश्वास, इसी बढ़ते वैश्विक सम्मान

0: और इसी नई कूटनीतिक यात्रा के साथ मदन जी आपका और अशोक जी आपका कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आभार।
1: बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए।
2: थैंक यू सर।
0: श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: चर्चा का विषय है।

चर्चा का विषय है। जी हाँ, ये नाम था कार्यक्रम का जो भी आप सुन रहे थे। ये कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत।

कोयला फिल्म का नगमा अभी आपने सुना, आवाज़ें थी कुमार सानू और अलका याग्निक की। आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ लैला मजनू फिल्म के लिए।

नाम फिल्म का गीत आपने सुना, आवाजें थी पंकज उदास और साथियों की। आइए श्रोताओं, आप सुनते हैं अनुराधा पौडवाल की आवाज नगीना फिल्म के लिए।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 10:30 हुए, आइए अब सुनते हैं शास्त्रीय संगीत। जी हाँ, शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं गायन ख्याल चयानट। तबला संगत है आशिक हुसैन की और सारंगी संगत है रमज़ान खान की। कलाकार हैं दीपाली नाग।

0: इसके साथ ही शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त तो होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। भारत और इटली ने आज कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर आज रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की है। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं।
2: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
1: इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला पदक से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि ये सम्मान भारत के किसानों, मछुआरों, वैज्ञानिकों और कृषि क्षेत्र से जुड़े अन्य कर्मियों के योगदान की पहचान है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि मोदी सरकार ने कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ये ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। रक्षा मंत्री ने सोल में भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग व्यापार गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की घोषणा की है। सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने के एक समारोह के दौरान नाबन्ना में उन्होंने कहा कि अब घुसपैठियों को सीधे सीमा सुरक्षा बल के हवाले कर दिया जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में असम में 4000 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता और रखरखाव कार्यों की समीक्षा की। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है। कोलकाता ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्स और FM 101.6 मेगा हर्ट्स पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:10 हुए, इसके साथ ही हमारी आज की संध्याकालीन सभा अब यहीं समाप्त होती है। कल सुबह 5:55 पर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।